आंवला ना मार नैणा दे तीर। हुण तुसी अख्तर अली मतोई दी आवाज च गुलाम फरीद दा एक कलाम सुनिया। चढ़दे सूरज ढलदे देखे, बुझदे दीवे बलदे देखे, हीरे दा कोई मुल न जाने, खोटे सिक्के चलदे देखे, जिन्हां दा ना जगदे कोई ओह वी पुत्तर पलदे देखे, ओदी रहमत दे नाल बंदे पानी उत्ते चलदे देखे, लोकी कहंदे दाल नी गलदी, मैं ता पत्थर गलदे देखे, जिन्हां ने कदर ना कीती रब दी, बोलिया हथ खाली ओ मलदे देखे, हथ खाली ओ मलदे देखे। ते आओ हुण सुनदे आं सरबजीत दी आवाज विच शाह हुसैन दा कलाम। दिल ला लिया बेपरवाह दे नाल, उस दीन दुनी दे शाह दे नाल, मन ला लिया बेपरवाह दे नाल, उस

अहुनि से यूरल देवो नि वदाई मैं वर पाया रांझा माही पूजा गिल दिखाई बाबा बुल्ले शाह दे इस कलाम दे नाली हुन सूफियाना कलाम दा ए प्रोग्राम इत्थे खत्म हुंदा है ते इस दे नाली नेबरहुड सर्विस दी पंजाबी सेवा दी पहली सभा भी इत्थे मुकदी है एफएम बैंड 103.6 मेगाहर्ट्ज ते असी आकाशवाणी दे अमृतसर केंद्र तो बोल रहे हां साडे अगले ऐलान दा इंतजार करो।

आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस 9870 किलोहर्ट से बुधरे ते खा सवाए तमा आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप एंड डिफरेंट डिश ते बुध सकंदा प्रोग्राम शुरू थी चुका है डिटेल्स कुछ नतर है हमेशा थोड़ी देर में तमा भगत करम साहब के बुधंदा ते खा पोए तफसर में पोए कुछ गीत कलाम है भजन पेश कंदा खास खास खबर प्रोग्राम जी आखिर में शिरक में नियो यते प्रोग्राम जी तफसील तमा आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस बुधरे हिरचो भगत करम साहब के बुधंदा

भगत कोराम साहब जन जी सदाबहार आवाज में कलाम रही आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस है हिंदर पेश है तबसरो दहशत ना मुड़ी सबर जे पॉलिसी ना वधंदे मोदी सरकार एक बियो अहम कदम खयो है गृह मामले जे वजरा मरकजी गृह वजीर श्री अमित शाह जे सरप्राइज तहत ट्रिलियन वधिक शख्सन के दहशत अंगेज करे ऐलान कयो है श्री शाह चयो त भारतीय सरकार दहशत जे हर एक मॉडल के खत्म करण लाइ कॉल बद आहे त जंहिं भारत ऐं संदसि अवाम जी सलामती बरकरार रखे सघिजे।

एक्स का एक पोस्ट में श्री अमित शाह चाहता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जे दूरंदेशी देश के खिलाफ पूरी सबरते अगते वधंदे अज घर वसरा ट्रेनिंग बेन मौतमार दहशत अंगेजन के जेके बंदिश पेल इदारन से जुड़ल है तिनके प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज तहत दहशत अंगेज करे ऐलान किया है। ये दहशत अंगेज भारत खिलाफ कार्रवाई में रुदल है रुदल हुआ जेके भारत मथा दहशत अंगेज हमला कर रहा मुल्क में दहशत फैलाए रहा बेकायदे हथियार जो व्यापार कर रहा इनका अलावा सरहद पार कर बेकायदे अची रहा दहशत अंगेज इदारन के हिमायत दे रहा इनका अलावा फंड्स के कठो करण ए दहशत अंगेजन के भर्ती कर रहा। अज के टेवी दहशत अंगेज ऐलान कर रहा तिन में 17 पाकिस्तानी नागरिक हैं 6 भारतीय नागरिक तेरे बावजूद भी ये सभी दहशत अंगेज कार्रवाई पाकिस्तान में ए पाकिस्तान पारा बेकायदे खैल जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं। साल 2019 में मरकजी सरकार पारा अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 यानी कि यूएपीएजे में दुरुस्ती आने का पोए हेरे तई 57 शख्सन के दहशत अंगेज कर ऐलान किया है। सो इन कानून के सेक्शन 35 तहत फोर्टीन शेड्यूल में किया हुआ है। हाँ मरकजी सरकार ट्रेनिंग बेन शख्सन के दहशत अंगेज कर डिक्लेयर किया है ऐलान किया है। फहरिस्त में पाकिस्तानी नागरिक हैं मसूद इलियास कश्मीरी जैके मुफ्ती मसूद इलियास करे पण सुत वेंदो है इनका अलावा मोहम्मद मुसादिक जैके डॉक्टर यारी अब्दुल मनन करे सुत वेंदो है मुफ्ती मोहम्मद असकर जैके अबू साद या साद करे सुत वेंदो है हाफिज अब्दुल शकूर यानी के कारी जरार अब्दुल्ला जिहादी यानी के शहनवाज एलाइस यानी के अल हिजमा गुलाम फरीद अब्दुल रऊफ तंखा अलावा अशफाक अहमद हाफिद खालिद वालिद मौलाना इमाद उल्ला मक्की मौलाना सैफुल खालिद मोहम्मद याकूब मौलाना यूसुफ तालिबी कारी याकूब शेख इन सब का अलावा शेख मोहम्मद याकूब राणा इफ्तिकार वासिम नूर ये सभी घणे दहशत अंगेज इदारन से जुड़ियल हैं जड़ो के जैश मोहम्मद हरकत उल मुजाहिदीन लश्कर तैयबा रेजिस्टेंट फ्रंट नौजवान के सोशल मीडिया जरिए दहशत अंगेज ग्रुपों में भर्ती करना है एंड दहशत लाए फंड्स पर इकट्ठा करना है एंड बेकायदे सरहद पार कर टनल्स जरिए इन्हें दहशत अंगेजन के भारत में मोकलींदा आन इनखा अलावा नशेदार शयूं पिण मोकलींदा आन हथियार ए बो घणो कुछ मोकलींदा रहंदा आन अॼुकल्ह ड्रोन्स पिण कतब आदि पे वञन। फिरदौस अहमद भाट हारून राशिद घानी इनखा अलावा अबिद क्रमलोन नजीर अहमद गुजर इन्हें जेके आहिनि से हिन वक़्तु पाकिस्तान में बुनियाद रखे रहिया आहिनि जेके लश्कर तैयबा ऐं रेजिडेंट फ्रंट सां वाबस्ता आहिनि। पाकिस्तान पीओ के मां कार्रवाई कंदे इन्हनि बेक़ाइदे हथियारनि जे वापार में बारूद में लुधल रहिया आहिनि जेको ही कुझु कश्मीर माथिरे में मोकिलींदा आहिनि ऐं जम्मू कश्मीर में सलामती फ़ौजनि मथां हमला करण जी पिण रिथार थी रहिया आहिनि। मोहम्मद शाहिद फैसल सो पाकिस्तानी नागरिक है जो आए तो असल में भारतीय पर इन वक्त रावलपिंडी में रही रहा है। सोपन लश्कर तैयबा अलकायदा आईएसआईएस से जुड़ियल है। नौजवान के भारत खिलाफ कार्रवाई लाए सोशल मीडिया यानी कि यूट्यूब टेलीग्राम चैनल जरिए भर्ती करना है। इन शख्सन के दहशत अंगेज करे ऐलान करण से दहशत के इकोसिस्टम के खत्म करण में मदद मिली गडो गड संदन फाइनेंशियल नेटवर्क के गुंजो डेण में पिण मदद मिली तफसरो बधी रहा।

0: आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस आहे 9870 किलोहर्ट्ज़ ते। तंहिंखां अलावा तव्हां आकाशवाणी जी सिंधी सर्विस न्यूज़ ऑन एयर मोबाइल ऐप ऐं डीडी फ्री डिश ते ॿुधी सघंदा आहियो।
1: पेशन कुछ कलाम ऐं गीत आगस्कर शांति हिरणनि जी आवाज़ सां शाह साहब जे कलाम सां।

புகழும் வியாக்கருமே தாலிம் மூலஜா போல தமிழ் ரூடல் அலஜா வசுமதுரை ஆகாஷ்வாணி சிந்தி சரசன் இருப்பேஷன் காஸ் காஸ் கபரும் प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अज का वी कर छह डी के इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया ए न्यूजीलैंड के दौरे से वो उन्होंने वजीर डॉक्टर एस जयशंकर ओलह एशिया यात्रा दौरान दोहा में कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जैसिन अल थानी से मुलाकात कई। ओपेक प्लस मनो है मार्केट में दायमत के आने के लिए इंदड़ महीने का वी कर तेल की पैदावार के 188,000 बैरल्स रोजाना बढ़ाया वो। जिनेवा स्विट्जरलैंड में भारत इंटरगवर्नमेंटल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन कंज्यूमर प्रोटेक्शन के नए इजलास के सुबाने का वी कर चेयर टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ब्रिटानिया के औरतों के टी20 वर्ल्ड कप जो लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड में कल रात लंडन में थो तें में ब्रिटानिया के मात डींदे खटी वरतो है।

आकाशवाणी सिंह दी सर्विस उधरा है हीरा संजय प्रोग्राम जो वक्त पूरो सी रहा है वरी वहां सा मुलाकात हिंदी सुबाने सुबह जो यानी के भारतीय वक्त मुताबिक 6:30 बजे ते सीधा नींदा इजाजत सदाई कर

0: आर के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रम्बनन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। जकार्ता में प्रधानमंत्री भारतवंशियों को भी संबोधित करेंगे। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि सत्र में सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य हितधारक उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस एनसीडी और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड एनडीडीबी के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ भी शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास को बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय, पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालैंड ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़त दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। ब्राजील की हार के बाद नेमार जूनियर ने संन्यास की घोषणा कर दी। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे अब तीसरी टीम है। ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani News read by Anu.

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह की 7:10 हो रहे हैं और ये हुए पूरे 16 सेकंड। आइए अब हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम संगीतिका, जिसमें आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं प्रियंका संजय झा की आवाज में कुछ भजन।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका, जिसे आज आपने सुना संजय झा की आवाज में भजन। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। इस समय वक्त हो रहा है सुबह के 7:30 और ये समय है कार्यक्रम गीता भरे गुड मॉर्निंग का। और आज की गुड मॉर्निंग आपकी कैसी हुई है दोस्तों, आप हमें बताइए, क्योंकि मुझे यकीन है आज जब आंखें खुली हैं तो आपने देखा है सब तरफ बादल छाए हैं, एक अंधेरी भरी मॉर्निंग हुई है सभी की, और आप सभी को बारिश बहुत बहुत मुबारक।

0: तो आज हम बात करेंगे हमारी इस कार्यक्रम में बस किस बात की, जी हाँ बारिश की। क्योंकि बारिश हर एक के लिए अलग होती है, कहीं पर कागज की नावें होती हैं, कहीं भीगती गलियां, फिर गर्म चाय की प्याली, खिड़की पर गिरती बूंदों की टप टप। बरसात हर किसी के लिए कुछ न कुछ लेकर आती है।
1: सजना

बारिश। जी हाँ, ये मौसम कैलेंडर देखकर नहीं आता। वैसे भी बहुत से मौसम कैलेंडर के हिसाब से नहीं आते, है ना? वो सीधे दिल में उतरते हैं। बूंदें धरती को नहीं भिगोती, यादों को भी सींचती हैं। पहली बूंद गिरते ही जाने कितनी आवाजें लौट आती हैं। छत पर भीगते बच्चों की आवाज, कागज की नावों की आवाज, रसोई से आती पकौड़ों की खुशबू की, और खिड़की के पास बैठकर बारिश निहारते उन खामोश लम्हों की यादें आती हैं। किसके साथ? बारिश के साथ।

अर्थ बाहर आती है, साथ में सच में बाहर लाती है मन में, तो एक बाहर अलग सी ऐसी उमड़ती है कि फिर उसका हम किसी भी तरह से उसका हम पूरा नहीं कर पाते, क्योंकि वो जो बाहर होती है वो हमारे दिल के साथ ही हमारी पूरी जिंदगी में एक बहुत खूबसूरती भर देती है। फिर ये भी है ना कि बारिश की बूंदी जब मिट्टी से मिलती है तो सिर्फ खुशबू नहीं उठती, लगता है जैसे धरती भी राहत की एक लंबी सांस ले रही है। और रही बात बारिश की, तो बारिश जब आती है बहुत सी यादों को अपने साथ लेकर आती है, उन लम्हों को हम दोबारा जीते हैं जो कभी हमसे छूट गए। फिर और इन्हीं बारिश की बूंदों के साथ जब इसकी टिप टिप हम सुनते हैं, जब इसकी आवाज के साथ हम आवाज मिलाते हैं, तो फिर लौट कर आती है वो सारे लम्हे जो कहीं हमसे पीछे छूट गए।

बरसातें सिर्फ धरती को नहीं भिगोती, वे यादों की धूल में भी इस तरह से आ जाती हैं कि उन यादों की धूल को भी धो देती हैं। तभी तो पहली बारिश होते ही मन बिना किसी वजह के बरसों पीछे लौट जाता है। फिर बहुत बार ऐसी चीजें याद आती हैं, ऐसी बातें याद आती हैं जिनको लेकर के मन अलग सा एक उत्साह, एक अलग सा उल्लास महसूस करता है ना। तो आइए सुनते हैं बारिश से जुड़ा एक और बहुत प्यारा सा गाना।

बारिश की खूबसूरत आदत होती है, मानेंगे ना। वो क्या करती है, जब भी आती है अपने साथ सिर्फ बादल नहीं लाती, खूब सारी ऐसी यादें लाती है, खूब सारी ऐसी बातें लाती है जो हमें भीतर तक भिगो जाता है।

कभी कभी याद किया है वो समय जब रिमझिम रिमझिम बारिश पड़ रही हो, आप अपने किसी मन भावन के साथ, अपने किसी मनपसंद साथ के साथ बस चुपचाप एक भीगी सड़क पर चलते चले जा रहे हो, है ना? तो क्यों ना उसी माहौल को एक बार फिर से जिया जाए।

दोस्तों बारिश हमें एक बात बहुत खामोशी से सिखाती है कि आसन कितना भी भारी क्यों ना हो, एक दिन उसे बरसकर हल्का होना ही होता है। शायद इसीलिए बारिश के बाद पेड़ भी ज्यादा हरे दिखाई देते हैं, हवा भी ज्यादा साफ लगती है और मन भी कुछ हल्का हल्का सा महसूस करता है।

बारिश सिर्फ मौसम नहीं बदलती, वह हमारी रफ्तार भी बदल देती है, है ना? जो लोग रोज भागते हुए निकल जाते हैं वो भी आज खिड़की पर दो पल ठहर जाते हैं। चाय धीरे धीरे पी जाती है और बातें थोड़ी लंबी हो जाती हैं और जिंदगी कुछ देर के लिए कम हड़बड़ी वाली लगने लगती है ना?

ऐसे मौसमों का कोई स्वभाव होता ना तो बारिश सबसे ऊपर का मौसम होती, सबसे उदार मौसम होती। वो खेतों को हरियाली देती है, नदियों को बहाव, पंछियों को गीत और इंसानों को थोड़ा सा ठहर कर अपने भीतर झांकने का मौका। इसी खुशनुमा मौसम को हम यही दुआ करेंगे कि ये मौसम हमेशा बना रहे। बारिश का हरियाली, बारिश की खूबसूरती आप सभी के जीवन में हमेशा बनी रहे और हमारा यही इल्तिजा है बारिश से कि वो

बारिश के मौसम की हरियाली आपके जीवन में बनी रहे, ये खुशियाँ हमेशा आपके जीवन को यूं ही हरा भरा और खुशहाल बनाए रखे। आपने ये जो पूरा सफर तय किया, आपके रेडियो हम सफर सोनाली के साथ आपको इस गीत के साथ छोड़े जा रही हूँ, मुझे इस कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, सुबह के 8 बजने को है, आइए सुनते हैं समाचार।

0: कि एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं।

0: इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नए सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सीमारंग, सुराबाया और जकार्ता के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6-8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
3: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाइड प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
4: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नेत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नेत विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है।

0: बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बनाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइको एक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेनदेन तथा प्रकाश रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: यह समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
2: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सीआईटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और अनुमोदन शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
4: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है।

0: AIR, हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध है। आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉ मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नए सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज होगी बैठक। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से ब्रेक से हार के बाद नेमार जूनियर ने फुटबॉल से लिया संन्यास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. India to chair UNTAD's 9th session of Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection in Geneva. India to host 2-day BRICS Women Working Group meeting at Kochi in Kerala beginning today. Sri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust convenes meeting at its members in Ayodhya this afternoon. Nation pays homage to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his birth anniversary today. Prime Minister describes him as a timeless example of courage, nationalism and selfless service. And Neymar Jr. announces retirement from international football after 5-time world champion Brazil suffer stunning 2-1 defeat against Norway in FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a six-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. In the first leg of his three-nation tour, he will reach Indonesia this evening on a two-day visit. This will be Mr. Modi's fourth visit to Indonesia and his first bilateral visit since the elevation of India-Indonesia ties to the level of comprehensive strategic partnership in May 2018. During the visit, the Prime Minister will hold bilateral discussions with Indonesian President Prabowo Subianto tomorrow and review the progress made in the partnership. Our correspondent has filed this report.
3: The inter-island nation is buzzing with excitement and optimism as the Prime Minister Modi arrives here this evening for a two-day state visit. Mr. Prabowo Subianto and Prime Minister Mr. Narendra Modi are expected to discuss on strengthening the comprehensive strategic partnership with a focus on defense cooperation, trade and investment, food and energy security and cultural collaboration. The highlight of the Jakarta's program will be Prime Minister Modi's address to the Indian diaspora, which is drawing excitement across the country. Communities from Bali, Medan, Semarang, Surabaya and Jakarta are preparing a grand welcome complete with cultural performances. Thousands of Indian nationals and people of Indian origin are expected to gather in the venue, describing the visit as a matter of pride and an opportunity to strengthen their connection with the motherland. Shandeep Dashgupta, Jakarta, Indonesia.
2: In the second leg of his tour, Mr. Modi will reach Melbourne on 8th of this month on a three-day visit, where he will participate in the third India-Australia Annual Summit with Australian Prime Minister Anthony Albanese. On the last leg of his visit, Mr. Modi will be in New Zealand from 10th to 11th July. He will hold talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. India will chair the ninth session of the Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection Law and Policy in Geneva, Switzerland today. Our correspondent reports that a three-day session being organized by the UNCTAD, United Nations Trade and Development, will continue till Wednesday.
4: The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the session will bring together member states, international organizations, consumer protection authorities, academia, and other stakeholders to deliberate on emerging issues in consumer protection law and policy. The Intergovernmental Group of Experts is the principal intergovernmental platform for cooperation and dialogue on consumer protection law and policy. Secretary Department of Consumer Affairs, Nidhi Khare will chair the session. She will preside over the three-day deliberations and guide discussions among member states on key global consumer protection priorities. Neetika Gupta, Akashvani News, Delhi.
2: India will host a two-day BRICS Women Working Group meeting under its BRICS chairship, beginning today in Kochi, Kerala. Ministry of Women and Child Development said that senior government officials from BRICS member countries will come together to deliberate on key issues relating to women's empowerment across all sectors and women-led development while advancing cooperation across shared priorities. The Women Working Group meeting will provide an opportunity for member countries to deliberate and build consensus to advance women-led development. The BRICS Heads of Anti-Drug Agencies meeting will begin today in Guwahati, Assam. The two-day event is being organized by the Narcotics Control Bureau under the Ministry of Home Affairs. The meeting will bring together heads of anti-drug agencies and senior officials from BRICS member countries to strengthen cooperation against drug trafficking and substance abuse. A report.
5: The BRICS Head of Anti-Drug Agency meeting in Guwahati will focus on combating synthetic drugs and precursor diversion, strengthening intelligence sharing and operational coordination, and enhancing capacity building and institutional cooperation. Delegates will discuss emerging challenges such as new psychoactive substances, darknet-enabled trafficking, cryptocurrency-linked financial flows, and abuse use of precursor chemicals. India will also showcase its effort to combat drug abuse and trafficking, including the recently released vision document on Narcotic Control 2026-29. During the meeting, member countries will deliberate on strategies to address evolving drug-related threats and strengthening international cooperation. Rakesh Tole, Akashwani News, Guwahati.
2: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download the News on AIR app. The Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust has convened a meeting of its members today to deliberate on several important administrative and financial matters, including the findings of the special investigation team probing the counting of donations received by the trust.

0: रहा है कि मीटिंग में ब्रिक्स रुकन मुल्कों की इन एजेंसियों के सरबराहान और सीनियर अफसरान शिरकत करेंगे, जिसका मकसद नशीली अशिया पर काबू पाने वाली एजेंसियों के माबेन इदारा जाती तसलसल को मुस्तहकम बनाना और कामकाज के सिलसिले में किए जाने वाले तआवुन में मजीद गहराई लाना है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज अपने अरकान की मीटिंग बुलाई, जिसका मकसद बहुत से अहम इंतजामी और माली मामलात पर बातचीत करना है। इन मामलात में खसूसी तफ्तीशी टीम SIT की तहकीकात भी शामिल है। ये तहकीकात ट्रस्ट को मौसूला अतियात की गिनती के बारे में की जा रही है। इससे पहले ये मीटिंग मनीराम छावनी में दोपहर तकरीबन 3 बजे होना थी, लेकिन मीटिंग की जगह बदल दी गई है और अब यह मीटिंग राम मंदिर के इहाते में मुनाकिद होगी। तफसील हमारे नामनिगार से।
1: 28 जून 2026 को जारी किए गए एक सरकारी नोटिस के मुताबिक मीटिंग के एजेंडे में जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा की तरफ से दिए गए इस्तीफों पर गौर करना भी शामिल है। अरकान को ट्रस्ट से अध्यावकों के जरिए मौसूल अतियात की गिनती के बारे में SIT की उबूरी रिपोर्ट के बारे में भी बताया जाएगा। इस मीटिंग में राम मंदिर के मुस्तकबिल के मैनेजमेंट से मुताल्लिक इंतजाम पर भी बातचीत की जाएगी। एजेंडे में एक अहम मामला उस आमदनी को पेश करना भी है, जिसका अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं किया गया है, और अखराजात के बारे में बयान, बैलेंस शीट और माली साल 2025-26 से मुताल्लिक दीगर माली दस्तावेजात की मंजूरी भी शामिल है। नोटिस में चेयरमैन की इजाजत से दीगर मामला पर भी बातचीत की जाएगी। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: मुल्क आज भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। इस मौके पर वजारत सकाफत मगरबी बंगाल हुकूमत के तआवुन से कोलकाता में एक प्रोग्राम का इनेकाद करेगी। यह प्रोग्राम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें यौम पैदाइश की 2 साल तक जारी रहने वाली सरकारी तकरीबात का हिस्सा है, जिसका ऐलान पिछले साल वजारत सकाफत ने किया था। प्रोग्राम की सदारत मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह करेंगे, जबकि मरकजी वजीर सकाफत गजेंद्र सिंह शेखावत और मगरबी बंगाल के वजीर आला सुरेंद्र अधिकारी भी इसमें शिरकत करेंगे। तफसील हमारे रमनकार से।
2: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज दोपहर कोलकाता पहुंचेंगे, जहां वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें यौम पैदाइश की तकरीबात में शिरकत करेंगे। जनाब शाह सबसे पहले न्यूटाउन के इको पार्क जाएंगे, जहां वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125 फीट बुलंद मुजस्मे की संग बुनियाद की तकरीब में शिरकत करेंगे। इसके बाद दोपहर में जनाब शाह भवानीपुर में वाकई श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आबाई रिहायशगाह पर मुनदा तकरीब में उनके मुजस्मे पर गुलाह अकीदत पेश करेंगे। शाम के वक्त मरकजी वजीर दाखिला विश्व बांग्ला मेला प्रांगण में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें यौम पैदाइश की तकरीबात में शिरकत करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया है। नरेंद्र मोदी ने उन्हें जुरत हुब्बुल वतनी और बेलौस खिदमत की लाजवाल मिसाल करार दिया। वजीर आजम ने अपने एक मजमून में लिखा है कि मुल्क की तकसीम के दौरान डॉक्टर मुखर्जी ने मगरबी बंगाल को भारत का अटूट हिस्सा बरकरार रखने के लिए मुसलसल काम किया और बाद में उन्होंने अपनी जिंदगी जम्मू कश्मीर के मसले के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने कहा कि 2019 में आईन की दफा 370 और 35A की मनसूखी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कुर्बानी को पेश किया जाने वाला सबसे मौजूं खिराज अकीदत है। मुंबई और महाराष्ट्र के साहिली इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं ने मामूल की जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है। रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां बड़ी नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिले में शदीद बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, जबकि मुंबई और नवी मुंबई में कई इमारतों के गिर जाने के वाकये में कई अफराद हलाक हो गए। रिपोर्ट।
1: भारतीय महकमे मौसमियात ने आज मुंबई, थाने, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश की पेशगोई करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। IMD ने रायगढ़ जिले के लिए इंतहाई शदीद बारिश के खदशे के पेश नजर रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर साहिली जिलों और पुणे के तमाम सरकारी म्यूनिसिपल और प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों को आज बंद रखने का फैसला किया गया है। संगीता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: ब्राजील के तजर्बेकार फुटबॉलर नेमार जूनियर ने बैन अलाक्वामी फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। यह ऐलान ऐसे वक्त किया गया है जब 5 बार की आलमी चैंपियन ब्राजील की टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे से 2-1 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो

0: 34 साला नेमार ने ब्राजील की जानिब से सबसे ज्यादा बैन अलावामी गोल करने वाले खिलाड़ी के तौर पर अपने करियर का इख्तिताम किया। ब्राजील की छठी मरतबा वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद इस वक्त खत्म हो गई जब नॉर्वे के अर्लिंग आलाम ने मैच के आखिरी लम्हात में दो गोल किए। नेमार ने इजाफी वक्त में पेनल्टी के जरिए एक गोल जरूर किया लेकिन वो शिकस्त का फर्क कम करने के सिवा कुछ न कर सके। नेमार के रिटायरमेंट के साथ ब्राजील की फुटबॉल के एक शानदार बैन अलावामी दौर का इख्तिताम हो गया। ब्राजील के लिए यह मुसलसल सातवां मौका था जब उसे वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में किसी यूरोपीय टीम के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी के जरिए शहरियों को बाइख्तियार बनाए जाने के मौजू पर एक तफसीली मुजाकरा नशर करेगा। यह मुजाकरा साइबर सिक्योरिटी के माहिर गुलशन राय के साथ किया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान सामीन इस मौजू पर अपने सवाल इन टेलीफोन नम्बर पर पूछ सकते हैं 0112342100 और 0111-2331-4444। इसके अलावा आप अपने सवाल 9289-094044 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं या #AskEIR के साथ एक्स पर भी भेज सकते हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शायद होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। नवा इंकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने मुल्क में एलएनजी सप्लाई में बेहतरी और हुकूमत का इमरजेंसी गैस रेगुलेशन वापस लेने के फैसले को सफे अव्वल पर शायद करते हुए लिखा है कि मगरबी एशिया में सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आने के बाद कुदरती गैस सप्लाई पर आयत पाबंदी खत्म कर दी गई है। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर मगरबी एशिया के दौरे पर तवानाई तिजारत और सरमायाकारी और सिक्योरिटी समेत कई अहम उमूर पर करेंगे तबादले ख्याल। इस खबर को आज के अखबारों ने खसूसियत के साथ जगह दी है। रोजाना प्रताप की सुर्खी है जिनरा में मसनू जहानत एआई से मुतालिक अकवाम मुतहदा के आलमी मुकालमे में भारतीय वफद की क्यादत वजीर ममलकत बराए खारजा कीर्ति वर्धन करेंगे। हुकूमत ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल और नाजेबा सलूक से मुतालिक मवाद पेश किए जाने के मामले मेटा को सख्त नोटिस जारी करते हुए 7 दिन के अंदर तफसीली जवाब तलब किया है। वजारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इतलाती टेक्नोलॉजी के इस बयान को अखबारों ने अहमियत के साथ जगह दी है।
0: और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। भारत जिनेवा में यूएनसीटीएडी के सार्फिन के तहफ़ से मुतालिक माहरीन की बैन हुकूमत ग्रुप के नए इजलास की सदारत करेगा। भारत आज से केरलम के शहर कोची में ब्रिक्स खवातीन के वर्किंग ग्रुप की 2 रोजा मीटिंग की मेजबानी करेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज दोपहर अयोध्या में अपने अरकान की मीटिंग तलब की है। मुल्क आज भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। वज़ीर आज़म ने उन्हें हौसले वतन परस्ती और बेलौस खिदमत की इख़लासानी मिसाल करार दिया है। और नेमार जूनियर ने फीफा आलमी कप में 5 बार के आलमी चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे के हाथों 2-1 से शिकस्त के बाद बैन अलावामी फुटबॉल से रिटायर होने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। सुबह की घड़ी में वक्त हुआ है 8:45 और ठीक 15 सेकेंड। अब प्रस्तुत है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आप सुनेंगे राकेश पाठक का गायन, राग है शुद्ध सारंग। तबले पर संगत कर रहे हैं आशीष मिश्रा, हारमोनियम पर जाकिर धौलपुरी। तो आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

Mama,

सामने आपको बताते हैं स्क्रूटिंग के बाद सुबह का ही प्रोग्राम में आप समाप्त फरमाएंगे हमद और नातिया कलाम पेश करेंगे जनाब अबरार किरतपुरी। 9:45 पर प्रोग्राम होगा आज सवेरे, 9:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 10 बजे सुनिएगा अख़बार ज़र्री पर मबनी प्रोग्राम शमे फ़िरोज़ा। 10:05 पर हुस्न ग़ज़ल प्रोग्राम में आज समाप्त फरमाइएगा कमल हंसपाल और जुनैद की गाई गजलें। 10:30 पर हम पेश करेंगे जनाब आर के शर्मा का तहरीर करदा ड्रामा जन्नत का पासपोर्ट। 11 बजे से आप लुत्फ ले सकेंगे फिल्मी नगमों का प्रोग्राम होगा मेरी पसंद। 11:30 हम पेश करेंगे रेडियो डॉक्टर। 12 बजे खबरें शुरू की जाएंगी और 12:10 से 12:45 तक सुनिएगा प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। 12:30 पर हम पेश करेंगे प्रोग्राम तारीख साज, आज का मौजू है लाल किला। 12:45 पर प्रोग्राम होगा सुर्खियों में। 1 बजे आलमी खबरें नशर की जाएंगी और 1:15 पर हमारी आज की पहली मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। तो सामने था एक मुख्तसर तारुफ हमारे यहां से नेचर होने वाले प्रोग्रामों का जो आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

इंडिया में 1071 किलोहर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रेडिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश है खिदमत प्रोग्राम सुबगाही। सुबगाही प्रोग्राम में आज समाप्त फरमाइए हमदिया व नातिया कलाम पेश कर रहे हैं जनाब अबरार किरतपुरी।

पर

是啥词儿？还是来接兄家的门，得嘞啊得，得啊得哟。还是来接兄家的门，得嘞啊得，得啊得哟。不是。

0: एनी फ्रैंक और उनके परिवार को एम्स्टर्डम के एक गोदाम के गुप्त और बंद हिस्से में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और 1944 में सिंगापुर से रेडियो पर भाषण देते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सार्वजनिक रूप से राष्ट्रपिता कहने वाले पहले व्यक्ति बने थे। और 2002 की बात करें तो सेरेना विलियम्स ने अपनी बहन वीन्स को हराकर अपना पहला विंबलडन सिंगल्स खिताब जीता था।
1: एंड इन 2019 द वर्ल्ड सिटी ऑफ जयपुर वाज ऑफिशियली इंस्क्राइब्ड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ड्यूरिंग द 43rd सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी।
0: और श्रोताओं, अब याद करते हैं उन महान शख्सियतों को जिनकी आज पुण्यतिथि या जन्मदिन है। सबसे पहले बात करते हैं प्रताप नारायण मिश्र के बारे में। हिंदी साहित्य में भारतेंदु युग के प्रमुख स्तंभों में गिने जाने वाले प्रताप नारायण मिश्र की आज पुण्यतिथि है। उन्होंने हिंदी खड़ी बोली को नई पहचान दी और भारतेंदु हरिश्चंद्र के आदर्शों को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। भारत की पहली महिला बैरिस्टर के रूप में पहचानी जाने वाली कार्नेलिया सोराब जी की भी आज पुण्यतिथि है। उन्होंने एक ऐसे दौर में कानून की पढ़ाई की और वकालत की राह चुनी जब महिलाओं के लिए ये क्षेत्र लगभग बंद था। उन्होंने सैकड़ों महिलाओं और अनाथों को कानूनी मदद पहुंचाई और महिलाओं के लिए वकालत का पेशा खोलने की मांग उठाई। हिंदी सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने वाले फिल्मकार चेतन आनंद को भी आज याद किया जा रहा है। आज उनकी पुण्यतिथि है। उनकी फिल्म नीचा नगर ने कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता था, जो भारतीय सिनेमा के लिए बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने हकीकत, हीर रांझा, टैक्सी ड्राइवर और कुदरत जैसे यादगार फिल्में बनाई थी। चेतन आनंद ही वे महान निर्देशक थे जिन्होंने सुपरस्टार राजेश खन्ना को पहला बड़ा ब्रेक दिया था। आइए अब आपको उनकी फिल्म हकीकत का गीत मस्ती में छेड़ के तराना सुनाते हैं।

0: भारत के जाने माने उद्योगपति धीरू भाई अंबानी को भी आज हम याद कर रहे हैं। गुजरात के एक छोटे से गांव में जन्मे धीरू भाई ने शुरुआती दिनों में यमन के अदन शहर में एक पेट्रोल पंप पर काम किया और वहीं से व्यापार की बारीकियां सीखी। भारत लौटकर उन्होंने मसालों और कपड़े के छोटे कारोबार से शुरुआत की और आगे चलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव रखी। 2016 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया था।
1: सारे आप सुन रहे थे प्रोग्राम आज सवेरे, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सुबह के 9:50 में अब खबरें नशर होंगी।
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। अब आप असदुल्ला से खबरें सुनिए। पहले खास खबरों की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। भारत जिनेवा में यूएनसीटीएडी के सारिफिन के तहफ़ से मुतालिक माहिरीन के बैन हुकूमती ग्रुप के नवे इजलास की सदारत करेगा। भारत आज से केरलम के शहर कोची में ब्रिक्स खवातीन के वर्किंग ग्रुप की 2 रोजा मीटिंग की मेजबानी करेगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट आज दोपहर अयोध्या में अपने अरकान की मीटिंग तलब की है। मुल्क आज भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश कर रहा है। वज़ीर आज़म ने उन्हें हौसले, वतन परस्ती और बेलोस खिदमत की एक लाफानी मिसाल करार दिया है। और नेमार जूनियर ने फीफा आलमी कप में 5 बार के आलमी चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे के हाथों 2-1 से शिकस्त के बाद बैन अक्वामी फुटबॉल से रिटायर्ड होने का ऐलान किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के आज अपने 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। 3 मुल्कों के इस दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी आज शाम 2 दिन के लिए इंडोनेशिया पहुंचेंगे। जनाब मोदी का इंडोनेशिया का ये 4था दौरा है और मई 2018 में जब से भारत और इंडोनेशिया के ताल्लुकात जामे दिफाई शराकतदारी की सतह पर लाए गए हैं तब से ये उनका पहला 2 तरफा दौरा है। अपने दौरे में वज़ीर-ए-आज़म कल इंडोनेशिया के सदर प्रबोवो सुब्यांतो से मुलाकात करेंगे और शराकतदारी में अब तक की पेशरफ्त

का जायजा लेंगे। अपने दौरे के दूसरे मरहले में वज़ीर-ए-आज़म इस माह की 8 तारीख को 3 रोजा दौरे पर मेलबोर्न पहुंचेंगे। यहां वो ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी अल्बानीज़ के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरी सालाना समिट में शिरकत करेंगे। अपने 3 मुल्कों के दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले में जनाब मोदी इस माह की 10 और 11 तारीख को न्यूजीलैंड जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी न्यूजीलैंड के अपने हम मनसब क्रिस्टोफर लक्षन के साथ बातचीत करेंगे। पिछले 40 साल में किसी भारतीय वज़ीर-ए-आज़म का न्यूजीलैंड का ये पहला दौरा होगा। सारिफीन उमूर खुराक और तकसीम आमा की वजारत ने कहा है कि इस इजलास में रुकन ममालिक, बैन अक्वामी तंजीमें, सारिफीन तहफ़ुज़, तालीमी इदारे और दीगर मुतालिका फरीकैन यकजा होंगे और सारिफीन के तहफ़ुज़ से मुतालिक कानून साजी और पॉलिसी के सिलसिले में उभरने वाले मामलात पर बातचीत करेंगे। ब्रिक्स ममालिक की मंशात की रोकथाम से मुतालिक एजेंसियों के सरबराहान का इजलास आज आसाम के शहर गुवाहाटी में शुरू होगा। ये 2 रोजा इजलास वजारत दाखिला के तहत मंशात की रोकथाम से मुतालिक ब्यूरो NCB के जेर एहतमाम मुनाकिद किया जा रहा है। इस इजलास में ब्रिक्स के रुकन ममालिक की इंसदादे मंशात एजेंसियों के सरबराहान और सीनियर हुकाम शिरकत करेंगे ताकि मंशात की स्मगलिंग और नशा आवर अशिया के गलत इस्तेमाल के खिलाफ तआवुन को मजीद मजबूत बनाया जा सके। भारत आसाम के शहर गुवाहाटी में आज नशीली अशिया की रोकथाम से मुतालिक एजेंसियों के ब्रिक्स सरबराहान की 2 रोजा मीटिंग की मेजबानी करेगा। वजारत दाखिला ने कहा है कि मीटिंग में ब्रिक्स रुकन मुल्कों की इन एजेंसियों के सरबराहान और सीनियर अफसरान शिरकत करेंगे जिनका मकसद नशीली अशिया पर काबू पाने वाली एजेंसियों के माबेन इदारा जाति तसलसल को मुस्तहकम बनाना और कामकाज के सिलसिले में किए जाने वाले तआवुन में मजीद गहराई लाना है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज अपने अरकान की मीटिंग बुलाई जिसका मकसद बहुत से अहम इंतजामी और माली मामलात पर बातचीत करना है। इन मामलात में खसूसी तफ्तीशी टीम SIT की तहकीकात भी शामिल है। ये तहकीकात ट्रस्ट को मौसूल अतियात की गिनती के बारे में की जा रही है। इससे पहले ये मीटिंग मणिराम छावनी में दोपहर तकरीबन 3 बजे होना थी लेकिन मीटिंग की जगह बदल दी गई है और अभी ये मीटिंग राम मंदिर के अहाते में मुनाकिद होगी। मुल्क आज भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश कर रहा है। इस मौके पर वजारत सकाफत मगरबी बंगाल हुकूमत के तआवुन से कोलकाता में एक प्रोग्राम का इनेकाद करेगी। ये प्रोग्राम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वीं यौम पैदाइश की 2 साल तक जारी रहने वाली सरकारी तकरीबात का हिस्सा है जिसका ऐलान पिछले साल वजारत सकाफत ने किया था। प्रोग्राम की सदारत मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह करेंगे जबकि मरकजी वजीर सकाफत गजेंद्र सिंह शेखावत और मगरबी बंगाल के वजीर आला सुविंदु अधिकारी भी इसमें शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वीं यौम पैदाइश पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। जनाब मोदी ने उन्हें जुरात, हुब्बुल वतनी और बेलोस खिदमत की लाजवाल मिसाल करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने एक मजमून में लिखा है कि मुल्क की तकसीम के दौरान डॉक्टर मुखर्जी ने मगरबी बंगाल को भारत का अटूट हिस्सा बरकरार रखने के लिए मुसलसल काम किया और बाद में उन्होंने अपनी जिंदगी जम्मू कश्मीर के मसले के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने कहा कि 2019 में आईन की दफा 370 और 35A की मनसूखी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कुर्बानी को पेश किया जाने वाला सबसे मौजूद खराज अकीदत है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मुंबई और महाराष्ट्र के साहली इलाकों में लगातार मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं ने मामूल की जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है। रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है जहां पर बड़ी नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में शदीद बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है जबकि मुंबई और नवी मुंबई में कई इमारतों के गिर जाने के हादसे में कई अफराद हलाक हो चुके हैं। ब्राजील के तजुर्बाकार फुटबॉलर नेमार जूनियर ने बैन अक्वामी फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान ऐसे वक्त किया गया जब 5 बार की आलमी चैंपियन ब्राजील की टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे से 2-1 से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गई है।

0: 34 रन नेमार ने ब्राजील की जानिब से सबसे ज्यादा बैन अक्वामी गोल करने वाले खिलाड़ी के तौर पर अपने करियर का इख्तिताम किया। ब्राजील की छठी मरतबा वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद उस वक्त खत्म हो गई जब नॉर्वे के अर्लिंग हॉलैंड ने मैच के आखिरी लम्हात में 2 गोल किए। नेमार ने इजाफी वक्त में पेनल्टी के जरिए 1 गोल जरूर किया, लेकिन वो शिकस्त का फर्क कम करने के सिवा कुछ न कर सके। नेमार की रिटायरमेंट के साथ ब्राजील की फुटबॉल के एक शानदार बैन अक्वामी दौर का खात्मा हो गया है। ब्राजील के लिए यह मुसलसल 7वां मौका था जब इसे वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में किसी यूरोपीय टीम के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। 1990 के बाद ये इसका वर्ल्ड कप से सबसे इब्तदाई मरहले में बाहर होना भी है। नेमार की जज्बाती रुखसती ने ब्राजील की फुटबॉल के एक ऐसे दौर का खात्मा कर दिया है जो एक दहाई से ज्यादा अरसे तक इसकी शनाख्त बना रहा। क्रिकेट में कल रात लंदन के लॉर्ड्स के मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर खवातीन के आईसीसी T20 आलमी कप का खिताब जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर्स और एक गेंद में 3 विकेट पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बेथ मूनी ने सबसे ज्यादा 64 रन बनाए। आसाम की काबीना ने रियासती असेंबली के पहले इजलास से कबल कई अहम पॉलिसी फैसलों की मंजूरी दी है। इन फैसलों का मकसद हंगामी खिदमात को मजीद मजबूत बनाना, सनअती तरक्की को फरोग देना और हुक्मरानी के निजाम को बेहतर बनाना है। गुवाहाटी में काबीना मीटिंग के बाद सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए वजीर आला हेमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि काबीना ने आने असेंबली इजलास में पेश किए जाने वाले कई बिलों की मंजूरी दी है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। भारत जिनेवा में UNCTAD के सारिफिन के तहफ़ से मुतालिक मुहिदीन के बैन हुकूमती ग्रुप के नए इजलास की सदारत करेगा। भारत आज से केरल के शहर कोची में ब्रिक्स खवातीन के वर्किंग ग्रुप की 2 रोजा मीटिंग की मेजबानी करेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज दोपहर अयोध्या में अपने अरकान की मीटिंग तलब की है। मुल्क आज भारतीय जनसंघ के बानी डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश कर रहा है। वज़ीर आज़म ने उन्हें हौसले, वतन परस्ती और बेलोस खिदमत की एक लाफानी मिसाल करार दिया। और नेमार जूनियर ने फीफा आलमी कप में 5 बार के आलमी चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे के हाथों 2-1 से शिकस्त के बाद बैन अक्वामी फुटबॉल से रिटायर्ड होने का ऐलान किया है। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: के तर्किन वर्ल्ड्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। अखबार जर्री पर मबनी प्रोग्राम समाज फरमाइए शमे फरोजा। इंसान एक समाजी मखलूक है, वो तन्हा और अकेला अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता। यही वजह है कि इंसान के माबैन बेशुमार रिश्ते और ताल्लुकात हैं, चूंकि वो जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे के शदीद मोहताज हैं। दरहकीकत वो आपस में एक दूसरे की जरूरत है। उनके दरमियान जिंदगी गुजारने के लिए बेशुमार मामला दरपेश है। लेन देन का मामला है, तिजारत है, मईशत है, ज़राअत है, कर्ज और उधार का मामला है, खरीदो फरोख्त का मामला है, शादी ब्याह का मामला है, जमीन जायदाद का मामला है। वहीं दूसरी तरफ रंगो नस्ल, जात बिरादरी, अमीरी गरीबी, सकाफती और लिसानी और मजहबी इख्तलाफात पाए जाते हैं। खानगी व हमसायगी के मामलात में तो जाहिर सी बात है कि उनके दरमियान तनाजा पैदा होना लाजमी है। इख्तलाफात तो होंगे ही, ये तो फितरी बात है और इनके दरमियान आपस में टकाव कुदरती बात है, लेकिन कभी कभी ये मामलात भयानक शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और बात कत्लो कताल और जंगो जिदाल तक पहुंच जाती है, जो न सिर्फ इंसानी माशरे के लिए बल्कि पूरी कौम और मुल्क के लिए हर दर्जा खतरनाक साबित होती है। ऐसे हालात में सुलह से बढ़कर कोई खैर का रास्ता नहीं है। आपसी मामलात को सुलझाने के लिए कुरान करीम ने मुख्तलिफ जगहों पर सुलझोई का बेहतरीन पैगाम दिया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, दोनों में सुलह करा दो, मेल मिलाप करा दो। एक और आयत में है, इंसाफ के साथ दोनों में सुलह करा दो।

इन आयतों में इस बात का वाजह हुक्म मौजूद है कि अगर दो आदमियों के दरमियान या दो ग्रोहों के दरमियान किसी भी तरह अगर कोई झगड़ा या तनाजा है तो ऐसी हालत में दोनों के बीच सुलह करा देना चाहिए, मेल मिलाप करा देना चाहिए ताकि इंसानी समाज तबाही व बर्बादी से महफूज रहे। एक और जगह इरशाद रब्बानी है, यानी अगर वो सुलह के लिए झुकें तो आप भी सुलह के लिए अपने बाजू को फैला दीजिए। अगर सुलह के लिए कोई पेश कदमी करे तो उसे इनकार नहीं करना चाहिए बल्कि उसका इस्तकबाल करना चाहिए। कुरान करीम में अल्लाह ताला का इरशाद है, अगर किसी औरत को अपने शौहर की बेवफाई व बेपरवाही का खौफ हो तो दोनों बाहम मसालहत कर लें और इसमें कुछ हर्ज नहीं है और सुलह का रास्ता ही भलाई और खैर का रास्ता है। एक और जगह पर कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, यानी उनकी अक्सर खरगोशों में भलाई नहीं, हाँ भलाई उस शख्स के मशवरे में है जो खैर सदका और भली बात और लोगों के दरमियान मसालहत का हुक्म करे। जो शख्स अल्लाह की मर्जी हासिल करने के इरादे से ये काम करे उसे यकीनन हम बहुत बड़ा अजर अता करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सुलह को खैर का रास्ता करार दिया है और इसकी बहुत फजीलतें बयान फरमाई हैं। एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें ऐसी चीज न बता दूं जो नफिल रोजा और खैरात से भी ज्यादा अफजल हो। सहाबा ने अर्ज किया, जरूर जरूर या रसूलल्लाह बताइए तो। आपने फरमाया, आपस में सुलह सफाई करा देना। और आपने तमाम अकवाम से सुलह की थी, मुशरिकीन यहूद नसारा। सुलह हुदैबिया इसकी जिंदा मिसाल है। एक मरतबा आपने फरमाया, लोगों में सुलह करा देना ऐसा सदका है जो अल्लाह को बहुत पसंद है। एक मरतबा हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के दरमियान कुछ इख्तलाफात रोनुमा हुए जिसकी वजह से हजरत फातिमा हजरत अली से नाराज होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चली आईं। हजरत अली भी खामोशी से आ गए और उस जगह ठहर गए जहां से गुफ्तगू सुन सकें। हजरत फातिमा अपनी रंजिश के असबाब वाकयात बयान कर रही थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए बेटी, वो कौन सा मर्द और कौन सी औरत है जिसके दरमियान कहीं रंजिश वाकई न हुई हो, और क्या जरूरी है कि मर्द तमाम काम औरत की मनशाही के मुताबिक अंजाम दे और अपनी मर्जी से कुछ न करे। हजरत अली ने जब इस मसालेहाना गुफ्तगू को सुना तो बड़े मुतासिर हुए और हजरत फातिमा के साथ ताहयात बेहतरीन सलूक से पेश आए। हमें हर हाल में सुलह के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए और कभी भी सुलह के दामन को नहीं छोड़ना चाहिए। इसमें इंफरादी, इज्तमाई, समाजी, कौमी और मुल्की बल्कि हर तरह की भलाई मुजमिर है। ये अमन का रास्ता है जो इंसानियत की सलाह फलाह, तरक्की और खुशहाली का जामिन है। सामने आप सुन रहे थे अखबार जर्री पर मबनी प्रोग्राम शम्मे फरोजा। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है गैर फिल्मी गजलों का प्रोग्राम हुस्नी गजल। हुस्नी गजल प्रोग्राम में सामीन समात फरमाई कमल हंसपाल और जुनैद की गाई गजलें। लीजिए पहले समात फरमाइए कमल हंसपाल से मीना दाग देहलवी का ये कलाम।

0: आओ भाई परचून दास, तुम भी आ गए। कहो क्या हालचाल है।
1: अरे हालचाल क्या पूछते हो कलम दास, इस दोजख से ना जाने कब निजात मिलेगी।
0: भाई तुम सच कहते हो, मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि दोजख के लोगों को इस तरह तंग किया जाता है।
1: अब तुम ही देखो, गर्मियों में गर्म पानी मिलता है और सर्दियों में ठंडा पानी,
0: चार पाई में खटमलों की भरमार है।
1: ये मच्छर और खटमल रात भर सोने नहीं देते।
0: आटे में मिट्टी होती और दाल में कंकर।
1: यहाँ का नमक नमकीन नहीं होता और ना चीनी मीठी।
0: शिकायत करो तो कोई सुनवाई नहीं,
1: ना कोई फरियाद ना कोई अपील।
0: लेकिन परचून दास, आज हम में से किसी एक को तो जन्नत मिल ही जाएगी ना।
1: क्या एक ही जगह खाली है?
0: सुना तो यही है। क्या हम दो ही जन्नत के पासपोर्ट के उम्मीदवार हैं?
1: अरे उम्मीदवार तो कई हैं, बस आते ही होंगे।
0: बस आज आखिरी फैसला ही होगा।
1: अरे भाई एक इंटरव्यू तो पहले ही हो चुका है।
0: आज फैसला तो धर्मराज जी करेंगे ना।
1: हाँ,
0: इनके अलावा कोई और भी होगा?
1: चित्रगुप्त जी भी होंगे।
0: चित्रगुप्त?
1: हाँ
0: भाई, ये चित्रगुप्त क्या करते हैं?
1: भाई चित्रगुप्त हर इंसान के अच्छे बुरे कामों का हिसाब रखते हैं। उसी हिसाब से ये फैसला किया जाता है कि किस आदमी को जन्नत भेजा जाए और किसे दोजख।
0: अच्छा एक बात बताओ, इस हिसाब में हेरा फेरी तो नहीं होती ना?
1: कहते तो यही है कि यहाँ सब काम ईमानदारी से होता है।
0: रिश्वत और सिफारिश?
1: वो भी नहीं चलती।
0: ठीक है, आज देखना है वो कौन खुशकिस्मत है जिसे जन्नत का पासपोर्ट मिलता है।
1: अरे वो देखो पंडित जी। अरे वाकई।

0: के सारे
1: अम्मा परचून दास।
2: अरे वो देखो रीटा भी आ रही है।
3: हेलो रीटा जी। हेलो।

0: आज तो कोई खास बात लगती है।
1: हाँ यमदूत भाई, जन्नत में एक जगह खाली हो गई है। आज इसी बात का तो फैसला होगा कि दोजख के बाशिंदों में से किसे जन्नत का पासपोर्ट दिया जाए।
0: धर्मराज और चित्रगुप्त भी आने वाले हैं।
1: हाँ चित्रगुप्त जी, जो इंसानों के अमाल का हिसाब किताब रखते हैं।
0: लो चित्रगुप्त जी तो आ गए।
2: सुनो यमदूत, धर्मराज जी को टेलीफोन किया था?
1: जी अभी अभी टेलीफोन किया था हुजूर। उनके प्राइवेट सेक्रेटरी ने कहा है कि वो चल पड़े हैं और पहुंचने ही वाले हैं।
2: दोजख के मुंतजिम को भी टेलीफोन कर दो कि जन्नत में जाने वाले सभी उम्मीदवारों को भेज दें।
0: वो सब आ गए हैं हुजूर।
2: उनकी फाइलें और सियार डोजियर आ गए हैं।
1: जी हुजूर।
3: बादशाहों के बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह, इंसानों की किस्मत के खालिक, हर मुसीबत से निजात दिलाने वाले मालिक दो जहां, धर्मराज तशरीफ ला रहे हैं।
1: धर्मराज की जय हो।
2: धर्मराज की जय हो। महाराज आज ये एक अर्जेंट केस है, इसे निपटा दीजिए।
4: क्या है चित्रगुप्त?
2: जन्नत में एक जगह खाली हो गई है महाराज।
4: वो कैसे?
2: धरती पर बहुत गुनाह और जुल्म हो रहा है, इसलिए इंसानों की रहनुमाई के लिए एक अजीम रूह को जन्नत से धरती पर भेजा गया है।
4: इस वैकेंसी का सर्कुलर दोजख में भिजवा दिया था?
2: जी महाराज, दोजख के अखबारों में इश्तहार भी दे दिया था।
4: फिर तो बहुत अर्जियां आई होंगी।
2: अर्जियां तो बहुत आई थी, लेकिन दोजख के गवर्नर ने इंटरव्यू लेने के बाद कुछ ही लोग छांट कर भेजे हैं महाराज।
4: ठीक है, उम्मीदवारों को बारी बारी से बुलवाओ।
2: कलम सिंह वल्द फाइल राम को बुलवाओ।
5: कलम सिंह वल्द फाइल राम हाजिर हो।
6: हाजिर है, हाजिर है।
5: इधर आओ।
7: धर्मराज की जय हो।
2: इधर खड़े हो जाओ।
7: जी।
2: तुम्हारा नाम?
7: कलम सिंह वल्द फाइल राम।
2: तुमने जिंदगी भर क्या किया?
7: कलम घिसता रहा।
2: क्या मतलब? जो तुमसे पूछा जाए उसका ठीक ठीक जवाब दो।
7: मेरा मतलब है कि मैं क्लर्की करता रहा हुजूर।
4: तुम जन्नत में क्यों जाना चाहते हो?
7: जन्नत में कौन नहीं जाना चाहता हुजूर?
4: मैं पूछता हूँ तुम जन्नत में क्यों जाना चाहते हो?
7: अगर आप माइंड ना करें तो सच सच कह दूं महाराज।
2: तुम यहाँ झूठ नहीं बोल सकते।
7: तो सच बात ये है महाराज, मैंने सुना है कि जन्नत में ओवरटाइम ज्यादा लगता है और वहाँ ओवरटाइम के रेट भी ज्यादा है।
2: मालूम होता है कि तुम्हें ओवरटाइम में ही काम करने की आदत है।
7: आपसे झूठ तो नहीं बोल सकता हुजूर, सच तो ये है कि मैं ओवरटाइम में ही काम करता था। दफ्तर के टाइम में तो मैं
4: हमें सब मालूम है।
7: सुना है हुजूर जन्नत में महंगाई भत्ता दुगना है।
4: तुम बेवकूफ हो। जन्नत में ना महंगाई है और ना महंगाई भत्ता।
7: मेरी एक और गुजारिश है, सीनियरिटी के हिसाब से भी मुझे जन्नत मिलनी चाहिए हुजूर।
2: क्या मतलब?
7: मैं दोजख में सीनियर मोस्ट हूँ।
4: तुम ये कैसे कह सकते हो कि तुम सीनियर मोस्ट हो?
7: मेरे ख्याल में अगर सीनियरिटी दोजख की डेट ऑफ ज्वाइनिंग से ली जाए तो मैं सीनियर हूँ।
4: हम सीनियरिटी धरती पर पैदाइश की तारीख से लेते हैं।
7: मैं तो जब धरती पर था तब भी मैं तो यही समझिए कि दोजख में था।
4: हम सिर्फ सीनियरिटी ही नहीं देखते
7: जी,
4: हम सीनियरिटी का मेरिट देखते हैं।
7: जहाँ तक मुझे मालूम है हुजूर, मेरी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी बहुत अच्छी है।
4: वो तो हम देख लेंगे
7: जी।
4: चित्रगुप्त, इन्हें दोजख में क्यों भेजा गया?
2: महाराज इसे दोजख इसलिए मिला कि लंच दो घंटे का मनाता था। दफ्तर के वक्त में अपने दोस्तों से गप्पे लड़ाया करता था। काम सिर्फ ओवर टाइम में ही किया करता था। पब्लिक को परेशान किया।
7: अरे ये सब गलत है महाराज। मालूम होता है हुजूर कि मेरे किसी दुश्मन ने गलत रिपोर्ट दी है आपको।
2: यहाँ सब सच सच लिखा जाता है।
7: मैं अकाउंट्स का काम भी जानता हूँ हुजूर। मुझे जन्नत में भेज दे तो मैं जन्नत के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में भी काम कर सकता हूँ।
2: जब तुम अपने दफ्तर में कैशियर थे
7: जी,
2: तो तुमने एक बार 5,000 की हेरा फेरी की।
7: क्या वहाँ की अकाउंट बुक्स भी आपके पास है?
2: यहाँ हर आदमी के कारनामों का हिसाब रखा जाता है।

0: तुम जा सकते हो।
1: जी।
2: लाला परचून दास वल थोक राम को बुलाओ।
1: लाला परचून दास वल थोक राम हाजिर हो।
3: हाजिर है हुजूर, हाजिर हूँ, हाजिर हूँ।
2: तुम्हारा नाम?
3: परचून दास वल थोक राम।
2: तुम क्या करते थे?
3: मेरी दुकान थी हुजूर।
2: कैसी दुकान थी?
3: जनरल मर्चेंट की। वैसे हुजूर जिसमें चार पैसे मिल जाए वो चीज भी दुकान में रख लेते थे। फिर आपको तो मालूम
2: है, सब मालूम है, लेकिन हम तो तुमसे सच्चाई सुनना चाहते हैं। तुम जन्नत में जाना चाहते हैं?
3: जी हुजूर, अगर आपकी मेहरबानी हो जाए तो मैं भी जन्नत में कुछ दिन मौज कराऊं।
2: तुम जन्नत में क्यों जाना चाहते हैं?
3: ये भी कोई पूछने की बात है? अब आप खुद ही देख लीजिए हुजूर कि दोजख में पंखे नहीं है। और सुना है हुजूर कि जन्नत में हर एक को कूलर मिला हुआ है। दोजख में पानी सिर्फ 2 घंटे आता है और कभी कभी आता ही नहीं, बिजली भी अक्सर चली जाती है।
2: तुम झूठ बोल रहे हो, हम तुम्हारे दिल की बात जानते हैं, सच सच बताओ।
3: सच सच कहूँ हुजूर, हमें पंखे और कूलर से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो जहाँ 4 पैसे मुनाफा है वहाँ जाना चाहते हैं। जन्नत एक पॉश कॉलोनी है। सुना है दोजख में जो चीज 2 रुपए में बिकती है जन्नत में लोग उसी के 4 रुपए दे देते हैं। जन्नत में लोग मोल तोल नहीं करते, मुंह मांगी कीमत देते हैं।
2: तो मैं किसी ने गलत बताया?
3: वहाँ सुना है हुजूर की सेल टैक्स इंस्पेक्टर ही नहीं है, दुकान दारों की ईमानदारी पर ही सब काम होता है। अगर ये बात है हुजूर तो आपसे क्या छिपाना, सेल टैक्स में भी 4 पैसे बच जाएंगे।
0: तुम जन्नत में भी बेईमानी करना चाहते हो?
3: ये बेईमानी नहीं हुजूर,
0: जन्नत में सेल्स टैक्स नहीं है।
3: अगर आप बुरा ना माने तो एक बात और पूछूं?
2: हाँ हाँ पूछो।
3: वहाँ ब्लैक चलती है या नहीं?
2: बिल्कुल नहीं।
3: एक और अर्ज है हुजूर, अगर आप ये बता दें कि जन्नत में किस चीज की कमी है तो मैं वही चीज लेकर वहाँ जाऊँ।
0: बेवकूफ, जन्नत में किसी चीज की कमी नहीं है। चित्रगुप्त देखना, इसे दोजख में क्यों भेजा गया?
2: महाराज ये ज्यादा मुनाफा लेता था, कम तोलता था, मिलावट भी करता था और ब्लैक में चीजें बेचता था।
0: तुम जा सकते हो।
3: एक और गुजारिश है हुजूर, अगर आप मुझे जन्नत का पासपोर्ट ना दें तो मुझे जन्नत और दोजख के बीच में जगह दे दीजिए, दोनों तरफ के आग लग जाएंगे।
0: इसे बाहर निकालो, ये तो बड़ा लालची है।
4: चलो चलो बाहर चलो, चलो।
3: बात ये है कि हुजूर सुनिए।
4: अरे चलो बात है कुछ नहीं, चलो चलो
3: सुनिए। सुनिए
0: अगले उम्मीदवार को बुलाओ।
2: पंडित जंतर प्रसाद वल मंत्र प्रसाद को बुलाओ।
1: पंडित जंतर प्रसाद वल मंत्र प्रसाद हाजिर हो।
5: हाजिर हूँ हजूर, हाजिर हूँ।
2: तुम्हारा नाम?
5: जंतर प्रसाद वल मंत्र प्रसाद।
0: तुम स्वर्ग क्यों जाना चाहते हो?
5: हजूर मेरे बहुत से जजमान जन्नत में हैं। अगर आप मुझे जन्नत भेज दें तो मुझे उनकी खिदमत करने का मौका मिल जाएगा। हजूर
2: तुमने कभी कोई सवाब का काम किया है?
5: हजूर मैंने कभी झूठ नहीं बोला।
2: तुम झूठ बोल रहे हो कि तुमने कभी झूठ नहीं बोला?
5: माफ कीजिए हजूर, मैं तो ये भूल ही गया था कि आप तो सब कुछ जानते हैं। आप तो जानते ही हैं कि दोजख में सब पापी और मुजरिम ही रहते हैं, ना कोई मंदिर में आता है और ना ही कोई भगवान का नाम लेता है। हजूर जन्नत में लोग हवन करते हैं, भजन कीर्तन करते और करवाते हैं। जन्नत में अपनी पंडिताई खूब चलेगी। हजूर दोजख में तो भूखो मरने की नौबत आ गई है।
0: क्या तुम संस्कृत अच्छी तरह जानते हो? जो मंत्र तुम पढ़ते हो उसका मतलब तुम जानते हो?
5: हजूर अभी तक तो समझता हूँ, लेकिन अगर मैं दोजख में कुछ दिन और रहा तो मंत्रों का मतलब तो क्या मंत्र भी भूल जाऊंगा। हजूर
0: चित्रगुप्त जरा देखो तो, इसे दोजख क्यों भेजा गया?
2: महाराज ये मक्कार है, ये मंत्र वंत्र कुछ नहीं जानता।
0: अच्छा
2: ये लोगों को ठगता रहा। इसने एक बार शादी पर क्रियाकर्म के मंत्र पढ़ दिए महाराज।
0: तुम जा सकते हो, तुम जैसे ढोंगी और मक्कार आदमी को जन्नत का पासपोर्ट नहीं मिल सकता।
5: मेरी एक और गुजारिश है हुजूर।
0: इसे बाहर निकालो।
6: ये बेइंसाफी है माय लॉर्ड।
0: क्या बेइंसाफी है?
6: आपका फैसला।
2: जो कुछ कहना है इधर आकर कहो।
6: बात ये है माय लॉर्ड।
2: तुम कौन हो?
6: मैं वकील हूँ।
2: तुम क्या चाहते हो?
6: माय लॉर्ड इस पंडित पर आपने ये इल्जाम लगाया है कि इसने शादी

0: मौके पर क्रियाकर्म के मंत्र पढ़ दिए, इसी वजह से आपने इसे जन्नत का पासपोर्ट ना देने का फैसला किया है।
1: हाँ ठीक है,
0: पर माय लॉर्ड मैं पूछता हूँ कि आपके पास चश्मदीद गवाह है जो इस बात की तस्दीक करे? दूसरा ये, क्या जब ये मंत्र पढ़ रहा था तो किसी ने टेप किया था? अगर ऐसा है तो टेप सुनवाया जाए।
1: तुम जानते हो तुम कहाँ हो?
0: मैं जानता हूँ, मैं एक अदालत में हूँ और एक वकील की हैसियत से ये मेरा फर्ज है कि इंसाफ करने में अदालत की मदद करूँ। मैं तो समझता हूँ कि जन्नत में जाना हर इंसान का बुनियादी हक है और जब तक किसी का जुर्म साबित नहीं हो जाता उसे जन्नत में जाने से नहीं रोका जा सकता। माय लॉर्ड,
1: तुम भूल रहे हो, तुम धरती पर नहीं हो। यहाँ पर झूठे सच्चे गवाहों की जरूरत नहीं, हमें सब मालूम होता है तुम भी जन्नत जाना चाहते हो।
0: ये भी कोई पूछने की बात है माय लॉर्ड? अगर आप मुझे जन्नत भेज दें तो मैं आपके काम आ सकता हूँ। आप तो सब कुछ जानते हैं, आपको तो मालूम ही होगा कि जमीन पर तो मेरी वकालत की धूम मची हुई थी। मैंने ना जाने कितने चोर डाकुओं को जेल जाने से बचा लिया। आपको तो मालूम ही होगा कि दयाराम ने दिन दहाड़े कत्ल किया था लेकिन मैंने अपनी वकालत से उसे साफ बरी करवा दिया था। आप जन्नत में मुझे जज बना दीजिए, मैं सारे फैसले आपके हक में दे दूंगा माय लॉर्ड।
1: जन्नत में ना कोई अदालत है और ना कोई जज। जन्नत में कोई जुर्म नहीं होता और ना कोई मुजरिम ही है। जन्नत तो जन्नत है।
2: चित्रगुप्त, तुम्हें दोजख में क्यों भेजा गया?
1: महाराज, ये अदालतों में झूठे गवाहों को सच्चे और सच्चे गवाहों को झूठे साबित करता रहा।
2: अच्छा,
1: ये अपने मवक्किलों को ठगता रहा है महाराज।
2: तुम जा सकते हो, तुम्हें अभी दोजख में ही रहना होगा।
0: आपके इस फैसले की कॉपी मिल सकती है माय लॉर्ड?
2: तुम होश में नहीं हो, तुम भूल रहे हो कि तुम कहाँ हो। यहाँ वकील और दलील की जरूरत नहीं, तुम जा सकते हो।
3: चलिए चलिए अभी
0: चलिए,
3: रुकिए,
0: चलिए। क्या इस फैसले के खिलाफ अपील नहीं हो सकती?
3: चलिए,
0: मैं इस अपील ना करने के खिलाफ अपील करूंगा। माय लॉर्ड,
1: निकल जाओ,
0: मुझसे तमीज से बात करो, मैं इज्जत हतक का दावा पेश करूंगा।
1: इसे बाहर ले जाओ।
3: चलता है कि नहीं? चल,
0: रुकिए, रुकिए, रुकिए।
2: चित्रगुप्त
1: जी महाराज,
2: रीता देवी को बुलाओ।
1: जी,
4: रीता देवी हाजिर हो।
5: हाजिर है।
1: इधर आइए।
2: तुम्हारा नाम?
5: माय नेम इज रीता।
2: तुम तो हिंदुस्तान से आई हो, हिंदुस्तानी क्यों नहीं बोलती?
5: आप ठीक कहते हैं, मैं हिंदुस्तान से आई हूँ, बल्कि हिंदुस्तान के दिल दिल्ली से आई हूँ। ऑल राइट, आई विल आंसर यू इन हिंदुस्तानी।
1: फिर अंग्रेजी?
5: आई एम सॉरी, मेरा मतलब है मुझे क्षमा कीजिए। बात यह है, अभी जो अंग्रेजी ना पढ़ा हो वो अनपढ़ समझा जाता है। अंग्रेजी बोलने वाले की अपनी एक अलग ही शान होती है।
1: तुम स्वर्ग क्यों जाना चाहती हो?
5: सुना है स्वर्ग में डिस्को है, मुझे डिस्को डांस का बहुत शौक है। शौक क्या, मेरे मुकाबले की तो सारी दिल्ली में डिस्को डांसर ही नहीं थी। जन्नत में तो उर्वशी और मेनका जैसी डांसर है ना, मैं उनके साथ डिस्को करूंगी। आई एम ए डिस्को डांसर, आई एम ए डिस्को डांसर।
2: वो डिस्को डांस नहीं करती।
5: नहीं करती तो उन्हें सिखा दूंगी।
2: कोई और वजह?
5: मुझे चाइनीज फूड बहुत अच्छा लगता है। मैं दिल्ली में हर हफ्ते कम से कम एक बार चाइनीज फूड खाती थी और आमतौर से यहाँ बुढ़ापे में तो लोग आते हैं, लेकिन आप तो मुझे बड़ी जवानी में ही आले आए। मेरे साथ इंसाफ कीजिए।
2: चित्रगुप्त, इसे दोजख में क्यों लाया गया?
1: महाराज, इसने अपने महबूब को धोखा दिया।
2: अच्छा,
1: ये नीरज से मोहब्बत करती थी। दोनों के माँ बाप शादी के खिलाफ थे। दोनों ने खुदकुशी करने का फैसला किया।
2: अच्छा,
1: दोनों दरिया के किनारे गए, नीरज ने दरिया में छलांग लगा दी और ये वही किनारे पर खड़ी रह गई।
5: ये ठीक है, मैं नीरज से मोहब्बत करती थी, मैं भी उसके साथ मर जाना चाहती थी। जब वो दरिया में कूद गया तो मैं भी कूदने लगी थी, पर मुझे उस वक्त याद आ गया कि मम्मी ने उस दिन गाजर का हलवा बनाया। गाजर का हलवा मुझे बहुत पसंद है, मैंने सोचा गाजर का हलवा खाकर अगले दिन मर जाऊंगी।
1: पर तुम गाजर का हलवा खाकर भी नहीं मरी।
5: उस दिन शाम को मुझे एक ऐसा आदमी मिल गया जो मेरा साथ जिंदगी में जाता था, मौत में नहीं, मैंने उसे

0: ली
1: और एक साल बाद उसे भी तलाक दे दी।
0: आप तो जानते ही हैं कि औरत मर्द के हुकूक बराबर हैं। मैंने उससे कहा एक वक्त खाना मैं बनाऊंगी और एक वक्त तुम बनाओगे, एक दिन कपड़े मैं धोऊंगी दूसरे दिन तुम धोगे। वो समझता था कि ये काम सब मुझे ही करना चाहिए, इसलिए मैंने उसे तलाक दे दी।
1: और उसके बाद?
0: उसके बाद मैंने जिससे भी की सच्ची मोहब्बत की।
1: तुमने कई आदमियों से मोहब्बत की?
0: मोहब्बत ही तो की है, नफरत तो नहीं।
1: लेकिन तुम्हारी मोहब्बत मतलब से होती थी।
0: नो सर।
1: तुम फिर अंग्रेजी?
0: आई एम सॉरी।
1: तुम जा सकती हो। मैडम अब आ चलिए, आप आ चलिए, चलिए बात, चलिए चलिए बात। नथू वल्द संतू को बुलाओ।
2: नथू वल्द संतू हाजिर हो।
3: हाजिर है जनाब।
1: तुम्हारा नाम?
3: नथू वल्द संतू।
1: तुम क्या करते हो?
3: हुजूर मैं चाट बेचा करता था, लेकिन मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने कभी बेईमानी नहीं की।
4: चित्रगुप्त
1: जी महाराज,
4: जरा देखो तो इसे तो सत्य भेजा गया।
1: महाराज इसने अपनी बीवी का खून किया।
3: ये बिल्कुल झूठ है सरकार, बिल्कुल गलत है, मैंने कोई खून नहीं किया।
1: ये सच है कि तुमने तलवार नहीं उठाई।
3: हाँ?
1: बंदूक नहीं चलाई।
3: बिल्कुल।
1: और ना ही तुमने उसे मारा पीटा। लेकिन ये भी सच है कि तुम्हारी बीवी की मौत तुम्हारी वजह से हुई।
4: इसकी बीवी कहाँ है?
1: जन्नत में महाराज। वो एक वफादार और एक नेक औरत थी।
4: अच्छा।
1: उसने इसकी बहुत खिदमत की महाराज, और इसके 9 बच्चों को पाला।
3: अरे तो मैंने भी उसकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी सरकार, मैं उससे मोहब्बत करता था, उसे जी जान से चाहता था।
1: गलत, तुम मतलबी हो, तुमने उसे एक मशीन की तरह इस्तेमाल किया, तुमने उसे 9 बच्चों की माँ बना दिया। इससे तुम्हारी बीवी की सेहत खराब हो गई और इसी वजह से उसकी मौत हो गई।
4: तुमने तो बहुत बड़ा गुनाह किया है, एक या 2 बच्चों के बाद किसी बच्चे का बाप बनना मुल्क और कौम के साथ गद्दारी है। चित्रगुप्त
1: जी महाराज,
4: इसकी बीवी जन्नत में है?
1: जी महाराज।
4: अगर इसे जन्नत भेज दिया तो ये जन्नत की भी आबादी बढ़ाएगा, इसे दोजख में ही रहने दो।
1: तुम जा सकते हो, जा सकते हो। वजीर वल्द फकीर को बुलाओ।
2: वजीर वल्द फकीर हाजिर हो।
5: हाजिर है जनाब, हाजिर है। जी जी,
2: इधर इधर इधर। धर्मराज जिंदाबाद।
4: देखो जी, यहाँ ये चापलूसी नहीं चलेगी, तुमसे जो पूछा जाए सिर्फ उसका जवाब दो।
1: तुम्हारा नाम वजीर है?
5: मेरे वालिद फकीर चंद की यही ख्वाहिश थी कि मैं बड़ा होकर वजीर बनूं, इसलिए उन्होंने मेरा नाम पैदा होते ही वजीर चंद रख दिया।
1: तुम जन्नत में जाना चाहते हो?
5: आप जन्नत का पासपोर्ट मुझे बख्श दें तो बड़ी इनायत होगी जनाब।
1: तुमने उम्र भर क्या किया?
5: आवाम की खिदमत हुजूर, आवाम की खिदमत।
4: वो कैसे?
5: मैं लोगों की भलाई और हुकूक के लिए हमेशा लड़ता रहा। मैंने 21 हड़तालें करवाई, 5 बार भूख हड़ताल की और 11 बार धरना दिया हुजूर मैंने।
1: तुम हमसे कुछ नहीं छुपा सकते, भूख हड़ताल के दिनों में तुम चोरी छुपे रात को जूस पीते थे।
5: अगर जूस नहीं पीता तो मर नहीं जाता, मैं मरने के लिए भूख हड़ताल नहीं करता था। अगर मरना होता तो मरने के और भी बहुत आसान तरीके थे। मैंने तो भूख हड़ताल इसलिए की थी ताकि आवाम का हर दिल अजीज लीडर बन जाऊं। भला मरने के लिए भी कोई भूख हड़ताल करता है हुजूर?
1: तुम्हारे जलूस पर कई बार लाठीचार्ज हुआ, एक बार पुलिस ने गोली भी चलाई, लेकिन तुम कभी जख्मी नहीं हुए।
5: मुझे आवाम की खिदमत के लिए अपने आप को बचाना पड़ता था, अगर मैं जख्मी हो जाता तो आवाम की खिदमत कैसे करता हुजूर?
4: चित्रगुप्त ये कौन सी पार्टी के नेता थे?
1: महाराज इन्होंने कई बार पार्टियां बनाई और तोड़ी,
5: लेकिन वजीर तो सिर्फ एक बार, 1 साल 1 महीना और 1 ही दिन रहा ना।
1: तो तुम वजीर बनने के लिए पार्टी तोड़ते और बनाते थे?
5: और नहीं तो क्या जगमा

0: करने के लिए
1: तभी से बात करो।
0: मैं देख रहा हूँ आपने ज्यादातर मेरे साथियों को दोजख में रखा है, ये सरासर नाइंसाफी है। अरे हम जैसे लीडरों के लिए जन्नत में कुछ सीटें रिजर्व रखनी चाहिए।
1: तुमसे जो पूछा जाए उसका मुख्तसर जवाब दो।
0: तकरीर करना तो हमारा पेशा है जनाब।
2: यह तुम्हारी तकरीर नहीं चलेगी। वजीर बनने के बाद तुमने क्या किया?
0: अपनी पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा किया।
2: और इसको तुम अवाम की खिदमत कहते हो?
0: ये भी अवाम की खिदमत के लिए किया जनाब। देखिए, इलेक्शन के लिए पैसा तो चाहिए। अगर मैं अपनी पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा न करता तो पार्टी इलेक्शन में कैसे जीतती? और अगर पार्टी इलेक्शन में नहीं जीतती तो हमारी सरकार कैसे बनती? और सरकार नहीं बनती तो हम वजीर कैसे बनते? और वजीर नहीं बनते तो हाँ, लोगों की खिदमत कैसे करते?
3: धर्मराज की जय हो।
1: क्या खबर है?
3: हमने जिस पाक रूह को जमीन पर भेजा था वो वापस आ गई है। उसका कहना है कि जमीन पर तो बहुत बेइंसाफी, जुल्म और गुनाह हो रहा है। वो सब ठीक करना उसके बस की बात नहीं।
2: अच्छा, हम कुछ और सोचेंगे, लेकिन जन्नत का पासपोर्ट फिलहाल किसी को नहीं मिलेगा। ये दरबार बर्खास्त किया जाता है।
0: सुनिए, वैसे आप लोग खुश हैं?
4: जी हाँ, बहुत खुश हैं।
5: जी हाँ, खुश हैं।
0: यानी आप लोगों को कोई तकलीफ नहीं, कोई शिकायत ही नहीं?
5: जी नहीं,
4: हमें कोई शिकायत नहीं है।
0: नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आप लोग खुश नहीं हैं। आप लोगों को बहुत सी शिकायतें हैं।
5: हमें कोई शिकायत नहीं है।
4: हमें कोई शिकायत नहीं।
0: ओह, आप लोगों को तो मालूम ही नहीं कि आप लोगों को क्या तकलीफ है, क्या शिकायत है। अबे मेरे यमदूत भाइयों, मैं तुम्हें समझाता हूँ, तुम्हारे साथ बेईमानी हो रही है, बेइंसाफी हो रही है।
4: वो कैसे?
0: अरे आपको कोई छुट्टी नहीं मिलती। आप लोगों को 24 घंटे काम करना पड़ता है, दिन हो या रात, आंधी हो या बरसात, आपका काम कभी नहीं रुकता। बोलिए, ठीक है ना? बताइए।
4: हाँ है तो ठीक।
0: आपको कोई छुट्टी नहीं मिलती।
5: हाँ ये भी ठीक है।
0: जब जमीन पर मुल्कों में लड़ाई होती है, जब कोई बीमारी फैलती है या कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है, उन दिनों में आप लोगों को बहुत काम करना पड़ता है, ठीक है ना? अब बताइए, आप बताइए।
4: इस दुनिया में आजकल तो हर मुल्क में दंगे फिसाद हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जगह जगह बम रखे जाते हैं। इससे हमारा काम बहुत बढ़ गया है।
5: हाँ ये तो ठीक है।
0: हाँ तो इससे ज्यादा काम करने के लिए आपको कुछ मिलता है?
4: नहीं।
0: आपको बोनस मिलता है?
5: नहीं।
0: ये सरासर बेइंसाफी है, तानाशाही है ये। आप लोगों के काम का कोई वक्त मुकर्रर नहीं, आपको छुट्टी नहीं मिलती, आपको बोनस नहीं मिलता। और जन्नत का पासपोर्ट देने में आपकी कोई राय नहीं ली जाती। मैं हैरान हूँ इस सब पर। अरे आप लोग कहते हैं हम खुश हैं, हम सुखी हैं। देखिए, आप लोग मेरा साथ दीजिए, मैं आपको आपके हकूक दिलवाऊंगा, आपके हक के लिए लड़ूंगा। बोलिए इंकलाब, बोलिए इंकलाब।
4: ये तो इमरजेंसी का सायरन है।
5: अरे हाँ, लगता है धरती पर जबरदस्त जलजला आया है, सैकड़ों हजारों लोगों की रूहों को हमें फौरन लाना है। चलो चलो भाई चलो।
0: अरे सुनिए, अरे सुनिए, अरे भाई आप सुनिए, अरे मेरे यमदूत भाइयों, मेरी बात तो सुनो। अरे सुनो सुनो। सब चले गए तेरे के, लगता है यहाँ अपनी लीडरी नहीं चलेगी।

किशोर कुमार के बाद में आप सुन रहे थे बैटमैन फिल्म का ही नगमा। फिल्म के लिए पेशकश लता मंगेशकर को सुनिए। फिल्म है रिश्ता कागज का, मौसीकार हैं राजेश रोशन।

घर का लड़का है, पकला क्या है।

0: तनाव ऐसा अनुभव भी करते हैं, मानसिक रूप से भी आप खुश हैं, तनाव नहीं है आपको, कोई भी समस्या हो लाइफ में आप उसे जो हैंडल कर पा रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं,
1: ये भी इम्पोर्टेंट है।
0: ये सब इम्पोर्टेंट, क्योंकि तनाव तो देखिए सिचुएशन तो ऐसी रहेंगी हमारे आसपास, बट क्या आप उसमें समर्थन जिसे हम बोलते हैं योग में उसे अटेन कर पा रहे हैं कि सुख हो दुख हो लाभ हो हानि हो जय हो पराजय हो आप बैलेंस हैं। इसे भगवदगीता में स्थिति प्रज्ञा भी कहा जाता है। क्या आप उस स्थिति के आसपास भी हैं और आप सामाजिक रूप से उससे जुड़ पा रहे हैं, जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी कहते हैं कि योग जो है वो एक एक्सरसाइज नहीं है, योग जो है वो खुद से जुड़ना, उसके बाद आप विश्व से जुड़ रहे हैं और प्रकृति से जुड़ना है, तो क्या आप इस प्रकार इस हर लेवल पर जुड़ पा रहे हैं, तो भी हम कह सकते हैं कि हम फिट हैं, हम स्वस्थ हैं।
1: जी बहुत बहुत जरूरी बातें आपने यहाँ पर बताई है कि योग को भी आपने बताया, हम फिटनेस को ऐसा बोल लेके चल रहे हैं, बहुत तरीके होते हैं लोगों के अपने फिट रखने के लिए, कई लोग जिम जाते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, कुछ योग करते हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम सारी बातें चाहेंगे हमारे श्रोताओं तक पहुंचे। और डॉक्टर रीता हमारे साथ हैं, रीता जी ये बताइए आपके हिसाब से व्हाट इज फिटनेस।
2: मैं मधु जी के साथ बहुत सहमत हूं, लोग यही समझते हैं कि जिम जाना डाइट करना वेट लॉस यही आप फिटनेस को मानते हैं, इन्हीं के जो इन्होंने डिस्क्राइब की अलग अलग धारणाएं उनमें मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि धरती 5 तत्वों से बनी है, जल वायु पृथ्वी आकाश और अग्नि, और आप देखिए कि भगवान ने पांचों के पांचों जो भी तत्व हैं वो बराबर रखे हैं, एक ज्यादा होता तो हम रहने लायक नहीं होते धरती पे। वैसे ही एक इंसान की एज अ पर्सनैलिटी कोच जो मैं देखती हूँ, मैं ये देखती हूँ कि फिटनेस के भी 5 तत्व हैं, फिजिकल यानी कि अच्छा दिखना, इमोशनल अच्छी सोच रखना, स्पिरिचुअल खुद पे विश्वास होना, कल्चरल ऊंच नीच का भेदभाव न करना, और साथ में सोशल लोगों के बीच में उठने बैठने की तमीज। मैं कुछ इस हिसाब से देखती हूँ कि ये पांचों भी बैलेंस होने चाहिए, क्योंकि आजकल के जमाने में ये चीजें भी देखी जाती हैं जो फिटनेस में ही आती हैं। तो फिटनेस मेरे हिसाब से इन पांचों तत्वों का, फिजिकल तत्वों का बैलेंस है जो आपको जिंदगी में बहुत आगे लेके जाएगा। बस आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि तत्व कौन सा कम है मुझ में, ये पता कर लेंगे जिस दिन और बैलेंस कर लेंगे तो डेफिनेटली जिंदगी में बहुत आगे जाएंगे।
1: जी तो अगर ऐसा कोई तरीका है कि इसको कैसे जज करना है तो वो भी हम आज डॉक्टर नीता से जरूर जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे श्रोता हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं और हमारी कोशिश यही होती है कि हर तरह से हम उनको स्वस्थ रहने की दिशा में प्रोत्साहन दे सके। बहुत सारे मैसेजेस भी आप लोगों के आ चुके हैं और फोन कॉल्स पर भी हमारे गेस्ट हमारे लिसनर्स मौजूद हैं, तो पहले फोन कॉल ले लें मैम।
0: जी
1: बिजलिए, हेलो
3: हेलो
1: जी नमस्कार, स्वागत कार्यक्रम में आपका।
3: राजेंद्र मेरा नाम है और मैं करमपुरा दिल्ली से बोल रहा हूँ।
1: जी पूछिए आप सवाल।
3: पहले तो शालिनी मैम को, शालिनी भाई नमस्कार।
1: जी नमस्कार।
3: और बोस मैम को भी नमस्कार। मेरे पास 3-4 छोटे छोटे सवाल हैं प्लीज। पहला सवाल मेरा ये है कि चूंकि ये मशीनी युग है तो जाहिर सी बात है महीनों काम सेकंडों मिनटों में करके देने हैं, तो इसके लिए हमें कुछ ऐसे टिप्स बताएं कि क्वालिटी और स्पीड और कॉन्सेंट्रेशन के साथ हम काम कर सकें, कोई डाइट कोई एक्सरसाइज। दूसरा सवाल मेरा ये है कि दिमागी तौर पर सुपर गुदाम को रहने के लिए कई लोग अखरोट खाते हैं और बादाम खाते हैं, कई लोग पिस्ता खाते हैं और केसर खाते हैं, तो इसमें से बेस्ट डाइट कौन सी होगी। तीसरा सवाल मेरा ये है कि मैंने ये नोट किया कि कई ऐसे शख्स होते हैं मैम की होते पतले दुबले हैं पर फिर भी 25-25 किलो वेट उठा लेते हैं, और कई लोग होते हैं हट्टे कट्टे मुड़े पड़े फिर भी उनसे 5 किलो वेट भी नहीं उठता, तो इस तरह हमें क्या करना चाहिए। और चौथा और आखिरी सवाल वो ये है कि मैम आई क्या कहते हैं वॉइस जो हमारी आवाज होती है तो इसको मतलब मेलोडी में मधुर करने के लिए क्या कोई डाइट को एक्सरसाइज भी होती है कि अगर ये बताएं।
0: बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दिखने में लगता है कि हंडे करते हैं बट उनमें इतना स्ट्रेंथ नहीं होता है। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस कि आपकी बॉडी में कितना फैट है, कितना मसल मास है, कितना फैट फ्री मास है, कितना वाटर कंटेंट है, और ओवरऑल आप कितना ज्यादा आपके मसल स्ट्रांग है, आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है। फिटनेस के डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स होते हैं कि कितना एंड्योरेंस है आपकी बॉडी में, कितना स्ट्रेंथ है आपकी मसल्स में और कितनी फ्लेक्सिबल है, तो इन सब लेवल पर हम फिटनेस को मेजर कर सकते हैं। तो हो सकता है कोई दिखने में ऐसा लग रहा हो बट दैट कैन बी इल्यूजन, जब तक कि आप डेली अभ्यास ना करें, रेगुलरिटी ना रखें अपनी रूटीन में दिनचर्या में, तब तक हम नहीं कह सकते। किसी को सिर्फ आउटर अपीयरेंस से हम जज नहीं कर सकते हैं, कई लोग बहुत दुबले पतले दिखते हैं बट वो जैसे कि मैंने बोला बहुत हैवी वेट भी उठा लेते हैं, तो उनका मेटाबॉलिज्म कैन बी गुड हाई एंड दिस इज पॉसिबल कि उनकी बॉडी में ज्यादा स्ट्रेंथ हो और मोर एंड्योरेंस हो। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपकी रूटीन आपके लाइफस्टाइल के ऊपर निर्भर करता है, सिर्फ जेनेटिक्स ही नहीं। तो क्या होनी

0: चाहिए रूटीन और लाइफस्टाइल, जिससे कि हम स्ट्रांग बन जाए।
1: जी मैं तो योग एक्सपर्ट हूँ, योग ही सबसे पहले मेरे मन में आता है कि आप अगर रेगुलर जो है योग प्रैक्टिस करते हैं, जरूरी नहीं है कि आप एक घंटा करें, अगर आपके पास आधा घंटा है आप आधा घंटा करें, 45 मिनट्स करें, और अगर वो भी नहीं है तो 5 मिनट्स का वाइब ब्रेक जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने जो है बनाया है, जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए है, 5 मिनट का अभ्यास भी अगर आप करें तो आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, एनर्जी लेवल्स इम्प्रूव कर सकते हैं, यू कैन रिफ्रेश रिफोकस योर सेल्फ। तो अगर उतना भी नहीं तो आप अपने सिर्फ श्वास पे ध्यान दीजिए और रिलैक्स कीजिए, तो भी अपने आप से जुड़ रहे हैं और आप बेटर फील कर सकते हैं। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वर्क ऑन नॉट जस्ट ऑन द बॉडी बट ऑल्सो ऑन द ब्रेथ, माइंड, तो उन सभी लेवल्स पे वर्क करना जरूरी है।
0: माइंड के लिए क्या आप कर सकते हैं, मेडिटेशन या कुछ?
1: जी मैम, हमारा ना जो पंचकोश का थ्योरी आता है जो उपनिषद से लिया गया, पितृ उपनिषद से, जिसमें माना गया है कि हमारा जो शरीर है वो सिर्फ फिजिकल आउटर बॉडी नहीं है। मॉडर्न साइंस तो ये समझती है कि हम सिर्फ ये आउटर बॉडी फिजिकल बॉडी है, योग कहता है कि हमारे पांच कोशाज हैं, देयर आर 5 लेयर्स ऑफ आवर एक्सिस्टेंस, जिसमें जो आउटर है वो अन्नमय है, विच इज मेड अप ऑफ फूड, हम कैसा आहार खाते हैं उस पर डिपेंड करता है। देन उसके बाद आ गया प्राणमय कोश, विच इज अ प्राणिक शीत इनसाइड अस, कि हमारे अंदर जो प्राणों का प्रवाह है वो किस प्रकार हो रहा है, कितना बैलेंस्ड है हमारी नाड़ीज में। देन आफ्टर दैट देयर इज अ मनोमय कोश, विच इज अ मेंटल लेयर, मेंटल शीत। उसके बाद एक विजडम लेयर आती है विज्ञानमय, एंड द इनर मोस्ट इज अ आनंदमय, विच इज वेरी मच क्लोज टू अवर ट्रू नेचर, सच्चिदानंद, ब्लिसफुल शीत हमारी आती है। तो ऐसा माना जाता है, योग वशिष्ठ में ऐसा कहा गया है कि जो डिजीज की शुरुआत होती है वो मनोमय कोश से होती है, मन से होती है। और जब हमारे हम मन से तनाव में होते हैं, चिंता में होते हैं या दुविधा में होते हैं किसी भी, तो लॉन्ग टाइम तक जब ऐसा रहे तो हमारे प्राणिक लेयर को इम्पैक्ट करता है नेगेटिवली, यानी आपके ब्रीदिंग का तरीका बदल सकता है। अच्छा। आप गलत तरीके से श्वास ले रहे हो ऐसा संभव है, और फिर अल्टीमेटली वो रिफ्लेक्ट करता है एज अ डिजीज। तो आज जो हम किसी को कोई समस्या देख रहे हैं उसकी शुरुआत कई साल पहले से हो सकती है। ऐसा हो सकता है उस व्यक्ति को बहुत समय से तनाव रहा हो और उसने ध्यान ना दिया हो, उसकी प्राणिक शीत भी इम्पैक्ट हो गई हो, उसकी ब्रीदिंग हैफिजेड हो, पैल्पिटेशन हो, आपने सुना होगा लोगों को कि बहुत ज्यादा हार्ट बीट बढ़ जाती है, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, नींद नहीं आ रही है ठीक से, और अल्टीमेटली वो रिफ्लेक्ट करता है एज अ डिजीज। तो अगर हम इन सभी लेयर्स पे काम करें, नॉट जस्ट ऑन द आउटर बॉडी, हम प्राणिक जो है शीत उसके लिए प्राणायाम की प्रैक्टिस है, मनोमय के लिए हम बात कर रहे हैं कि हमारे जो ध्यान के अभ्यास है उस पे प्राणायाम एंड ध्यान बोध इस तरह की प्रैक्टिस, विजडम शीत जो हमारी जो है उसके लिए काउंसलिंग इज इम्पॉर्टेंट, योगिक काउंसलिंग इज वेरी इम्पॉर्टेंट, तभी हम जो है अपने क्लोजेस्ट जो हमारा ट्रू नेचर है आनंद में उससे जुड़ सकते हैं, और हर परिस्थिति में हम जो है आनंद की स्थिति में रह सकते हैं, जो कि हमें स्वस्थ भी रख सकता है। और साथ ही साथ जो योग के विभिन्न कॉम्पोनेंट है, जिसमें कि हमारा आसन आ गया जो हमारी फिजिकल स्ट्रेंथ पे काम करता है, आसनीन भवे दृढ़म ऐसा कहा गया है हठ योग में, कि आसन करने से शरीर में दृढ़ता आती है, धर्म संहिता के टेक्स्ट में इसका वर्णन मिलता है, और आसन रुजोहंती यानी डिजीज को दूर करता है, और कुरात दासनम स्थिरम आरोग्यम च लाघवम, यानी आसन करने से स्थिरता, आरोग्यता, डिजीज लेसनेस और लघुता, शरीर में लाइटनेस आती है। इस प्रकार और तत्व द्वंद्वान भी घाता, ऐसा हमारे पतंजलि योग सूत्र में कहा गया है कि आसन करने से आपके फिजिकल मेंटल सब तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दूर होते हैं। इस तरह से हम अगर अष्टांग योग की प्रैक्टिस, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और अल्टीमेटली विच समाधि, तो अगर हम इसको फॉलो करते हैं, इस रूटीन को, हम डेफिनेटली इन सभी कंपोनेंट्स का ध्यान रख सकते हैं।
0: जी तो सुनिए श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कि ये फिटनेस इतना एक छोटा सा या ऊपर दिखने वाला एक वर्ड नहीं है, ये कितना डेप्थ रखता है, बहुत सारी बातें डॉक्टर मधु ने बताई। अच्छा, हमारे साथ डॉक्टर रीता गंगवानी है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी रीता जी की, जैसे एक फिटनेस की जब हम बात करते हैं और जब किसी पेशेंट में देखते हैं, हम किसी सेलिब्रिटी को देखते हैं, तो उनकी फिटनेस और फिटनेस नॉर्मल फिटनेस में क्या फर्क आप देखती हैं, क्योंकि आप उनको कोच करती हैं?
2: उनकी जो आप देखेंगे लाइफस्टाइल बहुत ही स्ट्रेसफुल होता है, सारा दिन कैमराज के आगे, मेकअप रूम्स में, इधर से उधर भागना इवेंट्स में, तो डेफिनेटली उनको बहुत ज्यादा जरूरत है अपने फिटनेस की तरफ ध्यान रखने का। तो ऐसे में उनको सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे मधु जी ने कहा, डाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि चलते फिरते कुछ भी खा लेना, फास्ट फूड खा लेना, तो वो उनको इफेक्ट करता है। तो ऐसे में मैंने देखा है कि बहुत से ऐसे जो बच्चे हैं, सेलिब्रिटीज हैं, वो सुबह काफी जल्दी उठते हैं, इससे पहले कि वो अपनी दिनचर्या शुरू करें वो अमृत वेले में उठते हैं, क्योंकि उनको फिजिकल तकलीफों से कहीं ज्यादा मेंटल तकलीफों की तरफ ज्यादा, क्योंकि स्ट्रेस इतना होता है, तो इसीलिए पहले तो खुद को डी स्ट्रेस करना बहुत इम्पोर्टेंट रहता है उनके लिए। तो मेडिटेशन एक ऐसी चीज है जो वो सुबह अमृत वेले में करते हैं, और उसके साथ साथ जो मैं देखती हूँ और जो मैं सिखाती भी हूँ वो है ग्रेटिट्यूड। जिंदगी

0: में अगर आप शुक्र गुजार हैं किसी चीज के लिए, और हम लोग ज्यादातर कंप्लेंट्स में लगे रहते हैं और कंपैरिजन में लगे रहते हैं, क्योंकि ये जो ग्रामर वर्ल्ड है वहां पे बस यही है कि आज आप हैं और कल नया चेहरा आया तो आपको कोई नहीं याद रखता, तो ये चीज होगी, होती रहती है,
1: इनसिक्योरिटी
0: में रहते हैं, तो आपको खुद को बहुत ही बैलेंस करना पड़ता है। तो खुद के लिए एटलीस्ट मेरे पास है क्या, अब जैसे कुछ मेरे स्टूडेंट हैं जो इंटरनेशनल गए थे, वहां बोला मैम इतना टफ रूटीन है, आई एम जस्ट बर्नड आउट, हमें सोने को भी नहीं मिलता, एक घंटा भी नहीं मिलता है, तो फिर उनको मैंने कहा ठीक है तुम ये सोचो कि कितने ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे शूज में होना चाहेंगे, तुम्हारी जगह होना चाहेंगे, ग्रेटफुल रहो कि भगवान ने तुम्हें मौका दिया। तो ये लोग बहुत सारा मेडिटेशन करते हैं, ग्रेटिट्यूड करते हैं, और डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनकी लाइफ में, क्योंकि टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, और कितने ऐसे हैं जो टाइम पर अपने फोन भी बंद कर देते हैं, तो डिटॉक्सिंग करना अपने आप को डिजिटल मीडिया से, क्योंकि अगर हर चीज अपने बारे में पढ़ने लगे तो और ज्यादा टेंशन में आते हैं, तो मेंटल फिटनेस ज्यादा उनके लिए इम्पोर्टेंट है रादर देन फिटनेस। ऑफकोर्स बॉडी इम्पोर्टेंस रखती है क्योंकि आप एक ग्लैमर वर्ल्ड में है, तो जिम के साथ साथ, डाइट के साथ साथ मेंटल फिटनेस बहुत मैटर करती है, स्पेशली ग्लैमर वर्ल्ड में।
2: जी, तो बहुत इम्पोर्टेंट बात डॉक्टर नीता ने बताई। हमारे एक लिसनर हमारे साथ है फोन लाइन पर, हेलो जी नमस्कार, बताए क्या नाम है आपका? अच्छा जी, कमलेश जी बताइए क्या पूछना है?
3: मैं ये पूछ रही हूँ कि हम जैसे हम खाना खा लेते हैं उसके बाद वो पेट में दर्द हो जाता है, जैसे जैसे रात का भोजन बचा हुआ होता है थोड़ा बहुत, सोचते क्या पैकेंगे इसको खाई ले, आज की महंगाई बहुत है, सही जाता है या नहीं?
2: खाना न्यूट्रिशन पे हम बात करें, कमलेश जी जरूर सुनिए हमारा प्रोग्राम और सही न्यूट्रिशन के बारे में हमारे जो विशेषज्ञ आपको बता रहे हैं। एक जिनका प्रश्न है, ये बहुत कॉमन है और ज्यादातर लेडीज इस चीज को करती हैं कि कोई चीज बची, और जो उन्होंने कहा वो भी सही है कि इतनी महंगाई है और कोई चीज को फेंकना भी ठीक नहीं, क्या कहेंगी इस तरह का खाना खाया जा सकता है और कितने घंटों तक बना हुआ खाना खा सकता है आदमी?
0: मैं तो यही कहूंगी कि अपने शरीर को जो है डस्टबिन ना बनाए, जो है भोजन हमेशा फ्रेश खाना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि 3 घंटे के बाद जो खाना बना हुआ है उसको 3 घंटे के बाद नहीं खाना चाहिए, वो तामसिक होने लगता है। तो जो सात्विक आहार भी आपको लगता है हेल्दी फूड खा रहे हैं, तो आपने उसको फ्रिज में रखा और नेक्स्ट डे खाया तो उसके गुणों में बहुत चेंजेस आ जाते हैं, तो उतना ही बनाए जितनी आवश्यकता है, और अगर बच जाता है तो किसी गरीब को दे दें, पर कोशिश करें कि आप हेल्दी फ्रेश फूड खाएं।
2: जी जी, तो कमलेश जी आपको जवाब मिल गया, और कुछ मैसेजेस भी हैं हमारे पास, ये हमें लिखकर भेजा है हमारे श्रोता है युवराज चौहान जी, कहां बुरहानपुर एमपी से उन्होंने मैसेज किया है कि मेरी उम्र 30 इयर्स है और हाइट 5'9" है, वेट 52 है, वैसे मुझे कोई परेशानी नहीं है पर लोग बोलते हैं कि कुछ खाया पिया कर, वैसे मैं 50 kg की बोरी उठा लेता हूँ,
0: वेट तो कम है बट अगर इतना हैवी वेट भी उठा लेते हैं, हमारे किसान हैं तो डेफिनेटली बहुत शक्तिशाली हैं और अपनी डाइट और बढ़ा सकते हैं, इसका मतलब हो सकता है वो डाइट कम ले रहे हो, अगर उन्हें कमजोरी फील हो रही होती तो हम डेफिनेटली ये समझते कि कोई समस्या है उनके साथ, पर वो हेल्दी फील कर रहे हैं, अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, तो हम उनको ये तो नहीं कह सकते कि उन्हें कोई समस्या है, तो डेफिनेटली आप योगाभ्यास भी कर सकते हैं और साथ में डाइट को थोड़ा सा और बढ़ा सकते, कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट बढ़ाई जा सकती, इसमें प्रोटीन्स बढ़ाए जा सकते हैं, तो समतुल्य बैलेंस स्टेट में पहुंच जाएंगे। योग जो है सिर्फ वो वेट लॉस के लिए नहीं है, आप एक समतुल्य बैलेंस स्टेट में पहुंच जाते हैं उसे करके, तो योग के अभ्यास आसन वगैरह कर सकते हैं, बॉडी में स्ट्रेंथ भी आएगी जी, और अपनी डाइट पे थोड़ा और ध्यान दें, जो हाई कार्ब्स फूड है, जो कॉम्प्लेक्स कार्ब्स फूड है, मिलेट्स, ये सब जो हाई एनर्जी फूड जो है वो सब डेफिनेटली अपनी डाइट में शामिल करें तो मदद मिलेगी। मधु जी ने जैसे कहा कि अगर उनको कोई तकलीफ नहीं है तो हो सकता है बॉडी कॉम्पोजिशन भी वैसी हो, बट इन्होंने जो ये बात कही कि लोग कहते हैं कि मैं बहुत पतले हो पतले हो, तो मैं कहना चाहूंगी कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, जब भी लोगों को कोई काम होता नहीं वो कुछ भी डिफरेंट देखते हैं, या हो सकता है आप इतने फिट दिखाई देते हो कि कुछ जेलस भी नहीं करते हैं लोग, और अगर कोई आपको ऐसा कह रहा है, मेरा तो ये मानना है कि जेलसी एक किस्म की इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट है कि कोई आपको बोल रहा है कि आप फिट दिखाई दे रहे हैं, तो लोगों की बातों में बताइए, खुद को एक्सेप्ट कीजिए, कबूल कीजिए मैं ऐसा हूं, आप फिट है सोचने की कोई बात ही नहीं, अगर आपको प्रॉब्लम होती तो अलग बात थी, पर अगर आप फिट है तो कबूल कीजिए कि मैं ऐसा ही हूं, बार बार अगर आप इसके बारे में सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे, मैं पतला हूं तो कहीं ना कहीं आप अपने
2: ही शब्दों से, अपने ही थॉट से खुद को बीमार करते हैं और कई बार बीमारी हमारी सोच से ही आ जाती है। जब नेगेटिव सोचने लगते हैं, बाहर से किसी ने कुछ कहा और वो हमने सुना और वो हमारी बॉडी में नेगेटिविटी के रूप में बाहर निकलता है। तो आप बिल्कुल फिट हैं, बढ़िया हैं, आप लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, कबूल कीजिए कि आपकी बॉडी ऐसी है और आप खुश रहेंगे।
4: अच्छा एक चीज और बताइए डॉक्टर गीता, जैसे हम जब सेलिब्रिटीज की बात करते हैं और कुछ लोग तो जैसे साइज जीरो की बात भी करते हैं, बहुत दुबले होते हैं और वो लोग कोशिश भी करते हैं अपने को दुबला रखने की, तो वो फिट होते हैं? जैसे अभी आप कह रही हैं कि बहुत पतले हैं तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो फिटनेस और एक लुक्स,
2: हाँ,
4: ये कहाँ पर बैलेंस कर सकता है, कैसे कर सकता है?
2: आपने बोला साइज जीरो वाले लोग फिट हैं, तो मैं कहूंगी फिट हैं। पहली बात तो ये कि जब आप फिटनेस की बात करते हैं तो कभी आप खुद से ये चीज शुरू मत कीजिए, आपको ऊपर से किसी गुरु की जरूरत है जो आपको प्रॉपर डाइट बताए, प्रॉपर आपका रूटीन बताए, तब आप जीरो में जाएंगे। अगर आप अपने आप को भूखा रख के साइज जीरो के चक्कर में पड़ते हैं, या किसी कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको एनोरेक्सिया की बीमारी होती है, वो खाना खाती है फिर उंगली डाल के उल्टी कर देती है कि हाँ मेरे को पतला दिखना है, खाना अंदर नहीं रखना चाहिए, तो ये सब भी एक किस्म की बीमारी है। तो आपको पहली चीज, अगर इस तरीके से अपनी बॉडी को मेंटेन करना है, तो पहले किसी विशेषज्ञ को ढूंढे जो आपको प्रॉपरली गाइड सके आपके खाने में, आपकी जिमिंग में, आपके हर चीज में। प्लस इसके अलावा सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन में रहेंगे और चीटिंग नहीं करेंगे, अब सामने खाना आ गया, आपसे कहा गया है कि आपको पेस्ट्री नहीं खानी है और आपको मना किया गया, लेकिन पेस्ट्री सामने है और आपसे रहा नहीं गया और आपने पेस्ट्री खा ली, तो फिर डेफिनेटली आप साइज जीरो पे नहीं पहुंचेंगे। तो आप देखेंगे कि ये जितने भी लोग अपने को मेंटेन करते हैं वो बहुत ही डिसिप्लिन में रहते हैं, मतलब आगे कुछ भी हो सामने नहीं तो नहीं। तो डिसिप्लिन बहुत मैटर करता है एक अच्छी परफेक्ट लाइफस्टाइल में। और डिसिप्लिन कैसा, सुबह से लेकर रात तक, आपके जगने से लेकर सोने तक, हर पहर आपको अपने आप को डिसिप्लिन में रखना पड़ेगा, तभी जाके आप अपने फिटनेस के गोल को अचीव कर पाएंगे। आसान नहीं है बट होगा, एक दिन जरूर होगा, हिम्मत मत हारे, क्योंकि जब बीज बोया जाता है तो उसको पेड़ बनने में थोड़ा वक्त तो लगता है।
4: जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने बोली, समय लगेगा पर होगा जरूर अगर आपका निश्चय दृढ़ है तो। हमारे एक कॉलर हमारे साथ है, हेलो।
5: हेलो नमस्कार शालिनी जी।
4: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत दीदी जी, कैसी हैं आप?
5: ठीक हूँ, सबसे पुरानी होती मैं ही हूँ।
4: नहीं, आपसे भी पुराने बहुत सारे लोग हैं,
5: 27 साल है।
4: अच्छा, आप योग करती हैं रेगुलरली?
5: वो थी जो दो कदम नहीं चल सकती थी, तो फिर अब मैं 22 साल से उसी सेंटर की हेड हूँ।
4: बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको भी कुछ पूछना है क्या?
5: मैं ये प्रश्न ऐसे है कि मैं इनके थ्रू एक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि लोग जो टीवी देख के करते हैं वो ना सीखे, क्योंकि ये कहेंगे तो लोग मान जाएंगे, हम गलत को करते हुए भी तो कहेंगे तो कोई हमारी बात नहीं मानता।
4: तो जैसा हमें आता है, जैसा अभी रीता मैम कह रही थी कि किसी को गुरु मान के और उनकी ही बात का देखिए दिखाई मत करिए, तो ये बात कन्वे हमारी हुई है यहाँ पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप कार्यक्रम में जुड़ी हुई है और इसी तरह से बात करती रहा करिए। थैंक यू सो मच। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन हम ये बता दें अपने श्रोताओं को कि हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत अच्छी सिंगर्स भी हैं, दोनों की दोनों। तो पहले डॉक्टर रीता आप कुछ सुनाएंगे?
2: जी बिल्कुल, मेरा फेवरेट गाना
4: सुनाइए प्लीज।
2: किसी

0: जी ना इसी का नाम है। कुछ मैसेजेस हमारे पास हैं कि एक मैसेज हमें किया है रवि जी ने और इन्होंने लिखा है दिल्ली से ही कि व्हाट लिमिट्स फ्लेक्सिबिलिटी मोर मसल्स और नर्वस सिस्टम। और दूसरा इन्होंने पूछा है कि जनरली विच इज मोर इम्पोर्टेंट इन योग, ब्रीदिंग या स्ट्रेचिंग, आप बताएं।
1: जी आई वुड से कि योग में जो है नर्वस सिस्टम रेगुलेशन जो है विच इज मोर इम्पोर्टेंट देन फ्लेक्सिबिलिटी। इट विल फॉलो, अगर आपका मन शांत है, आपकी ब्रीदिंग जो है वो कोऑर्डिनेटेड है, तो डेफिनेटली आपकी मसल्स भी रिलैक्स होंगी।
0: अच्छा।
1: और दे आर इंटरलेटेड, बेसिकली हमारा जो माइंड और बॉडी है वो एकदम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और अगर आप तनाव में आप देखेंगे आपकी मसल्स टाइट हो जाती हैं, आप उतना फ्लेक्सिबल फील नहीं करते हैं, आपका मन शांत हो जाए तो डेफिनेटली आप देखेंगे आपके नेक मसल्स, शोल्डर मसल्स ये सब रिलैक्स हो जाते हैं, आपको बॉडी में पेन इस तरह की समस्या
0: इंपॉर्टेंट है। और ब्रीदिंग एंड स्ट्रेचिंग,
1: तो अगर हम क्या करते हैं, हम कोई आसन कराते हैं किसी को, तो हम उसमें कहते हैं आप श्वास के साथ करें इसे। तो आप आसन में सिर्फ फिजिकल कोई मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, आप साथ में उसको श्वास को लेकर चल रहे हैं। तो हम इसमें अगर मैं योग सूत्र की बात करूं तो उसमें यही है कि स्थिर सुखम आसनम, आसन क्या है जिसमें हम स्थिर हैं और सुखी हैं। तो महर्षि पतंजलि ने कहीं भी यहां पे फ्लेक्सिबिलिटी एज सच वर्ड की बात की, स्थिरता

0: की बात करी है और कंफर्ट की बात करी है, तो जब आप स्थिर है, सुखी है, तो फ्लेक्सिबिलिटी विल फॉलो। एंड देन प्रतिन शिथिल अनंत समापत्ति, यानी प्रतिन की शिथिलता मतलब रिलैक्स्ड वे में करने की बात की गई। आप जब रिलैक्स्ड वे में एक ही अभ्यास को बार बार बार बार करते हैं तो डेफिनेटली आपकी फ्लेक्सिबिलिटी फिजिकल लेवल पर इम्प्रूव होती है। एंड देन आफ्टर दैट आपके जो फिजिकल लेवल पर जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो मस्कुलर टेंशन्स हैं, जैसे कि जनरली तनाव में हमारी जो नेक मसल्स हैं, सब ऑक्सीपिटल्स, एससी मसल्स, ये सब टाइट हो जाते हैं, या सोआस मसल जो है जिसे हमारी इमोशनल मसल भी कहा जाता है, जो स्ट्रेस रहता है मसल्स टाइट हो जाती है। तो जो आप ब्रीदिंग पे काम करते हैं, श्वास पे काम करते हैं, मेंटल लेवल पर काम करते हैं, अभ्यास करते हैं, योग निद्रा इस तरह के अभ्यास करते हैं, तो आप देखेंगे उसमें एक एक मसल को प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन इज देयर, एक एक मसल को हम रिलैक्स करते हैं। तो मन पे काम करके भी हम शरीर पे काम कर सकते हैं और शरीर पे काम करके हम मन पे काम कर सकते हैं।
1: जी जी, बहुत इम्पोर्टेंट ये बात भी थी। और देखिए हमारे जो श्रोता है हमारे साथ जुड़ते हैं वो बहुत सारी चीजें यहाँ पे सीखते हैं इस कार्यक्रम से, और ऐसे ही कुछ हमने बताया है हमारी इस श्रोता ने, परिधि है दिल्ली से लिख रही है, ग्रेट इन्फॉर्मेशन, वेरी गुड टॉपिक, मच नीडेड फॉर आर बिजी लाइफ स्टाइल, थैंक यू सो मच शालिनी जी। माई टेक अवे फ्रॉम प्रोग्राम सो फार इज डिसिप्लिन एंड ग्रेटिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओवरऑल फिटनेस बोथ फिजिकल एंड मेंटल। तो ये हमारे श्रोता जब हमें बताते हैं कि हमारा प्रोग्राम जिस पर्पज से हम कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और आप भी अगर शेयर करना चाहें कि आप क्या सीख रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम से और आपका फिटनेस मंत्र क्या है, क्योंकि कुछ लोगों का अपना अलग तरीका होता है फिट रहने का, कुछ लोग जिम जाते हैं, कुछ लोग वॉक करते हैं, कुछ लोग रन करते हैं, कुछ लोग साइकिलिंग करते हैं, कुछ योग करते हैं। तो आप अगर हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आप शेयर करना चाहते हैं कि आप किस तरह से अपने आप को फिट रखते हैं, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और समय हमारे पास थोड़ा सा कम है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं करना चाह रही थी, क्योंकि हमने जो आज का जो विषय रखा है वो बिल्कुल एक इंटेंशन है करने का कि 21 जून को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं, और इस पूरे साल में हम जो जो गतिविधियां करते हैं उसमें तेजी आती है। तो इस बार जो हम ये 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, डॉक्टर मधु खुराना हमारे साथ हैं, किस तरह के बदलाव या किस तरह के अचीवमेंट्स पे आप बात करना चाहेंगी या कुछ नए इनिशिएटिव लिए गए उसके बारे में बताना चाहेंगी?
0: जी मैम, इस बार जो है हमारे जो योग महोत्सव में 13 मार्च को जो मनाया जाता है, विच इज द काउंट डाउन टू 100 डेज, लाइक वहां से शुरुआत हो जाती है, बिल्कुल बच जाता है, तो उसमें एक हमारा कैंपेन है आयुष मिनिस्ट्री का, योग 365, वो लॉन्च किया है हमारे माननीय जो आयुष मंत्री हैं उन्होंने। तो उसमें ये है कि आप एक टोल फ्री नंबर है उस पर जाकर, विच इज 1-800-315-7008, या फिर आप आयुष मिनिस्ट्री के पोर्टल पर जाकर आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं अपना नेम कॉन्टैक्ट नंबर देकर। वो आपको व्हाट्सएप पर लिंक भेजेंगे जिसमें कि 14 दिन का फ्री आपको योग जो है चैलेंज दिया जाता है, मतलब आप सेशन अटेंड कर सकते हैं। इस तरह की सुविधा दी जा रही है, सभी इससे जुड़ सकते हैं। 50th जो योग डे सेलिब्रेशन 2 मई को हुआ है काना शांति वनम में, तेलंगाना में, हैदराबाद में, जहां पर एक रिकॉर्ड भी बना है जिसमें 6000 से अधिक लोगों ने भुजंगासन का अभ्यास एक साथ किया है। भुजंगासन इज वेरी गुड आसना फॉर चेस्ट एक्सपेंशन, जो जिनको ब्रीदिंग की समस्या होती है, या फिर एक्सटेंडिंग द बैक मसल्स, जिनमें कमर दर्द की जो मस्कुलर इश्यूज रहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है, उसे दूर करने के लिए भी और उसके प्रिवेंशन के लिए भी। तो उसका एक एशियन वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। और इस बार नया यही है कि हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये सिर्फ इंटरनेशनल योग डे तक ही योग सीमित न रह जाए, आप इसे अपनी दिनचर्या का पार्ट बनाएं, यानी डेली योग अभ्यास करें, ऐसा मैसेज जो है हम देना चाहते हैं। उसके बाद मैम ने जैसे बात करी हाइजीन की, तो मैं ये कहना चाहूंगी योग में भी हाइजीन का कॉन्सेप्ट आता है, नियम के अंतर्गत शौच की बात की जाती है। हमारे जो शक्रम के अभ्यास है वो मैम ने जो आउटर जो बात करी कि हाइजीन की, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ में इंटरनल क्लींजिंग की बात भी योग करता है। और योगिक जो एटीट्यूड है वो डेवलप करना बहुत जरूरी है लोगों में, जैसे कि ईश्वर का निधान मैम ने बात करी, सरेंडरिंग एटीट्यूड की, एक्सेप्टेंस की, तो योग भी इसी की बात करता है, कर्मयोग की बात करता है कि आप कर्म करें और फल की इच्छा छोड़ें। मैं कहूंगी लोग आसन तो कर लेते हैं, प्राणायाम भी करते हैं, हालांकि प्राणायाम उतना ज्यादा नहीं करते हैं, आसन ज्यादा करते हैं, बट उसके साथ यम नियम को फॉलो अगर करें तो जो है उसका रिजल्ट कहीं गुना ज्यादा अच्छा आ सकता है।
1: जी जी जी, बहुत ही जरूरी बातें आपने बताई, ये हमारे आज के प्रोग्राम के टेक अवेज है। आप ही चलते चलते डॉक्टर रीता क्या कहना चाहेंगी, क्या आपका मैसेज रहेगा हमारे?
0: मैं श्रोताओं से ये कहना चाहूंगी कि जिंदगी की रेस जीतने से पहले शरीर को दौड़ने लायक तो बनाना पड़ेगा, नहीं तो आप पीछे रह जाएंगे इस जिंदगी की रेस में। तो मैं एक शायराना अंदाज में कहना चाहूंगी कि काम इतना करो कि हमेशा व्यस्त रहो, और पैसा इतना कमाओ कि हमेशा मस्त रहो, और व्यायाम इतना करो कि हमेशा स्वस्थ रहो, क्योंकि स्वास्थ्य जब तक आपके पास है तब तक सब कुछ है। जिस दिन स्वस्थ नहीं रहेंगे उस दिन आप कुछ भी जिंदगी में पाना चाहेंगे तो भी पा नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर हेल्थ है तो वेल्थ है। किसी टीचर ने

0: बच्चों से एक बहुत सुंदर कुर्सी दिखा के पूछा था कि इसका सबसे इम्पोर्टेंट भाग कौन सा है। किसी ने कहा पीठ, क्योंकि पीठ लगती है, किसी ने कहा हाथ जिसपे हाथ रखते हैं, पैर रखते हैं, अलग अलग चीजें बताई, लेकिन टीचर ने कहा नहीं, ये कुर्सी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट नहीं है, कुर्सी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो कीलें जो इसे जोड़ के रखती हैं। तो यही बात है कि जिंदगी की कीलें जो हमें जोड़ के रखती हैं, जैसे हैप्पीनेस है, हमारा एनर्जी है, लव है, पीस है, हार्मनी है, गुड रिलेशनशिप्स हैं, वो कीलें हैं जो हमारे शरीर को जोड़ के रखती हैं। शरीर का कितना भी ख्याल रख लो, लेकिन अगर कीलें आपकी कहीं ना कहीं ढीली पड़ गई तो कुर्सी गिरेगी ही गिरेगी। तो ये भी
1: बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है और याद रखने लायक है। और हमारे इस प्रोग्राम की कीलें तो हमारे श्रोता हैं जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं और मजबूती से जुड़े रहते हैं, इसीलिए हमारा कार्यक्रम पसंद किया जाता है। हमारे श्रोता हमें लिखते हैं कि उसको पसंद करते हैं। सबके सवाल तो हम नहीं ले पर धन्यवाद देना चाहेंगे। इसी तरह से आप लिखते रहिए, सुनते रहिए और अपना पसंदीदा कार्यक्रम लिखकर हमें बताते रहिए कि कैसा लग रहा है। आप हमें लिख सकते हैं healthaiadelhi@gmail.com पर। अब स्वीकार करिए मेरा नमस्कार और धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे गेस्ट डॉक्टर मधु खुराना को। आप योग स्पेशलिस्ट हैं मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योग में और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट डॉक्टर रीता गंगवानी, आप पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट कोच हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।
0: शुक्रिया। धन्यवाद मैम।
2: अभी आप आकाशवाणी से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे।
3: मीडियम में भी 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। दिन के 12 बजे हैं, अब आलमी खबरें नशर होंगी।

0: भी है, नेमार की जज्बाती रुख्सती ने ब्राजील की फुटबॉल के एक ऐसे दौर का खात्मा कर दिया जो एक दहाई से ज्यादा अरसे तक इसकी शनाख्त रहा है। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा है कि इस दौरे से जामे दिफाई शराकत दारी में मजीद गहराई पैदा होगी। भारत जिनेवा में UNCTAD के साइनिंग के तहफ से मुतालिक माहरीन के बैन हुकूमती ग्रुप के नए इजलास की सदारत करेगा। भारत कोची और केरला में 2 रोजा ब्रिक्स खवातीन वर्किंग ग्रुप की मेजबानी करेगा जो आज से शुरू हो रही है। पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मुजाहिरीन का रेंजर्स की फायरिंग में एक शख्स के हलाक और कई लोगों के जख्मी होने के बाद कशीदगी बढ़ गई है। और नेमार जूनियर ने फीफा आलमी कप में 5 बार के आलमी चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे के हाथों 2-1 से शिकस्त के बाद बैन अल-अक़वामी फुटबॉल से रिटायर्ड होने का ऐलान किया है। इसी के साथ खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम में 1071 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। पेश खिदमत है फिल्मी दो गानों पर मबनी प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा। प्रोग्राम की पहली पेशकश मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर की आवाजों में सावन भादो फिल्म का नगमा, जिसे मौसीकी सजाया है सोनिक ओमी ने।

ख्वाजा हिंदुस्तानी इस फिल्म के नगमे आप सुन रहे थे उदित नारायण, अलका याग्निक और सपना अवस्थी की आवाजों में। नगमानी गाते समीर, मौसीकार नदीम शर्वन। और सामने लीजिए, सुनिए प्रोग्राम की अगली पेशकश सीआईडी फिल्म के नगमे मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजों में।

0: फिलहाल दोबारों का प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा सामने इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की उर्दू सर्विस से। प्रोग्राम अभी जारी है, आगे बढ़ने से पहले ये सुनते हैं प्रोग्राम तारीख साज। आज का मौजू है लाल किला दिल्ली। पेश कर रहे हैं जनाब हसन जिया।
1: लाल किला वो तारीखी इमारत है जिसे हम दिल्ली शहर की पहचान और हिंदुस्तान में दिल्ली की मरकजियत की अलामत कह सकते हैं। ये दिल्ली में दरियाए जमुना के किनारे बना वो शानदार बुलंद पाया और तारीखी किला है जो 1857 तक तकरीबन 200 बरस तक मुगल हुक्मरानों की रिहायशगाह और दरबार था। यह किला मुगलिया सल्तनत का सियासी और इंतजामी मरकज था। हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत का दौर 300 साल के करीब रहा। बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर के बाद शाहजहां पांचवा मुगल बादशाह था जिसका दौर हुकूमत 30 साल यानी सन 1628 से सन 1658 ईस्वी तक रहा। शाहजहां को तामीरात से खसूसी दिलचस्पी थी। उससे कबल मुगल सल्तनत का दारुल हुकूमत आगरा था। जहांगीर को लाहौर और कश्मीर पसंद थे लेकिन कहा जाता था कि शाहजहां को आगरा शहर पसंद नहीं था। आगरा से दिल्ली दारुल हुकूमत की मुंतकली की वजह आगरा की गर्मी और पानी की किल्लत भी बताई जाती है। वजह जो भी हो लेकिन शाहजहां ने अपने दारुल हुकूमत को एक नया शहर बसाकर वहां मुंतकिल करने का फैसला किया। ये शहर दिल्ली में बसाया गया जो पहले भी मुख्तलिफ अदवार में और मुख्तलिफ हुकूमतों और सल्तनतों के दौर में मुल्क की दारुल हुकूमत रह चुकी थी। शाहजहां ने अपने फसील बंद शहर शाहजहानाबाद में किला मोहल्ला की तामीर 1638 में सालिमगढ़ के किले के पास शुरू की। सालिमगढ़ का किला सन 1546 ईस्वी में इस्लाम शाह सूरी ने तामीर कराया था। अंग्रेजों ने दिल्ली में जब रेल की लाइन बिछाई तो सालिमगढ़ का किला और लाल किला एक दूसरे से अलग हो गए। ये दोनों माजी में आपस में एक नहर से जुड़े हुए थे जिसे नहर बहिश्त कहा जाता था। शाहजहां ने लाल किले की तामीर 13 मई 1638 को शुरू कराई थी। इस किले की तामीर 6 अप्रैल सन 1648 को मुकम्मल हुई। इस तामीर की निगरानी शाहजहां ने खुद की थी। यह किला 254 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है। किले की दीवार दरिया की जानिब 18 मीटर और शहर की जानिब 33 मीटर ऊंची है। यह किला हस्तपहलू है। लाल किला अपने दौरे उरूज में ऐसी शानदार इमारत थी जिसके दरो दीवार हीरे मोतियों और बेहतरीन नक्काशी से मुजयन थे। छतें चांदी की थीं, लेकिन मुगल सल्तनत के जवाल के बाद नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमलों और अंदरूनी जंगों ने और बिलाखिर 1857 में अंग्रेजों की इंतकामी कार्रवाई

मंगेशकर और सोनू निगम की आवाजों में आप सुन रहे थे वीर जारा फिल्म का नगमा। नगमा गाते जावेद अख्तर, मौसीकार मदन मोहन, और सुनिए किशोर कुमार और अर्ष भोसले की आवाजों में मधुर का लिखा गीत जिसे मौसीकी सजाया एस डी बर्मन ने। फिल्म है 9/2/11।

0: सभी सुनने के साथ ही आज का फिल्मी दुकानों के प्रोग्राम मिले सुर मेरा तुम्हारा खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फिर डिश पर। पेश खिदमत प्रोग्राम सुर्खियों में,
1: आकाशवाणी है प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए सेमीकंडक्टर और उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमता पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आईटी एवं प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ सुबिमल भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्र।
2: नमस्कार श्रोताओं, सुर्खियों में आज हम चर्चा करेंगे उस क्षेत्र की जो आने वाले वर्षों में भारत की आर्थिक प्रगति, तकनीकी आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करने वाला है, सेमीकंडक्टर और उभरती प्रौद्योगिकियां। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा देश में एक नई सेमीकंडक्टर इकाई के उद्घाटन के बाद ये विषय एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आईटी और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट सुबिमल भट्टाचार्य जी। सुर्खियों में आपका स्वागत है।
3: नमस्कार
2: सुबिमल जी, हमारे कई श्रोताओं के मन में ये सवाल होगा कि सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और आज की डिजिटल दुनिया में इनका इतना महत्व क्यों है?
3: देखिए, सेमीकंडक्टर एक ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो सिलिकॉन के माध्यम से बनाया जाता है और इसमें कई बिलियन ट्रांजिस्टर होता है जो इलेक्ट्रिसिटी और कंप्यूटेशनल इंस्ट्रक्शन जो दिया जाता है उसको एग्जीक्यूट करता है। और ये आज के डेट में एक एसेंशियल ड्राइवर बन गए कि स्मार्टफोन से लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आप देख रहे हैं जिस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आगे आ रहा है, तो हर काम में आज में ये चिप्स की महत्व इतने बढ़ गए हैं, इसीलिए इनकी इम्पोर्टेंस हर क्षेत्र में बढ़ गए हैं। और इसके जो बेस होते हैं ये होते हैं कि ये सिलिकॉन की एकदम पतला सा स्लाइसेस होते हैं जिसको वेफर्स कहा जाता है, और ये स्लाइस ये प्यूरिफाइड क्वार्ट्ज से बनता है और इसके बाद फैब्रिकेशन के माध्यम से ये जितने जो ये जो ट्रांजिस्टर होते हैं इनके जो सर्किट्स होते हैं उसको रेगुलरली एच किया जाता है ये इसी वेफर के ऊपर अल्ट्रावायलेट लाइट के माध्यम से, जिस प्रोसेस को कहा जाता है फोटोलिथोग्राफी। और हम सोच सकते हैं कि ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स है वो फ्लैट है, लेकिन एक कॉमन चिप जो हमारे सामने होते हैं जो एक मिलीमीटर थिकनेस जिसके होते हैं इसमें करीब 30 माइक्रोस्कोपिक लेयर्स कंपोनेंट्स होते हैं, तो जितने दिखने में छोटा सा और आसान सा लगता है उसके अंदर में बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटी होते हैं और इसी से हर तरीका की आज के डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्मार्टफोन्स, आपकी डिफेंस की इक्विपमेंट्स और हमारे घर के किचन के भी इक्विपमेंट्स को ये चिप्स के माध्यम से हम इंस्ट्रक्शंस और कमांड देते हैं और इससे काम करते हैं वो।
2: जी, हाल ही में प्रधानमंत्री ने देश में एक नई सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई का उद्घाटन किया। उसकी परिकल्पना से निर्माण तक की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा,
4: 20 साल पहले शायद उससे भी पहले मैंने गुजरात में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए सारी योजना बनाई। गांधीनगर और प्रांतिज के पास 350-400 एकड़ जमीन तय कर ली, कुछ कंपनियों से बातचीत भी की और बात आगे नहीं चली। आज जब मैं इसे देखता हूं तो मेरा 20-22 साल पुराना जो सपना उस समय नहीं हो पाया लेकिन जब हो रहा है तो सर्वाधिक खुशी मैं अपने भीतर से अनुभव कर रहा हूं।

0: इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में कई देशों से साझेदारी भी हो रही है।
1: फिजी सेमिकाई प्लांट भारत, जापान और थाईलैंड के हमारे इंडस्ट्री पार्टनर्स के साझा प्रयासों का भी प्रतीक है। ये केवल एक बिजनेस वेंचर नहीं है, ये टेक्नोलॉजी, भरोसे और साझेदारी का ऐसा मॉडल है जो भारत की सेमीकंडक्टर जर्नी को नई गति देने वाला है। बीते सवा दो सालों में आप सभी ने स्क्रैच से स्केल तक इस पूरी फैसिलिटी को आकार दिया है। हम इसके कॉमर्शियल प्रोडक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि अभी यहां से हर साल 20 करोड़ चिप्स निकलेगी और मुझे बताया गया आप सभी यही नहीं रुकने वाले हैं, आपने हर साल 500 करोड़ चिप्स का लक्ष्य रखा है।
0: सुमेल जी, पीएम ने अभी जिस साझेदारी की बात की है, कुछ देशों के नाम लिए उन्होंने, उससे सेमी कंडक्टर्स के क्षेत्र में भारत को किस तरह का लाभ होगा उस साझेदारी से?
2: देखिए, प्रधानमंत्री का जो दूरदर्शिता है, इसीलिए उन्होंने उसी समय 20 साल पहले ये सोचा था कि किस तरीके से ये चिप्स की मदद रहेगा। और आज जब देश में इनकी सरकार ने 12 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दे रखे हैं, जिसमें से 3 ऑलरेडी कमर्शियल प्रोडक्शन में है, उसमें सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि कई सारे कंपनीज कई सारे देशों से इसमें जुड़े हुए, जैसे प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया था कि भारत, जापान, थाईलैंड ये सीजी सेमी की प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है। तो अभी जापान के प्रधानमंत्री हमारे देश में आए थे, उसमें सबसे बड़ा एक पहलू था कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में हम आगे किस तरीके से कोऑपरेशन बढ़ाएं। तो मैं समझता हूं कि ये जो साझेदारी है, ये अलग अलग कंपनीज के अलग अलग देशों की, इससे जो एक कॉम्प्लीमेंट्री सिचुएशन होते हैं, देखिए हम थे तो काफी देर से शुरू किए हैं, लेकिन इसके प्रोसेस में जितने सारे चीज है, जैसे लिथोग्राफी, इसके साथ सारे केमिकल्स होते हैं जिसमें से ये चिप्स की फैब्रिकेशन होते हैं, और इसके बाद जो पैकेजिंग होते हैं उसमें और किसी कंपनी की और किसी देश की कैपेबिलिटीज होते हैं। तो ये जो होल ऑफ द सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के जो प्रयास है, उसमें हमें ऑपरेशन के माध्यम से चलना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया के जितने सारे देश इसमें लगे हुए हमारे साथ ऑपरेशन कर रहे हैं। कुछ महीना पहले आपने देखा था कि नेदरलैंड्स की कंपनी ASML, जिनके पास सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी है ये चिप्स बनाने के लिए, उन्होंने भी टाटा के साथ एग्रीमेंट की कि ये हमारे साथ इंडिया में अपने टेक्नोलॉजी देंगे। तो मुझे लगता है कि यही माध्यम से ये कोऑपरेशन जो है, ये साझेदारी, ये कई सारे देशों का बीच में भारत के साथ चलेगा। और ये जो एक ग्लोबल ऑर्डर बन रहा है कि आप किस तरीके से ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को सस्टेन करे, और उसको सिक्योरिटी की तरफ से भी अगर देखा जाए, उसके क्रिटिकलिटी की तरफ से भी देखा जाए, तो ये पार्टनरशिप में भारत एक देश बन रहा है पूरी दुनिया के सामने कि हम भी इस पूरे इकोसिस्टम में जुड़ गए।
0: प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सेमीकंडक्टर का उत्पादन हमारे देश को कैसे विकसित भारत के लक्ष्य की ओर ले जा रहा है।
1: 5 साल पहले भारत ने संकल्प लिया था कि देश को सेमीकंडक्टर हब बनाएंगे। हम डिजाइन इन इंडिया, मेक इन इंडिया के मंत्र को लेकर आगे बढ़े, और आज देश के तीसरे सेमीकंडक्टर पावर प्लांट में भी चिप पैकेजिंग का कॉमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। साथ ही 2024 में इस प्लांट का शिलान्यास करने का अवसर मुझे मिला था। 2025 के अगस्त महीने में यहाँ टेस्टिंग चिप्स का काम शुरू हुआ और आज इस प्लांट का उद्घाटन हो गया है।
0: सुमेल जी, क्या लगता है जिस दिशा में देश बढ़ रहा है, नई इकाइयां स्थापित की जा रही हैं, और अभी भी इस दिशा में काफी कुछ किया जाना बाकी है, इस परिवर्तन के लिए देश को किन नीतिगत और संस्थागत प्रयासों की आवश्यकता होगी?
2: देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बड़े कम समय में भारत ये जो सेमीकंडक्टर की वैल्यू चेन होते हैं एडवांस फैब्रिकेशन की तरह, उसमें इन्होंने कामयाबी हासिल की है। जैसे कि अब हम इस वक्त सीजी सेमी ओसेट की बात कर रहा है सनाट गुजरात में, जो प्रधानमंत्री जी ने कल इनॉग्रेट किया, लेकिन

0: इसके अलावा एक टाटा का प्लांट भी ओसेट की आसाम की जगे रोड में, इसमें भी काम हो रहा है और इस साल के अंत तक इसका भी चिप प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। तो ये जो अक्रॉस द कंट्री जिस अप्रोच से ये सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को दिशा दिया गया है, इसमें से सबसे बड़ी बात है कि पॉलिसी और फंडिंग की तरफ से भी काफी अच्छा स्केलिंग अप हुआ है। अभी जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 बताया गया था कुछ महीना पहले, और जिसमें से हमारी जो 2026-27 की बजट में 8,000 करोड़ रुपया की बात आई थी ये सेमीकंडक्टर मिशन के लिए, तो ये मुझे लगता है कि पॉलिसी की सपोर्ट, जितने सेमीकंडक्टर सेटअप्स आए उसमें और पॉलिसी सपोर्ट किस तरीके से सरकार की तरफ से दिया जाए और फंडिंग अवेलेबल रहे, चाहे सरकार की तरफ से या प्राइवेट सेक्टर की तरफ से। बहुत सारे संस्था और बहुत सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस भी आज ये सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मुझे जो लगता है कि ये जो इकोसिस्टम जो शुरुआत में एक क्रिएशन की तरफ थे, आज वो कंसोलिडेशन और ग्लोबल इंटीग्रेशन की तरफ जा रहा है, जिसमें से ये ISM 2.0 का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन का आपके महत्व दिया गया है, जिसमें वो स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट्स, केमिकल्स और रॉ मटेरियल्स के ऊपर भी, प्लस एक सोवरेन चिप आईपी की जो प्रयास हो रही है, मुझे लगता है ये इम्पोर्टेंट रहेगा। डिजाइन टैलेंट हमारे देश में है, अब कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स की तरह और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी लिंक्स, ये सरकार की तरफ से स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज बताए गए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत सारे बड़े बड़े कंपनीज जो चिप्स में काम कर रहे हैं ग्लोबली, उनके R&D सेंटर्स हमारे देश में, जैसे इंटेल, क्वालकॉम और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, और इस सब को देखते हुए नीति आयोग के जो 10 साल के एक रोड मैप रखा गया है, ये 120 से 150 बिलियन डॉलर सेमीकंडक्टर वैल्यू चेन हमारा 2035 होना चाहिए, तो इसमें मुझे लगता है कि जो पॉलिसी सपोर्ट जिस दिशा में जा रहा है और प्रधानमंत्री का खुद का इस क्षेत्र के ऊपर नजर है, और इसके साथ साथ जो फंडिंग अवेलेबिलिटी हो रहा है, ये पूरे वैल्यू चेन में मुझे लग रहा है कि हम इसमें कामयाबी ले सकते हैं। तो ये सस्टेन तरीके से ये सपोर्ट दोनों क्षेत्रों में रहना चाहिए।
1: जी, आपने जैसे बताया कि ये चिप डिजाइन में भारतीय प्रतिभाएं काफी समय से जानी जाती हैं, विख्यात हैं, और अब इसके निर्माण में भी कदम बढ़ाने से हमारे ग्लोबल वैल्यू चेन में हमें कोई स्थान मिल सकता है। अगर आगे हम देखें, तकनीकी आत्मनिर्भरता के एक नए दौर की शुरुआत हो सकती है भारत में।
0: यह जरूर सबसे बड़ी बात है कि हमें हमेशा कहा गया है कि आप इस क्षेत्र में बहुत देर से आए, लेकिन अगर देर से भी आए लेकिन स्टेडीली जितने प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमने हाथ दिए है, जिस तरीके से इसको डिफ्यूजन की तरह सारे देश में लेके गए, और जो डिजाइन की तरफ में जो हमारा एक प्रयास रहा है, अगर आप देखें तो सरकार की तरफ से भी एक गोल दिया गया है कि 100 से ज्यादा एडवांस डिजाइन IPs इस देश में अगले कुछ साल में करना है। तो मुझे लगता है ये जो AI इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, ये जो डेटा सेंटर्स की बात हो रही है, जिस तरीके से हम क्लाइमेट कंट्रोल की तरफ, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की तरफ ध्यान दे रहे हैं, सिलिकॉन कार्बाइड पावर चिप्स और क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च, जापान और EU के साथ हम बात कर रहे हैं, तो ये सारे क्षेत्र में बहुत मैं समझता हूँ कि चेंजेस आएंगे बड़े कम समय में, क्योंकि इस पर फोकस तरीके से देखा जा रहा है। तो अभी बात रह जाती है कि हमारी जो स्किलिंग है इस देश में और हम किस तरीके से और ज्यादा से ज्यादा वो ट्रेन मैन पावर उसी स्किल सेट के हिसाब से हम प्रयास करें, और उसमें भी कई सारे संस्था आज कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने जो यंग फोर्स है जो अपने हो सकता है पढ़ाई दूसरा क्षेत्र में कराएं, इसमें जो स्किलिंग की जो रिक्वायरमेंट है उसमें इनको दे और वो भी एम्प्लॉयबल रहे ये सारे प्रयास में। तो होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच और होल ऑफ द इंडस्ट्री अप्रोच और होल ऑफ द सेक्टर अप्रोच से जो किया जा रहा है, मुझे लगता है कि हमारे एक अर्ली स्टेज एफोर्ट बहुत अच्छा रहे और उससे कंसोलिडेट करते करते आके हम इस क्षेत्र में अपना नेसेसिटी के अलावा भी ग्लोबली हम एक सिक्योर सप्लायर भी चिप्स के लिए बन सकते हैं।
1: जी, वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए यदि हम सेमीकंडक्टर और उभरती प्रौद्योगिकियों में निरंतर निवेश और नवाचार करते रहेंगे, सुबिमल जी, सेमीकंडक्टर क्षेत्र की चुनौतियों और संभावनाओं को सरल और सारगर्भित ढंग से आपने समझाया। अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे सेमीकंडक्टर और उभरती प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमता पर।

चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आईटी एवं प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ सुबिमल भट्टाचार्य जी। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्र। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

0: वॉल्यूम में भी 71 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। दिन का एक बजे चाहता है बालमी खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद आजम खान से आलमी खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अपने 6 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे से जामे दिफाई शराकत दारी मजबूत मुस्तकम होगा। भारत जिनेवा में यूएनसीटीएडी के सारिफिन के तहफ़ से मुतालिक माहरीन की बैन हुकूमती ग्रुप के नवे इजलास की सदारत करेगा। भारत कोची और केरलम में 2 रोजा ब्रिक्स खवातीन वर्किंग ग्रुप की मेजबानी करेगा जो आज से शुरू हो रही है। पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में मुजाहरीन पर रेंजर्स की फायरिंग में एक शख्स के हलाक और कई लोगों के जख्मी होने के बाद कशीदगी बढ़ गई है। नेमार जूनियर ने फीफा आलमी कप में 5 बार के आलमी चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे के हाथों 2-1 से शिकस्त के बाद बैन अलाक़वामी फुटबॉल से रिटायर होने का ऐलान किया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के 6 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। रवानगी पर अपने बयान में वजीर आजम ने कहा कि इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो की दावत पर आज से 8 जुलाई तक इंडोनेशिया के दौरे पर रहेंगे। जनाब मोदी ने कहा कि उनके इस दौरे से जामे कलीदी साझेदारी मजीद मुस्तहकम होगी, जिससे सन 2018 में इंडोनेशिया के उनके दौरे के मौके पर नई बुलंदी पर पहुंचाया गया था। इसके बाद सदर प्राबोवो जामे जमहूरिया तकरीबात में मेहमान खसूस की हैसियत से सन 2025 में भारत के सरकारी दौरे पर आए थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया में भारतीय बिरादरी के लोगों से मिलेंगे और सदर प्राबोवो के हमरा योग्या कार्यक्रम में परमानंद मंदिर का कॉम्प्लेक्स जाएंगे। इंडोनेशिया के बाद जनाब मोदी मेलबर्न जाएंगे। वो ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बनीज की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि उनके दौरे से दिफा, सिक्योरिटी, तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, मोबिलिटी, उभरती हुई अहम टेक्नोलॉजियों और अवाम से अवाम के रबते पर तबादला ख्याल के जरिए भारत ऑस्ट्रेलिया जाम कलीदी साझेदारी मुस्तहकम हो सकेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने दौरे के आखिरी मरहले में न्यूजीलैंड जाएंगे, जहां वो अपने मनसब क्रिस्टोफर लग्जम के साथ बातचीत करेंगे। पिछले 40 साल में किसी भारतीय वजीर आजम का न्यूजीलैंड का यह पहला दौरा होगा। सारिफिन उमूर, खुराक और तकसीम आमा की वजारत ने कहा है कि इस इजलास में रुकन ममालिक बैन अलाक़वामी तंजीमें, सारिफिन, तहफ़ुज़ाती तालीमी इदारे और दीगर मुतालिका फरीक़ैन यकजा होंगे। सारिफिन के तहफ़ुज़ से मुतालिक कानून और पॉलिसी के सिलसिले में उभरने वाले मामलों पर बातचीत करेंगे। माहिरीन का बैन हुकूमती ग्रुप सारिफिन के तहफ़ुज़ से मुतालिक कानून और पॉलिसी पर ताउन और मुज़ाकरात के लिए आला बैन हुकूमती प्लेटफार्म है। सारिफिन उमूर के महकमे के सेक्रेटरी निधि खरेक इस इजलास के नशी होंगी। मुसारिफिन के तहफ़ुज़ से मुतालिक बुनियादी आलमी तरजीहात के बारे में 3 रोजा बातचीत की सदारत करेंगी। इजलास की अहम बातों में सारिफिन के तहफ़ुज़ से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों का आगाज शामिल है, जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में दिसंबर सन 2025 में मंजूर किया गया था। भारत आला सतह के मुज़ाकरात में भी शिरकत करेगा, जिसका उन्वान है उसूलों की अहमियत क्यों है। भारत ब्रिक्स की अपनी सदारत के तहत ब्रिक्स खवातीन वर्किंग ग्रुप की 2 रोजा मीटिंग की मेजबानी कर रहा है, जो केरलम के शहर कोची में हो रही है। खवातीन और बच्चों की बहबूद की वजारत के मुताबिक ब्रिक्स मेंबर मुल्कों के आला सरकारी अहदेदार मुश्तरक तहरियात के ताल्लुक से ताउन बढ़ाते हुए सभी शोबों में खवातीन को बाख्तियार बनाने से मुतालिक अहम मामलों में इस खवातीन के कायदाना रोल के साथ तरक्की के मामलों पर तबादला ख्याल करेंगे। भारत आसाम के शहर गुवाहाटी में आज नशीली अशिया की रोकथाम से मुतालिक एजेंसियों के ब्रिक्स सरबराहान की 2 रोजा मीटिंग की मेजबानी करेगा।

अखला ने कहा कि मीटिंग में ब्रिक्स रुकन मुल्कों की इन एजेंसियों के सरबराहान सीनियर अफसरान शिरकत करेंगे, जिसका मकसद नशीली अशिया पर काबू पाने वाली एजेंसियों के माबेन इदारा जाती तसलसल को मुस्तहकम बनाना और कामकाज के सिलसिले में किए जाने वाले तआवुन में मजीद गहराई लाना है। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने कोमोरोस के यौम आजादी के मौके पर वहां के वजीर खारजा मोहम्मद माबी वहां की सरकार और आवाम को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि महासागर के नजरिए से रहनुमाई हासिल करते हुए भारत दोनों मुल्कों के दरमियान साझेदारी को मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है। डॉक्टर जयशंकर ने मलावी के यौम आजादी के मौके पर वहां के वजीर खारजा जो टी चपोंडा वहां की सरकार और आवाम को भी मुबारकबाद पेश की है। खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पाकिस्तान के जेर कब्जा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी रेंजर्स के आतम मुजाहिरों पर फायरिंग के वाकये में एक शख्स के हलाक और कई अफराद के जख्मी होने के बाद कशीदगी में इजाफा हो गया है। ये वाकये मुजाहिरों के खिलाफ कार्रवाई करने के दौरान पेश आया जो बुनियादी हकूक माली राहत और सियासी आजादी के मुतालबात कर रहे थे। मीडिया ने खबर भी दी है कि सिविल हकूक के 600 से ज्यादा कारकुनों को खित्ते में इस्लामाबाद मुखालिफ मुजाहिरों के बाद गिरफ्तार किया गया है। इसी दौरान बैरून मुल्क आबाद कश्मीरियों ने इन मुजाहिरों की हिमायत में कल लंदन में जमा होकर एहतजाज किया। दूसरी तरफ पाकिस्तान में कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में भी मुजाहिरों पर शिद्दत आ गई, जहां जूनियर डॉक्टर्स अपने जेर इल्तवा वजीफों की अदायगी बेहतर सिक्योरिटी अस्पताल सहूलियात का मुतालबा कर रहे थे। फ्रांस के सदर मैक्रों जल्द ही मुल्क शाम का दौरा करने वाले हैं। शाम के सरकारी मीडिया के मुताबिक सन 2024 साबिक सदर बशार अल असद की बेदखली के बाद ये किसी भी यूरोपीय लीडर का पहला दौरा होगा। फ्रांस के सदर मैक्रों ने मई सन 2025 में पेरिस में शाम के सदर अहमद अशरे की मेजबानी की थी। अहमद अशरे जो कि एक साबिक इस्लाम पसंद रहनुमा दमिश्क का इख्तदार संभालने के बाद पहली बार फ्रांस गए थे। इस मौके पर मैक्रों ने वादा किया था कि यूरोपीय यूनियन और अमरीका पर जोर देंगे कोई मुल्क शाम पर आए सख्त पाबंदियां खत्म कर ले, जिनमें से ज्यादातर पाबंदियां अब हटा दी गई हैं। इंतखाबी कमीशन ने मगरिब बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए जिमनी चुनाव का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा के अरकान सुखविंदु शेखर रे, सुषमा देव और प्रकाश चिकवारिक के मुस्ताफी होने के बाद ये सीटें खाली हुई हैं। जिमनी इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन कल जारी किया जाएगा और 14 जुलाई तक कागजात नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं। कागजात नामजदगी जांच पड़ताल उसके अगले रोज होगी। इन सीटों के लिए पोलिंग इस महीने की 24 तारीख को होना है, जबकि वोटों की गिनती उसी दिन होगी। भारतीय महकमा मौसमियात ने गुजरात, कोंकण, गोवा, वस्ती महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में आज कहीं कहीं शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात के महकमे ने मशरकी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरला, माहे, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। IMD ने कहा कि आसाम, मेघालय, बिहार, मशरकी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और मगरबी बंगाल में आज शदीद बारिश का इम्कान है। मौसमियात महकमे ने कहा कि राजधानी दिल्ली में आज हल्की बारिश के साथ आसमान पर अबर आलूद रहेगा। इसके अलावा यहां ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत तकरीबन 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और कम अज कम दर्जा हरारत तकरीबन 25 से 27 डिग्री सेल्सियस रहने का इम्कान है। मैक्सिको सिटी में अजिटिका स्टेडियम में इंग्लैंड मैक्सिको को 2-3 गोल से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। इस स्टेडियम में अब तक खेले गए 89 मैचों में से सिर्फ 2 मैचों में मैक्सिको को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन इंग्लैंड ने उमदा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपना दबदबा बरकरार रखा। इधर एक और मैच में कल रात फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे के हाथों 5 बार की आलमी चैंपियन ब्राजील को 2-1 शिकस्त होने के बाद ब्राजील के सरकर्दा खिलाड़ी नेमार जूनियर ने बैन अवी फुटबॉल से अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने करियर में ब्राजील के सबसे ज्यादा गोल किए। ब्राजील के तजुर्बेकार फुटबॉलर नेमार जूनियर ने बैन अवी फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। ये ऐलान ऐसे वक्त किया गया जब 5 बार के आलमी चैंपियन ब्राजील की टीम फीफा वर्ल्ड कप सन 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे से 2-1 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। वेनेजुएला में
जो 2 जल्जले आए थे उनमें मरने वालों की तादाद 3,242 तक पहुंच गई है, जख्मियों की तादाद 16,000

मीडियम में 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। एक नजर इस वक्त तक की अहम खबरों की सुर्खियों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने 6 रोजा दौरे पर रवाना हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरे से जामे दिफाई शराकत दारी में मजीद मजबूती आएगी। भारत जिनेवा में यूएनसीटीएडी के सारफीन के तहफ़ से मुतालिक माहरीन के बैन हुकूमती ग्रुप की नवे इजलास की सदारत करेगा। भारत कोची और केरल में 2 रोजा ब्रिक्स खवातीन वर्किंग ग्रुप की मेजबानी करेगा।

जो आज से शुरू हो रही है। और नेमार जूनियर ने फीफा आलमी कप में 5 बार के आलमी चैंपियन ब्राजील की नार्वे के हाथों 2-1 से शिकस्त के बाद बैन अल-अक़वामी फुटबॉल से रिटायर होने का ऐलान किया है। इस वक्त तक की अहम खबरों की सुर्खियां, मीडियम में भी इकदारी 71 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर, यह आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। सामिन दिन के 1:15 हुआ चाहते हैं, यहां हमारी आज की पहली मजलिस की नशरियात भी अख्ताम पजीर होती हैं। अब से कुछ ही देर बाद यानी दिन में 3 बजे अपनी दूसरी मजलिस की नशरियात के साथ हम फिर हाजिर खिदमत होंगे, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।

जी हाँ, और हम भी आपको बता देते हैं कि आज हम लेकर आए हैं 1990 में बनी हिंदी भाषा की फिल्म आशिकी, जिसने अपने संगीत की वजह से फिल्म जगत में झंडे गाड़ दिए। आज भी इस फिल्म के गीत, इस फिल्म का संगीत कल की तरह ही लोकप्रिय है, कर्णप्रिय है। इस फिल्म से संगीतकार नदीम श्रवण और गायक कुमार सानू अपना करियर बनाने में सफल रहे। इस फिल्म के संगीत एल्बम को प्लेनेट बॉलीवुड के 100 ग्रेटेस्ट बॉलीवुड साउंड ट्रैक में चौथा स्थान मिला था। बहुत बड़ी बात थी ये उस वक्त। और फिल्म को डायरेक्ट किया था मनीष भट्ट जी ने, गुलशन कुमार मुकेश भट्ट ने प्रोड्यूस किया था और फिल्म की कहानी लिखी थी रोबिन भट्ट और आकाश खुराना ने। संगीत, जैसा कि हमने आपको बताया कि नदीम श्रवण जी का था और फिल्म के सितारे थे राहुल रॉय और अनु अग्रवाल, दीपक तिजोरी। सुनते हैं ऐसी फिल्म का एक और खूबसूरत सा गीत। आपके ढेर सारे संदेश हम तक पहुंच रहे हैं और उनको भी हम शामिल करेंगे कुछ देर बाद।

राहुल राय ने फिल्म में राहुल राय का ही किरदार निभाया, यानी कि इनका फिल्म में भी नाम यही था। दिल्ली की कुड़ी अनु अग्रवाल ने फिल्म में अनु बर्गिस का रोल प्ले किया था। अवतार गिल पुलिस इंस्पेक्टर देशपांडे के किरदार में नजर आए। रीमा लागू बनी मिसेस विक्रम रॉय यानी कि राहुल की माँ। टॉम अल्टर बने आर्मी कैंपवेल। मुस्ताखा रफू मास्टर, जावेद खान अंकल पीटर और राहुल के दोस्त का किरदार निभाया था दीपक तिजोरी ने, जो बने थे बल्लू। और आपको बता दें कि फिल्म की जो कहानी है वो राहुल और अनु के बीच एक प्रेम, खूबसूरत जो प्रेम है उसके ऊपर है। दोनों अलग अलग परिस्थितियों में आते हैं लेकिन संगीत और प्यार उन्हें एक दूसरे के करीब ले आता है। परिवार, समाज और परिस्थितियों की कठिनाइयों के बावजूद दोनों अपने रिश्ते और सपनों को बचाने की कोशिश करते हैं। ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि संघर्ष, विश्वास और उम्मीद की कहानी भी है। फिल्म के गाने बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही कर्णप्रिय और बहुत ही मधुर आज भी उतने ही फेमस हैं जितने कल थे। और इन गानों को अपनी आवाज के जादू से संवारा था कुमार शानू, सानू, अनुराधा पोचवाल, उदित नारायण, नितिन मुकेश ने। संगीत नदीम श्रवण और गीतकार थे समीर रानी, मलिक और मदन पाल।

जी हाँ, ये फिल्म आज भी लोगों के दिल के करीब है। हम और आप ले लीजिए, हमें जब भी हम बात करते हैं अगर उस दौर की 1990 की, तो शायद इस फिल्म का नाम जरूर लेते हैं। इस फिल्म के बाद राहुल रॉय का हेयर कट बहुत पॉपुलर हुआ था। युवाओं में उनके जैसे हेयर कट करवाने की एक होड़ जैसी मच गई थी। महेश भट्ट इंदिरा रॉय के घर गए थे उनको बधाई देने के लिए, क्योंकि उनकी एक मैगजीन उस टाइम रिलीज हुई थी और इंदिरा जी जो थी वो एक चैरिटी वर्कर थी यूनिसेफ की, और राहुल रॉय उनके बेटे थे। महेश भट्ट ने जब राहुल रॉय को देखा तब उन्होंने मन बना लिया था कि उन्हें अपनी फिल्म आशिकी में उन्हें कास्ट करना है। महेश भट्ट अपनी बेटी पूजा भट्ट को इस फिल्म में नायिका के रूप में लेना चाहते थे, मगर पूजा ने मना कर दिया था क्योंकि तब वो फिल्मों में आने के लिए तैयार नहीं थी। और जानते हैं आप, इस फिल्म का एक बड़ा हिस्सा महेश भट्ट की असल जिंदगी से जुड़ा हुआ है, उनकी पहली पत्नी किरण भट्ट के साथ।

अदाकारों के साथ बनी फिल्म मैंने प्यार किया की अपार सफलता के बाद उसको देखते हुए महेश भट्ट के दिमाग में भी नए कलाकारों को लेकर फिल्म बनाने का आइडिया आया और उन्होंने बना दी फिल्म आशिकी। इस फिल्म के गाने इतने ज्यादा फेमस हुए थे कि टी सीरीज की ऑडियो कैसेट की सेल 1 करोड़ तक पहुंच गई थी। पहले मुख्य भूमिका के लिए दीपक तिजोरी का नाम चयन किया गया था, लेकिन राहुल रॉय से मिलने के बाद महेश भट्ट ने राहुल को ही मुख्य हीरो के रूप में लिया और दीपक तिजोरी को सपोर्टिंग रोल दिया।

हमारे संदेश आपके पहुंच गए हैं। तेलंगाना निजामाबाद से शेखर ला बख्श, बेगम राबिया जी जुड़े हुए हैं। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवानगन, कौशल्या हेमलता, डिंपल जी हमारे साथ हैं। नीतीश कुमार, दुर्गा प्रसाद पराग, ये पलारी छत्तीसगढ़ से हमारे साथ हैं। अजीत भापसर जी थे सारी जानकारी के साथ, प्रमिला भापसर के साथ। बीरनगांव गुजरात से हमारे साथ हैं। स्वर्ण सिंह गिल दलजीत जी, गांव लोहागढ़ ठाकुरबाला से जुड़े हुए हैं। और अगला जो संदेश

1990 की सदाबहार फिल्म आशिकी और उससे जुड़ी दिलचस्प दास्तान। अगली मुलाकात में फिर लेकर आएंगे किसी और यादगार फिल्म के अनसुने किस्से, शानदार गीत और उसके खूबसूरत से यादें। तब तक मुझे अनुमति दीजिए, लेकिन कहीं जाना नहीं है। 2:30 पर भी आपके लिए खूबसूरत सा प्रोग्राम लेकर आएंगी प्रीति त्यागी और उसके बाद 3 आपकी और मेरी मुलाकात होगी प्रोग्राम मिटनी मेलोडीज में। तो अभी बहुत सारी रंग है हमारी इस फिल्मी दुनिया के, बहुत सारे रस है जो आप तक पहुँचा नहीं। जुड़े रहिए आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ। फिलहाल अपने दोस्त एंड होस्ट अंजू पांडे को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम एक ही फिल्म से, आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1:40 होने को है, कुछ ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: खबरों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

अभी भी खराब है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिनों दौरे पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वो राष्ट्रपति प्रबोवो सुब्यांतो के सदस्य इंडोनेशिया का दौरा कर रहे हैं। यह दौरा दोनों देशों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी में और मजबूत करेगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति

जाएंगे तो प्रवासी भारतीयों नाल भी गलबात करेंगे। इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएंगे। उनका दौरा भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक वाणिज्यिक भागीदारी में होर मजबूत करेगा। दोवें धिरां रक्षा ते सुरक्षा व्यापार ते निवेश सिक्ख्या गतिशीलता उभरदियां तकनालोजियां खेडां ते जन संपर्क बारे चर्चा करनगियां। श्री मोदी आस्ट्रेलिया विच

0: आदाब, यह आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वज़ीर आज़म ने कहा है कि इससे आजाद और खुले भारत बहरुल काहिल खत्ते के प्रति नुक्ता नजर के साथ साथ मशरकी मुल्कों से रابطे बढ़ाने की भारत की पॉलिसी को तकवीत मिलेगी। सरकार ने कहा है कि डिजिटल हेल्थ खदमात को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से ज्यादा हेल्थ रिकॉर्ड्स को आभा अकाउंट्स के साथ मुंसलिक किया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ में आज शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में यूक्रेन के शहर कीश में कम से कम 10 अफराद हलाक और 46 से ज्यादा जख्मी हो गए। इंग्लैंड मेक्सिको को 2-3 से शिकस्त देकर फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच मर्दों के सिंगल्स में जबकि नाओमी ओसाका खवातीन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। रवानगी पर अपने बयान में वज़ीर आज़म ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उनके दौरे से मशरकी मुल्कों से राबता बढ़ाने की भारत की पॉलिसी, महासागर नजरिए, नीज आजाद और खुले भारत बहरुल काहिल खत्ते के तई मुल्क के नुक्ता नजर को मजीद तकवीत मिलेगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया के उनके दौरे से जामे क़लीदी साझेदारी मुस्तहकम होगी, जिसे 2018 में उनके दौरे के दौरान नई बुलंदी पर पहुंचाया गया था। इंडोनेशिया के बाद जनाब मोदी मेलबर्न जाएंगे। वो ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी एल्बनीज़ की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि उनके इस दौरे से दिफा, सिक्योरिटी, तिजारत और सरमायाकारी पर तबादले ख्याल के जरिए भारत ऑस्ट्रेलिया जामे क़लीदी साझेदारी मुस्तहकम हो सकेगी। वज़ीर आज़म वहां भारतीय बिरादरी के लोगों से भी मिलेंगे। वज़ीर आज़म मोदी अपने दौरे के आखिरी मरहले में ऑकलैंड जाएंगे। वो न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म क्रिस्टोफर लक्सन की दावत पर यह दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले साल मार्च में न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म के भारत के दौरे के बाद बाहरी ताल्लुकात में जो तेजी आई थी, उनके इस दौरे में इक्तिसादी, तिजारती और कारोबारी राबतों पर तवज्जो मरकूज करते हुए भारत से बाहरी ताल्लुकात को मजीद तकवीत मिलेगी। अमित शाह ने गुज़श्ता 5 साल के दौरान इमदाद बाहमी के जरिए खुशहाली के मंत्र पर अमल करते हुए करोड़ों लोगों की जिंदगी में तब्दीली लाने पर इमदाद बाहमी वजारत की सताइश की है। इमदाद बाहमी वजारत के 5वें यौम तासीस के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि इमदाद बाहमी शोबे और मुल्क भर में 8.5 लाख से ज्यादा इमदादी बाहमी इदारों से वाबस्ता 3 करोड़ अफराद के लिए आज बहुत शुभ दिन है। उन्होंने कहा कि इस दिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सरकार में इमदाद बाहमी की एक अलग वजारत कायम करने का फैसला किया था।
1: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक इन 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: जनाब अमित शाह ने मजीद कहा कि पिछले 5 साल में इमदाद बाहमी निजाम को जदीद तर्ज पर ढालने, शफाफ बनाने और तकनीक पर मबनी मुसाबिकत की निजाम बनाने की समत काबिल तारीफ काम हुआ है। जनाब अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके 125वें यौम पैदाइश पर याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारतीयता का जज्बा पैदा करने, भारत माता की ताजीम और मेरे जैसे करोड़ों पार्टी कारकुनों में भारतीय सकाफत की अहमियत के तई वक्फ कर दी थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक अजीम रहनुमा थे, जिन्होंने ये ऐलान किया था कि एक मुल्क में 2 आईन, 2 वज़ीर-ए-आज़म और 2 परचम नहीं हो सकते। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी साबिक मरकजी वजीर मुमताज

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा लोग घायल। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और विम्बल्डन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रणबन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वीं स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई हैं।
2: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक इन 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय किया गया है।
2: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, इस सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, इस सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। दो

0: की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
1: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में एनटीए ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जांच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उसी दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
2: दुनिया भर में मशहूर पुरी की रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
3: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाएंगे और आने वाले समय में केरलम में ओणम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क, रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है।

0: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसडीआरएफ में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावरे ने बताया कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
1: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किया है।
0: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है, जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोडोल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफ्योलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके

लिजांड्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करेना मुखोवा ने अपने करियर में तीसरी बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने अरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। 2:30 हुए हैं और वक्त हुआ है आप सभी के पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार का। एक ही कलाकार कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी सुनने वालों का स्वागत। खैर मकदम करती हूं मैं आप सभी की होस्ट और दोस्त प्रीति त्यागी। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों आज का जो दिन है वो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक है, बहुत से रंगों से भरपूर है और बहुत ही धमाकेदार है। पता है क्यों? क्योंकि आज जन्मदिन है बॉलीवुड के उस सुपरस्टार का जिसने बिट्टू शर्मा बनकर सबका दिल जीता, वहीं बाजीराव बनकर एक हिस्ट्री बना डाली और अलाउद्दीन खिलजी बनकर स्क्रीन पर आग लगा दी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सबसे ज्यादा एनर्जेटिक और वर्सटाइल एक्टर रणवीर सिंह की। उनके लिए ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने धुरंधर बनकर बहुत बड़े बड़े धुरंधरों की छुट्टी कर दी। जी हाँ दोस्तों, तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे कलाकार हैं रणवीर सिंह। आज उनका जन्मदिन है तो आज का ये पूरा कार्यक्रम उन्हीं को समर्पित। तो लीजिए करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत उन्हीं की फिल्म से, इस खूबसूरत से गीत के साथ।

रही हूँ कि रासलीला रामलीला जिसमें वो एकदम देसी रोमांस करते हुए नजर आए। वहीं बाजीराव मस्तानी में मराठा योद्धा का किरदार उन्होंने निभाया और काफी ज्यादा दमदार आवाज और मजबूत पर्सनालिटी के साथ उन्होंने उस किरदार को निभाया। या फिर हम बात करें पद्मावत की, जिसमें उन्होंने खूंखार और सन की अलाउद्दीन खिलजी का किरदार निभाया। या फिर धुरंधर फिल्म, जिसमें उन्होंने क्या ही खूबसूरत किरदार निभाया है एक स्पाई का, और वाकई में किरदार में उन्होंने पूरी तरह से जान डाल दी। बस खिलजी के किरदार के लिए भी कहा जाता है कि रणवीर ने खुद को हफ्तों तक एक कमरे में बंद रखा था और यही वजह थी कि जब वो स्क्रीन पर आए तो लोग उनसे

पूरी तरह कॉपी उन्होंने की, और ये शायद रणवीर सिंह की वर्सेटलिटी है कि वो सबसे बड़ी मिसाल बन गए कि हर तरह के किरदार में वो इस तरह से ढल जाते हैं, इस तरह से उस किरदार में समा जाते हैं जैसे कि वो किरदार उन्होंने खुद जिया हो, और स्टाइल ऐसा कि जो कोई और कॉपी ही ना कर सके। रणवीर सिंह अपनी फिल्मों के लिए नहीं बल्कि अपने अतरंगी बिंदास और बोल्ड फैशन सेंस के लिए भी जाने जाते हैं। जो भी पहनते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पहनते हैं, चाहे कुछ भी पहने। लोग बोलते हैं कि भाई वो बड़े ही अतरंगी सतरंगी बहुत सारे अलग अलग कलर के या कुछ भी डालते हैं, लेकिन जो भी वो डालते हैं वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पहनते हैं, और उनको जो भी वो पहनना होता है वो सब पहनते हैं, वो जो करना होता है वो करते हैं। लोग चाहे जो भी कहें, जिसको जो कहना है वो कहे, रणबीर हमेशा वही करते हैं जो उनके दिल में आता है।

हुए हैं। अगला संदेश हम तक पहुंचाई रमणी वर्मा जी ने दतरंगे भटापारा से, और ग्राम लोहागढ़ ठाकुरावाला से एक बार फिर से हमारे पास ये संदेश आया है। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हिमलता, हिना, हर्षित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत जी हमारे साथ जुड़े हैं भारत कमल सहानी पिंगावाला चौक गुरैया जालंधर से। अगला संदेश हम तक पहुंचाया है, उसको पहुंचाने वाले हैं बागपत उत्तर प्रदेश से संजय डिंगिया, नमन डिंगिया, अपार डिंगिया के साथ। ये जो अगला संदेश है इसको पहुंचाने वाले हैं गांव घिटोरनी नई दिल्ली से साबिर हुसैन मिरासी, अमीना बेगम, तबस्सुम, तरन्नुम, तराना, हिना और सीमा के साथ। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी पॉल डिविलियर्स डिकैस्ट्रो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोस्तों ये थे वो संदेश जिनके जरिए सभी हम तक जुड़े, और कुछ संदेश और हैं चिरमिरी कोरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ राम, सौदा, नारायण प्रसाद, दिनेश प्रसाद, कालिंद्री लहरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सुरेश राठौड़ गांधीनगर गुजरात से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अगला जो संदेश है उसके साथ जुड़े हुए हैं मॉडल टाउन करनाल से सुधीर, नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, किरण ठाकुर जी के साथ में, और ये जो अगला संदेश है दुर्गाराम साहू, अजय कुमार साहू, जयकिशन साहू, श्रीमती कुमारी साहू, श्रीमती इंद्राणी माया साहू के साथ, चर डोंगरी पिपरिया जिला कबीरधाम छत्तीसगढ़ से ये हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तुलसी मस्किन जी का हमारे साथ हमारे पास संदेश है, बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं तुलसी मस्किन जी। तो दोस्तों कार्यक्रम एक ही कलाकार में हमारे ये श्रोता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और आज हमने बात की कलाकार रणबीर सिंह के बारे में, और आज हमने देखा कि ये जो उनका शानदार सफर रहा है उसमें चाहे उन्होंने कितनी भी मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उन्होंने साबित किया कि अगर आपके भीतर अपने सपनों को लेकर वो जुनून है, वो आग है, तो एक दिन पूरी कायनात को उसके आगे झुकना ही पड़ता है, और वही इनके साथ हुआ। बिना किसी गॉडफादर के सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर करोड़ों दिलों की धड़कन बन जाना, यही तो रणबीर की असली कहानी है। तो दोस्तों हम यही कहेंगे कि अब वक्त चला है आपसे विदा लेने का, सुनते रहिए इस कार्यक्रम को, अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन को, मुस्कुराते रहिए, अपनों का ख्याल रखिए, याद रहिए किस्मत बदलने ना बदले लेकिन मेहनत जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप मेहनत करते हैं तो आपका टाइम जरूर आएगा। इसी के साथ अब मुझे यानी प्रीति को दीजिए अनुमति, छोड़े जाती हूँ खूबसूरत सा गीत दिल धड़कने दो फिल्म से, दीजिए अनुमति, नमस्कार।

नजर डालेंगे आज की मजलिस के प्रोग्रामों पर। अब से चंद ही लम्हों के बाद यानी 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी। 3:15 पर आप सुनेंगे प्रोग्राम मेरी पसंद और 3:30 पर कहकशां प्रोग्राम के तहत आज आप सुन सकेंगे गदर फिल्म की कहानी और नगमे। 4 बजे से आप फिल्मी मौसीकी का लुत्फ उठा सकेंगे। ये प्रोग्राम शाम 4:50 तक सुना जा सकेगा। शाम के 4:50 पर खबरें नशर होंगी और शाम 5 बजे आज की दूसरी मजलिस खत्म हो जाएगी। ये थी एक नजर आज की मजलिस में नशर होने वाले प्रोग्रामों पर।

मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्रीडिश पर आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात जारी हैं। अब खबरें नशर की जाएंगी।

ज्यादा हेल्थ रिकॉर्ड्स को आभा अकाउंट्स के साथ मुंसलिक किया गया है। रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में यूक्रेन के शहर कीफ में कम से कम 10 अफराद हलाक और 46 से ज्यादा जख्मी हो गए। इंग्लैंड मैक्सिको को 2 के मुकाबले 3 गोल से शिकस्त देकर फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच मर्दों के सिंगल्स में जबकि नाओमी ओसाका खवातीन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। रवानगी पर अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उनके दौरे से मशरिकी मुल्कों से राब्ता बढ़ाने की भारत की पॉलिसी महासागर नजरिए नीज आजाद और खुले भारत बहरुल्काहिल खत्ते के तई मुल्क के नुक्ते नजर को मजीद तकवीत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया के उनके दौरे से जामे किलीदी साझेदारी मजीद मुस्तहकम होगी जिसे 2018 में उनके दौरे के दौरान नई बुलंदी पर पहुंचाया गया था। इंडोनेशिया के बाद जनाब मोदी मेलबर्न जाएंगे। वह ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म एंथनी एल्बनीज़ की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि उनके इस दौरे से दिफा, सिक्योरिटी, तिजारत और सरमायाकारी पर तबादला ख्याल के जरिए भारत ऑस्ट्रेलिया जामे किलीदी साझेदारी मुस्तहकम हो सकेगी। वज़ीर-ए-आज़म वहां भारतीय बिरादरी के लोगों से भी मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी अपने दौरे के आखिरी मरहले में ऑकलैंड जाएंगे। वो न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म क्रिस्टोफर लक्सन की दावत पर यह दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले साल मार्च में न्यूजीलैंड के वज़ीर-ए-आज़म के भारत के दौरे के बाद बाहमी ताल्लुकात में जो तेजी आई थी उनके इस दौरे में इक्तिसादी, तिजारती और कारोबारी राब्तों पर तवज्जो मरकूज करते हुए बातचीत से बाहमी ताल्लुकात को मजीद तकवीत मिलेगी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने गुज़श्ता 5 साल के दौरान इमदाद बाहमी के जरिए खुशहाली के मंत्र पर अमल करते हुए करोड़ों लोगों की जिंदगी में तब्दीली लाने पर इमदाद बाहमी वजारत की सताइश की है। इमदाद बाहमी वजारत के 5वें यौम तासीस के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि इमदाद बाहमी शोबे और मुल्क भर में 8.5 लाख से ज्यादा इमदादी बाहमी इदारों से वाबस्ता 30 करोड़ अफराद के लिए आज बहुत शुभ दिन है। उन्होंने कहा कि इस दिन वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सरकार में इमदाद बाहमी की एक अलग वजारत कायम करने का फैसला किया था। जनाब अमित शाह ने मजीद कहा कि पिछले 5 साल में इमदाद बाहमी निजाम को जदीद तर्ज पर ढालने, शफाफ बनाने और तकनीक पर मबनी मुसाबकती निजाम बनाने की समत काबिल तारीफ काम हुआ है। मोहम्मद मौसूफ ने कहा कि इस साल सरकार ने इमदाद बाहमी इदारों के लिए दर्जाबंदी से मुतालिक एक फ्रेमवर्क का आगाज किया है। जनाब अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके 125वें यौम पैदाइश पर याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारतीयता का जज्बा पैदा करने, भारत माता की ताजीम और मेरे जैसे करोड़ों पार्टी कारकुनों में भारतीय सकाफत की अहमियत के तई वफ कर दी थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक अजीम रहनुमा थे जिन्होंने ऐलान किया था कि एक मुल्क में 2 आईन, 2 वज़ीर-ए-आज़म और 2 परचम नहीं हो सकते। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी साबिक मरकजी वजीर मुमताज माहिर तालीम, बसीरत अफरोज मुफक्किर और कद्दावर कौमी रहनुमा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके 125वें यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब बिरला ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की जिंदगी मुल्क की खिदमत और कौमी इत्तेहाद के लिए खुद को वक्फ करने की एक बाइसे तहरीक मिसाल है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को खराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी एक नजरिया साज मुदब्बिर, सरकर्दा स्कॉलर और मुल्क के एक पराज मेमार थे जिन्होंने मुल्क के इत्तेहाद, जमहूरी इदारों को मुस्तहकम करने और कौमी यकजहती के तहफ्फुज़ के

0: तैयारी कर रहा है। पुणे में आलमी सतह पर मकबूल रथ यात्रा के लिए वसी पैमाने पर तैयारियों का सिलसिला जारी है। ऐसे में ओडिशा हुकूमत अपनी इंतजामी तैयारी के आखिरी मरहले में है। वजीर आला मोहन चरण मांझी ने आज रथ यात्रा तालमेल कमेटी के साथ हतमी मीटिंग की सदारत की और सालाना यात्रा के लिए पुख्ता इंतजाम को यकीनी बनाने की खातिर सभी महकमों को हिदायत जारी की। भारतीय मौसमियात महकमे आईएमडी ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात की एजेंसी ने कहा है कि जुनूब मगरबी मानसून के आइंदा तीन रोज के दौरान शिमाली भूरा अरब, गुजरात, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों, राजस्थान के कुछ और हिस्सों की जानिब आगे बढ़ने के लिए मौसम साजगार है। भारत स्विट्जरलैंड के जनेवा में सारिफिन के तहफुजाती कानून और पॉलिसी पर माहिरीन के बैन हुकूमती ग्रुप के नए इजलास की सदारत करेगा। हमारे नमानिगार ने खबर दी है कि अक्वाम मुत्तहदा के तजारत और तरक्की से मुतालिक इदारे की जानिब से यह इजलास तीन रोज तक जारी रहेगा। इंग्लैंड मैक्सिको को 2-3 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। अब तक खेले गए 89 मैचों में से सिर्फ 2 मैचों में मैक्सिको को स्टेडियम में शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन इंग्लैंड ने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपना दबदबा बरकरार रखा। विंबलडन टेनिस में कल रात सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच रूस के खिलाड़ी को हराकर मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। एक दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नाओमी ओसाका आलमी नंबर 1 अरियाना सबलिंका को 6-2, 7-6, 7-6 से हराकर पहली मर्तबा क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इससे आजाद और खुले भारत बहरकाहिल खत्ते के तय नुक्ते नजर के साथ साथ मशरक़ी मुल्कों से राबते बढ़ाने की भारत की पॉलिसी को तकवीत मिलेगी। सरकार ने कहा है कि डिजिटल हेल्थ खदमात को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से ज्यादा हेल्थ रिकॉर्ड को आभा अकाउंट्स के साथ मुंसलिक किया गया है। रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में यूक्रेन के शहर कीव में कम से कम 10 अफराद हलाक और 46 से ज्यादा जख्मी हो गए हैं और इंग्लैंड मैक्सिको को 2-3 से शिकस्त देकर फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव्स 1071 किलोहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। पेश खिदमत है प्रोग्राम मेरी पसंद।

गदर के प्रोड्यूसर हैं नितिन केनी, डायरेक्टर अनिल शर्मा, गीत आनंद बख्शी, म्यूजिक है उत्तम सिंह का, हीरो सनी देओल, हीरोइन अनिशा पटेल। ये कहानी है हिंदुस्तान की तारीख में यादगार बन चुके दिन 2 जून 1947 की, जब वायसराय हाउस में हिंदुस्तान के दो हिस्सों में तकसीम किए जाने का ऐलान किया गया था। इसके एक हिस्से को हिंदुस्तान नाम दिया गया और दूसरे हिस्से को पाकिस्तान। इस बंटवारे ने पूरे मुल्क में गदर मचा दिया था। खौफ और दहशतगर्दी के उस माहौल में लाखों हिंदुओं और मुसलमानों को अपना घर बार और कारोबार छोड़कर हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाना पड़ा। ऐसे ही खौफनाक माहौल में मजबूर होकर हिंदुस्तान में रह रहे अशरफ अली खान को भी मुल्क छोड़ना पड़ता है। जब दहशतगर्द उनकी हवेली को आग लगा देते हैं, तो अशरफ अली खान अपनी बीवी और बेटी सकीना यानी अमीशा पटेल को लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। बदहवास अशरफ जैसे तैसे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लाहौर जाने वाली ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंचते हैं। अफरा तफरी के माहौल में अशरफ अली और उनकी बीवी तो ट्रेन में चढ़ जाते हैं, मगर भीड़ की वजह से सकीना स्टेशन पर ही रह जाती है। सकीना घबरा कर जब ट्रेन की तरफ भागती है तो वो जख्मी होकर बेहोश हो जाती है। होश आने पर जब वो नल के नीचे बैठकर नहाने लगती है तो कुछ मनचले शोहदे जवान खूबसूरत सकीना को देखकर उसे छेड़ने की कोशिश करते हैं। सकीना घबरा कर वहां से भागने लगती है। तभी एक ट्रक ड्राइवर तारा सिंह यानी सनी देओल सकीना को उन दरिंदों से बचाता है। इस गदर में इस ट्रक ड्राइवर के खानदान के लोग भी मारे गए थे। तारा सिंह सकीना के कॉलेज की कैंटीन के लिए सामान लाने का काम करता था। सकीना को उन दरिंदों से बचाते वक्त तारा सिंह की नजर एकाएक सकीना के हाथ में पकड़े हुए कांच के गिलास में बंद ताजमहल पर पड़ती है, तो तारा उसे देखते ही गदर से पहले की माजी की यादों में खो जाता है। ये वही तोहफा था जो तारा सिंह ने सकीना को कभी कॉलेज में दिया था। माजी की यादों में खोते हुए तारा सिंह को वो मंजर याद आता है जब सकीना के कॉलेज का सालाना जलसा था। गाने का बेहद शौकीन तारा सिंह भी इस फंक्शन में गाना चाहता था, मगर लड़कियां मजाक में तारा सिंह से कहती हैं कि इसके लिए तो उसे उनके म्यूजिक टीचर से पूछना पड़ेगा। वो तारा से कहती हैं कि उनके म्यूजिक टीचर थोड़ा ऊंचा सुनती हैं, इसलिए वो जरा जोर से बोले। लड़कियां सकीना यानी अमीशा पटेल को ही चश्मा वगैरह लगाकर बतौर म्यूजिक टीचर तारा से बात करने को कहती है, तो सकीना तारा से मजाहिया अंदाज में बात करती है और उसे गाना सुनाने को कहती है।

हसन का गाना सुनकर सकीना बहुत खुश होती है और उसे अपनी हरकत के लिए माफी मांगती है। वो कॉलेज फंक्शन में प्रिंसिपल की इजाजत लिए बिना ही तारा सिंह को स्टेज पर गाने के लिए बुला लेती है और तारा सिंह भी गाता है।

तारा सिंह का गाना सुनकर कॉलेज के स्टूडेंट्स खुश हो जाते हैं। तारा सकीना का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसे स्टेज पर गाने का मौका दिया। इसी बात से खुश होकर तारा सिंह अगले दिन सकीना को कांच के गिलास में बंद ताजमहल का एक खूबसूरत तोहफा देता है और वही तोहफा अब इस कदर के हालात की मारी सकीना के हाथ में था। तारा माजी की यादों से बाहर आता है और डरी सहमी सी सकीना को नजर भर कर देखता है।

शादी के बाद सकीना एक बच्चे की माँ बनती है। दोनों अपने बेटे का नाम चरणजीत रखते हैं। सकीना तारा सिंह और अपने बेटे के साथ बहुत खुश थी। तभी एक वाकया घटता है। सकीना एक दिन अखबार में अपने अब्बू का फोटो देखती है, जो अब पाकिस्तान के मेयर बन चुके हैं।

सकीना तारा सिंह के बिना बहुत बेचैन है। उसकी जुदाई में वो बहुत तड़पती है, इसीलिए वो अब वहाँ से जाना चाहती है।

तारा सिंह का वीजा रुकवा देते हैं। मगर तारा सिंह कहता है कि कोई भी ताकत उसे सकीना के पास जाने से नहीं रोक सकती। इधर तारा और उधर सकीना दोनों परेशान हैं।

सकीना के अब्बू जब उसकी शादी जबरदस्ती सलीम से करने की कोशिश करते हैं तो सकीना काजी के सामने निकाह से इनकार कर देती है। उधर तारा सिंह अपने दोस्त गुल्लू की मदद से जैसे तैसे करके पाकिस्तान पहुंचता है। लाहौर जाकर जब वो सकीना से मिलता है तो सरफराज उससे सकीना को छोड़ देने को कहता है, मगर तारा सिंह के इनकार करने पर सरफराज के आदमी तारा सिंह पर हमला कर देते हैं। अशरफ अली खान भी तारा सिंह को जान से मारने की धमकी देते हैं, मगर तारा सिंह कहता है कि वो गदर का एक वक्ती जुनून था, मैं उस नफरत को भुला चुका हूँ, आप भी भुला दीजिए। अशरफ अली तारा सिंह को बिना वीजा के पाकिस्तान आने के इल्जाम में जेल में सड़ाने की धमकी देते हैं, मगर कहते हैं कि अपनी बेटी की खुशी की खातिर वो ऐसा नहीं करेंगे। वो तारा सिंह से इस्लाम कबूल करने और पाकिस्तान में ही रहने की शर्त रखते हैं और उसे इस बारे में सोचने के लिए एक रात का वक्त देते हैं। सकीना से बेपनाह मोहब्बत करने वाला तारा सिंह उनकी सभी शर्तें मान लेता है, मगर जब उसे हिंदुस्तान मुर्दाबाद बोलने को कहा जाता है तो वो मना कर देता है। ये सुनकर अशरफ अली खान के आदमी उस पर फिर से हमला करते हैं, मगर मौका देखकर तारा सिंह सकीना और बेटे चरणजीत को लेकर वहां से भाग जाता है। अशरफ अली खान के आदमी तारा सिंह और सकीना को ढूंढते हुए उनका पीछा करते हैं। अशरफ अली खान अपने मातहतों को हुक्म देते हैं कि हिंदुस्तान जाने के सारे रास्ते बंद करवा दिए जाएं ताकि तारा सिंह सकीना और बच्चे को लेकर न जाने पाए। उधर सलीम और उसके साथी भी तारा सिंह को ढूंढ रहे थे। आखिर में जिस ट्रेन में तारा सिंह और सकीना जा रहे हैं उसी में आग लगा दी जाती है। सलीम कहता है कि सकीना अगर मेरी नहीं हो सकती तो किसी की भी नहीं हो सकती। अशरफ अली खान तारा को मारने के लिए हेलीकॉप्टर से गोली चलाता है तो वो गोली सकीना को लग जाती है। ये देखकर तारा सिंह आग बबूला होकर अशरफ अली खान को बहुत मारता है। सकीना गोली लगने से बेहोश हो जाती है तो तारा सिंह उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। बेटी को जख्मी देखकर अशरफ अली खान को अपने के का बहुत पछतावा होता है। वो सकीना के होश में आने पर उससे माफी मांगता है और

लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाजों में ये नगमा था आईना फिल्म से। फिल्मी नगमों के प्रोग्राम की अगली पेशकश अमित कुमार, अलका याग्निक और मनहर को सुनिए, फिल्म है खून का कर्ज़।

लता मंगेशकर की आवाज में ये नगमा अभी आपने सुना। फिल्म का नाम था एक दूजे के लिए। फिल्मी नगमों के प्रोग्राम की अगली पेशकश आपके नजर कर रहे हैं अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण को। सुनिए फिल्म है बेटा।

अनुराधा पौडवाल और मंगल सिंह की आवाजों में ये नगमा अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी बहार आने तक। प्रोग्राम की अगली पेशकश आपकी नजर है अलीशा फिनॉय की आवाज में, फिल्म का नाम है विजय पथ।

0: मनहर उदास कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजों में यह नगमा सादा अगर फिल्म से था। इसके साथ ही आज का फिल्मी नगमों का ये प्रोग्राम अब खत्म हुआ। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: आकाशवाणी है, अब आप मोहम्मद आजम खान से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे के पहले मरहले में जकार्ता पहुंच गए हैं। वजीर आजम ने कहा कि उनके इस दौरे से आजाद और खुले भारत बहरकल खित्ते के तय नुक्ते नजर के साथ साथ मशरकी मुल्कों से रबते बढ़ाने की भारत की पॉलिसी को तकवीत मिलेगी। ईरान के शहर तेहरान में साबिक रहबर आला आयतुल्ला अली खामनाई के जनाजे में कसीर तादाद में लोग शामिल हो रहे हैं। रूस के बैलिस्टिक मिजाइल हमले में यूक्रेन के शहर कीफ में कम अज कम 10 अफराद हलाक और 46 से ज्यादा जख्मी हो गए। इंग्लैंड मैक्सिको को 2 के मुकाबले 3 गोल से शिकस्त देकर फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच मर्दों के सिंगल्स में जबकि नौमी ओसाका खवातीन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे के पहले मरहले में जकार्ता पहुंच गए हैं। वहां पहुंचने पर इंडोनेशिया के सदर प्रभाव सुबरताना ने जनाब मोदी का गर्मजोशी के साथ इस्तकबाल किया। इससे कबल रवाना होने से पहले अपने बयान में वजीर आजम ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के उनके दौरे से मशरकी मुल्कों से रबता बढ़ाने की भारत की पॉलिसी महासागर नजरिए नीज आजाद और खुले भारत बहरकर खित्ते के तय मुल्क के नुकता नजर को मजीद तकलीफ मिलेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया के उनके दौरे से जामे कलीली साझेदारी मजीद मुस्तहकम होगी, जिसे सन 2018 में उनके दौरे के दौरान नई बुलंदी पर पहुंचाया गया था। इंडोनेशिया के बाद जनाब मोदी मेलबर्न जाएंगे। वो ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी एल्बनीज की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि उनके इस दौरे से दिफा, सिक्योरिटी, तजारत और सरमाकारी पर तबादला ख्याल के जरिए भारत ऑस्ट्रेलिया जामे कलीली साझेदारी मुस्तकम हो सकेगी। वजीर आजम वहां भारतीय बिरादरी के लोगों से भी मिलेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपने दौरे के आखिरी मरहले में ऑकलैंड जाएंगे और न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन की दावत पर यह दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले साल मार्च

जोड़े और इन्हें जरा है चंद्रधर शर्मा जी दा जीवन परिचय जीवन में देखता उन्होंने पिताजी ना श्री शिवराम शास्त्री आई वो गुलेर दे रावण आले हैं ना गुलेर जरा कांगड़ा घाटी दे विच है और प्रकांड पंडित हैं और प्रकांड पंडित होने करके उनको राज सम्मान मिल आई। वैसे मैं दसना चाहता कि जरा कांगड़ा घाटी दे विच मेरा वन्ना थे उत्था कई नाल गल थी मेरी तो वो इस दिन भी अमृतसर दे विच जरा गोल्डन टेम्पल है स्वर्ण मंदिर है उत्था भी जेड़े पहले किसी जमाने च पुजारी हन वो कांगड़ा वैली तो हन कांगड़ा घाटी तो हन पर जिथे तक चंद्रधर शर्मा जी का जन्म है वह जयपुर का है क्योंकि उन्होंने पिता जी बहुत वड्डे राज पंडित हन और जयपुर घराने ने उन्होंने सद्या है उन्होंने माता का नाम लक्ष्मी देवी आई वैसे वो तीजी शादी आई उन्होंने पिता जी की वाली जरा एक दसना जरूरी है जयपुर दे विच उन्हां दा जन्म थिया और उन्होंने पिता जी का आधार जरा बड़ा संस्कृत का आधार आई और संस्कृत दे प्रकार विद्वान नहीं वास्ते उन्होंने जरा संस्कृत भाषा ते पकड़ बचपन तो अपना भी आई। सब तो वड्डी गल है कि 10 साल दे विच उन्होंने एक विषय दे उत्ते भाषण दिता संस्कृत दे विच जरा उन्होंने भाषण दिता है जेडे उत्थे बैठे उन्होंने सारे ने आख्या भी यह आने वाले टाइम बहुत वड्डा विद्वान बन सी उन्होंने घर का आई और घर के संस्कार घर के संस्कार तो इलावा इवें एक भी हिंदू वास्ते वेदा को पुराणा को रामायण को महाभारत को उन्होंने सारी चीजा को पढ़ाई और इन्हों को विरासत च मिली आई। वैसे जरा उन्होंने डावी जेड़ी है वो प्रयाग विश्वविद्यालय इलाहाबाद तू की एफ ए जिकू इंटरव्यू आ दिन वो कलकत्ता विश्वविद्यालय तू की उन्होंने वल बी एड डिग्री भी जेड़ी है वो उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय इलाहाबाद तू की हालांकि वो अपने आप को पिछू जरा बी ए ही लिखते हैं जिथे तक उन्होंने व्यवसाय का व्यवसाय सब तू पहले 20 साल की उम्र को जेड़ी जयपुर दे विच एक वेदशाला है वेदशाला मतलब जेड़ी ऑब्जरवेटरी यानी जेड़े ग्रहवां को उपग्रहवां को इन्हां सारे को देख दिए ब्रह्मांड को देख दिए हूं मंडल दे विच उन्हां दी जेड़ी कमेटी आई हूं कमेटी दे विच ओह हन उन्होंने हूं वेले हुंदे बारे च जेड़ी ऑब्जरवेटरी आई तारा मंडल भी आदमी को हुंदे उत्ते किनाना योगदान रहे ए उन्होंने अंग्रेजी च लिखी आई मैं दस्से तो आपको कि जेड़े हन मूलता जेड़ा उन्होंने परिवार आई ओ हिमाचल तो आई वालो जयपुर चले गए जयपुर तो जेड़ी डावी की उन्होंने इलाहाबाद तू की और जेड़ी एफ ए की कलकत्ता तू की ए सारी चीजा देखते हो उन्होंने जेड़ा एक पूरे देश दे विच अभिव्यक्ति या बहुआयामी बन गए उन्होंने जेड़ी बंगला भी आंदी आई अवधि भी आंदी आई ब्रिज भी आंदी आई संस्कृत प्रकांड मैं दस तक विद्वान हन हिंदी तो इलावा अंग्रेजी भी आंदी आई लैटिन भाषा भी आंदी आई फ्रेंच भी आंदी आई पर्शियन भी समझते हैं। मेरा आखने का मतलब है जे बंदे को इतनी सारी लैंग्वेज दे उत्ते इतनी सारी भाषा ते पकड़ हुई तो विद्वान तो नहीं थी बंदे क्योंकि हर जगह दे जेड़े जेड़े महापुरुष थे उन्होंने बारे च पढ़ते इवें जरा उन्होंने जीवन अगू चलिया। वैसे अजमेर दे मेयो कॉलेज विच पहले उन्होंने अध्यापन का कार्य शुरू किया पर हूं उत्था छात्रावास दे जरा होस्ट आए हुंदा भी देखदे हन काम और एक काम जरा राज दरबार तू खेतड़ी दे राजा जय सिंह दे ओ पालक हन अभिभावक दे रूप च हन एक तरह का उत्था ऐसा ऐसा उन्होंने मशहूरी थी गई और हमले भी लिखण का कार्य करते हैं रचना उन्होंने काफी जगह प्रकाशित थी कई चीजों का संपादन भी करेंगे पंडित मदन मोहन मालवीय को जिवें पता लग गया उन्होंने विशेषतावां दा उन्होंने उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी दे विच सर्विदा उत्थे प्रोफेसर बने और उत्थे भी उन्होंने काशी नगरी प्रचारणी जिहड़ी पत्रिका है ओ हुंदा संपादन किया हुंदे चेयरमैन भी बने पर ए सारी चीजा होंदे हुए उन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे कविता लिखिया पर उन्होंने जिहड़ी प्रसिद्धि थी ओ कहानियां करके थी एक कहानी जिहड़ी बड़ी मशहूर थी उन्होंने जिड़ी के उन्होंने 1915 विच लिखा है उसने कहा था हालांकि उन्होंने तो पहले उन्होंने वास्तव में त्रै कहानियां ने उन्होंने तो पहले सुखमय जीवन और एक बुद्धू का कांटा जे मैं इन्ह त्रियों कहानियां को देखता इन्ह त्रियों कहानियां दे विच प्रेम प्रसंग जरूर है खासियत यही और ए जड़ी उसने कहा था हिंदुत्व दे फिल्म भी बनी है बिमल राय ने फिल्म बनाई है सुनील दत्त हुंदे विच हीरो हन नंदा आई ते फिल्म ही नहीं।

इम्तियाज अली तरियाज अली ने गाए इस सूफियाना कलाम तो बाद हुन चस घिनो लाज सचदेवा दी आवाज विच बुल्ले शादी काफी दी नी मैनू इश्क हुलारे देंदा है।

बोले शादी काफी गावन आली हिन लाज सच देवा प्रोग्राम दा आखिरी सूफियाना कलाम है नीना कमली यार दी कमली कलाकार हिन गुरदास मान।

ਰਾਂਝਾ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਂਝੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਨਾ ਕੋ

संगीत तुसा गुरदास मान दी आवाज विच सुनदे पए हवे। सियाकी प्रोग्राम इथा ही खत्म थींदा है। अगला प्रोग्राम घिन के वल मिलसा। हुन हरजीत कौर को इजाजत देवो।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी होना दा आज जन्म दिवस है ते आज दे दिन असी उना नू याद कर रहे हैं ते सिक्ख्या नू लै के दितियां जान वालियां ते समझाउण वालियां उना दी गल्लां नू वी याद करदे हां कि उना ने अपनी जिंदगी दे विच एक गल जरूर मन्नी है कि जेकर सिक्ख्या तुहाडे कोल है ते तुसी फिर जिंदगी दे विच कोई भी मुकाम हासिल कर सकदे हो। विद्या तो बगैर कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। घर दे विच विद्या दा माहौल होण कारण उना ने अपनी जिंदगी दे विच विद्या नू सर्व उच्च रखिया ते सच जाणियो इस विद्या ने उना नू बहुत उचाइयां ते पहुंचाया भी है। एक देश दे राष्ट्र

शिव कुमार बटालवी जन्म 23 जुलाई 1936 नूं शक्करगढ़ दे विच होया। अज ए जगह पाकिस्तान दे विच है। देश दी वंड तों बाद उनां दा परिवार पंजाब बटाला शहर दे विच आ वसिया। इत्थों ही उनां दा नाम बटालवी जुड़ गया। बचपन तों ही बड़े ही संवेदनशील सुभा दे सन। उनां दा मन कुदरत संगीत कविता दे विच रमदा सी। उनां ने कॉलेज दी पढ़ाई कीती पर उनां दा असली रुझान साहित्य वल सी। बहुत छोटी उम्र दे विच ही उनां ने कवितावां लिखणियां शुरू कर दित्तियां। शिव कुमार बटालवी दी कविता दी सब तों वड्डी खासियत इह सी कि उह सिद्धी दिल नाल गल करदे सन। उनां दी रचनावां विच प्यार है, विछोड़ा है, दर्द है, उम्मीद है, मनुखी जिंदगी दीआं डूंघीआं भावनावां ने। उनां दीआं कवितावां पढ़दिआं जां सुणदिआं लगदा है कि जिवें उह साडे अपने दिल दी गल कर रहे होण।

0: ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 65% ਜਿਹੜੀ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੀਥੇਨ ਗੈਸ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨਸ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਸੀ।
1: ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਲਪਿੰਦਰ ਜੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਫਲੱਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਪ੍ਰਿੰਕਲਿੰਗ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਡੇਪਰ ਆ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਛ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੀ, ਹਾਈਡ੍ਰੋਪੋਨਿਕ ਖੇਤੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਲਟਰਨੇਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ?
0: ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਪਕਾ ਤੁਪਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡ੍ਰਿਪ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲਡ ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਟਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 90% ਤੱਕ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ 90% ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੈ ਉਹ ਖੇਤੀ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਫੈਕਟਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਪਲਾਈ ਸਾਈਡ, ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਈਡ। ਹੁਣ ਸਪਲਾਈ ਸਾਈਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਦੂਜਾ ਆ ਗਿਆ ਡਿਮਾਂਡ ਸਾਈਡ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਨ ਟਿਊਨ ਕਰ ਲਈਏ। ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸੈਂਸਰ ਬੇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆ ਗਈ ਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਡ੍ਰਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 80,000 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਨੇ ਐਪ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕੰਟਰੋਲਡ ਸਿੰਚਾਈ। ਜੇ ਇਸੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫਲੱਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਲੱਖ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ ਇਹ ਰਿਫਾਈਨ ਟੈਕਨੀਕਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲਿੰਗ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ 2005-06 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲਰ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਹਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਔਰ 10-20% ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ। ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਰੋਹਿਤ ਰਾਮ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਲੇਜ਼ਰ ਲੈਵਲਰ ਵੀ ਲੈ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਵੀ ਲਏ, ਅਸੀਂ MB ਪਲਾਓ ਵੀ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਡਰੋਨ ਵੀ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਸਪਰੇਅਰ ਵੀ ਲਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਜੀ ਰੁਲਿਆ ਰਾਮ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੀ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਮਿੱਤਰੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸਿੱਖਿਆ।
2: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਰਿਸ਼ਮਾ ਰਾਏ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता गए हैं। एक रिपोर्ट।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बानंद मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
2: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस के साथ 3रे भारतीय ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के पांचवें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देशभर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली में भारतीय प्रबंधन संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषीय व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि द्विभाषीय व्यवस्था के कारण भारतीय प्रबंधन संस्थाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। सरकार ने कहा कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। यह देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ सकता है। उधर महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले 1 महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को राम राम। देखिए प्रियंका बहन, आज हम अपने भाइयों को जानकारी तो देंगे ही, साथ ही साथ उनका मनोरंजन भी कराएंगे और एक जानकारी भी उनको दिलवाएंगे। जो हम आज चर्चा करेंगे उसका विषय है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, जो हमारी भारत सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि कमजोर वर्ग और गरीब वर्ग के जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले जो हमारे भाई हैं वो इस योजना का पूरा लाभ उठा सकते हैं।
1: बिल्कुल, इस योजना के तहत एक बड़ी आबादी को अत्यधिक रिवायती दरों पर गुणवत्ता पूर्वक खाद्य पदार्थ दिए जाते हैं, जिससे कि पोषण सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, जिसमें सस्ता अनाज है। इसके तहत ही अंत्योदय अन्न योजना भी शामिल है, जिसमें कि 35 किलो अनाज मुफ्त गरीब परिवारों को दिया जाता है और पोषण सहायता के लिए गर्भवती महिला, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए भी अलग से इसमें भत्ता दिया जाता है। साथ ही बच्चों को मुफ्त भोजन की व्यवस्था भी है और इसमें राशन कार्ड के जरिए भी परिवार को, जिसमें 18 वर्ष और इससे अधिक के लोग हैं उसका राशन कार्ड बनता है और उसके जरिए भी अन्न उनको प्रदान किया जाता है।
0: बिल्कुल, राशन कार्ड की अगर आपने बात कही तो जो हमारे भाई हैं उनको 2 किलो गेहूं प्रति यूनिट के हिसाब से दिया जाता है और जो हमारे गरीबी रेखा से नीचे वाले भाई हैं उन

0: को 18 किलो अनाज मुहैया कराया जाता है और इसके लिए आपको जो हमारे भाई हैं उनको ई केवाईसी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार लिंक और ई केवाईसी प्रक्रिया के अनिवार्य जो दस्तावेज है उनको से भी जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उससे नहीं जुड़ेंगे तो आपको राशन नहीं मिलेगा।
1: बिल्कुल, योजना का लाभ आप नहीं ले पाएंगे, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि पंजीकरण कराते वक्त आप अपने सारे दस्तावेज साथ रखें।
0: जी हाँ,
1: देखिए अगर हम बात करें खाद्यान्न की, तो बहुत जरूरी है कि जो हमारे किसान भाई हैं उनकी फसलें भी अच्छी हों और उनकी फसलें अच्छी हों, कम लागत में उन्हें अच्छा मुनाफा मिल पाए, इसके लिए हम एक खास जानकारी उनके लिए लेकर आए हैं।
0: जी हाँ, और जानकारी का विषय है खरीफ फसलों में कम लागत और अच्छा उत्पादन। डॉक्टर वी के तिवारी से बातचीत कर रहे हैं शिव नंदन लाल, तो आइए सुनते हैं ये जानकारी।
2: नमस्कार, आप फसलों से अधिक उत्पादन लेने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, उसमें अच्छा बीज खरीदते हैं और खेत में अच्छी से कृषि क्रियाएं करते हैं, उसके साथ साथ आप उर्वरक हैं, आप उसमें दवाएं हैं, सभी का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण उत्पादन तो आपको मिलता है लेकिन आपकी लागत बढ़ जाती है। ये लागत कैसे कम की जाए और आपका उत्पादन भी अच्छा मिले, इस पर आज हम बात करेंगे। और विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर वी के तिवारी जी, जो कि संयुक्त महाप्रबंधक रह चुके हैं क्रिभको में। तिवारी जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
3: धन्यवाद।
2: तो हमारे किसान भाई अब खरीफ में बिजाई की तैयारी में लगे हुए हैं, तो ये बात सही है कि किसानों की लागत बढ़ती है जब भी कोई भी फसल लगाते हैं, तो वो कैसे कम की जाए और उन्हें उत्पादन भी अच्छा मिले,
3: कि कैसे हमारे किसान भाई कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करें। अब आप देख ही रहे हैं इस समय महंगाई बढ़ती जा रही है, खाद बीज का दाम बढ़ता जा, जो बीज है उनका प्राइस बढ़ता जा रहा है, और जैसा इस समय वैश्विक संकट चल रहा है, खाद की भी उपलब्धता भी तो वैसे प्रचुर मात्रा में है, लेकिन प्रधानमंत्री महोदय ने सभी किसान भाइयों से, सभी लोगों से अनुरोध किया है कि इस समय की स्थिति को देखते हुए हमारे किसान भाई फर्टिलाइजर का उपयोग कम करें, खाद का उपयोग कम करें और जैविक खेती या परंपरागत खेती भी कुछ करें। तो हम इसमें सलाह देंगे, तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारे किसान भाई खेती करते हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि जैसे आपको कुछ भी बीमारी होती है तो आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि भाई ब्लड का टेस्ट करा लो, ऐसे ही हमारे किसान भाई है, इस जो धरती माता है इनसे फसलें उगाते जा रहे हैं, लेकिन धरती माता की स्थिति क्या है, कितना खुराक वो पौधे को उपलब्ध करा पाएंगी, कितना नहीं करा पाएंगी, क्या क्या स्थिति है हमारे जमीन में पोषक तत्वों की, उसका जरूर किसान भाई मिट्टी की जांच कराएं और उससे उनको पता चल जाएगा कि हमारे मिट्टी में कितना इस समय पोषक तत्वों की क्या उपलब्धता है, कितना नाइट्रोजन उपलब्ध है, कितना फॉस्फोरस उपलब्ध है, कितना पोटास उपलब्ध है, और जो मुख्य गौण तत्व है जिंक है आयरन है उसके बारे में पता चल जाएगा। अगर मिट्टी की जांच कराए बिना ही अंदाजे से जब हमारे किसान भाई डालते हैं उर्वरक, तो उससे क्या होता है कि एक तो मिट्टी में जाकर के ये जो उर्वरक होते हैं मिट्टी की संरचना को प्रभावित करते हैं, उसके जैविक जो मिट्टी का कीटाणु है उनको नुकसान पहुंचाते हैं, और साथ ही हमारे किसान भाइयों की लागत भी बढ़ जाती है। तो हम किसान भाई से अनुरोध करेंगे कि अभी बहुत अच्छा समय चल रहा है, मई जून दो महीना है और इस समय हमारे किसान भाई लोगों का खेत खाली है, और किसान भाई अपनी मिट्टी का जरूर से जांच कराएं और मिट्टी का नमूना लेकर के उनके जिले में मृदा परीक्षण केंद्र होता है कृषि विभाग का, वहां भेज दें, या जो हमारी क्रिप्को संस्था है नोएडा में ऑफिस है वहां भी वो किसान भाई अपना कोरियर से किसान सेवा केंद्र पर भेज सकते हैं, और वहां निःशुल्क उनकी जांच हो करके उनको मेल के माध्यम से मृदा की रिपोर्ट मिल जाएगी।
2: मेरा सब बिल्कुल, आपने जिस तरीके से मृदा परीक्षण की बात की, तो मृदा परीक्षण कराने के लिए किसान भाई जो सैंपल लेते हैं, सैंपल लेते समय क्या सावधानी रखें?
3: किसान किसान भाई हमारे मिट्टी का नमूना लेने के लिए क्या सावधानी रखें। ये सही बात है कि हमारे किसान भाई ऐसा न करें कि जो होता है खेत की चौहद्दी मेढ़ के पास से ही एक जगह से मिट्टी निकाल करके दे दिए तो उससे पूरा खेत का

0: और नीचे तक ले जा करके उस मिट्टी को उस गड्ढे में घर ले,
1: गड्ढा भी आकार,
0: हाँ गड्ढा भी आकार का गड्ढा बनाए और उस गड्ढे में ऊपर से खुरपी लगा करके नीचे तक का मिट्टी पूरा इकट्ठा कर ले। और वो जो 9-10 जगह जहाँ से उन्होंने सब मिट्टी लिया है, वो 9-10 जगह की मिट्टी एक साथ मिला ले और आपस में खूब अच्छी तरह से मिला करके उस मिट्टी को ऐसा करे कि कई भाग कटते जाए और जब लगभग आधा किलो तक हो जाए तो उस आधा किलो की मिट्टी की थैली को अपना मिट्टी की थैली में भर ले और भर करके अपना मृदा परीक्षण केंद्र पर लेते जाए। या जैसे हम आपको बताएं कि यहाँ अपने जिले में मृदा परीक्षण केंद्र पर लेते जाए तो वहाँ पे जांच होने के बाद इनको किसान भाई को नमूने से ये मिल जाएगा कि हमारे खेत में कितना पोषक तत्व है और फसल के लिए उनको कितना खाद जद डालना है। हमारे जब किसान भाई करेंगे तो उस मिट्टी के नमूने के जांच में सबसे बड़ी बात ये रहती है, हमारे किसान भाई अपनी सुविधा के लिए केवल यूरिया डाई पोटाश तो देख लेते हैं लेकिन उसमें जो गोबर की खाद की संस्तुति की जाती है उसको नहीं डालते हैं। तो हमारे किसान भाइयों से हम अनुरोध करेंगे कि जो फार्म यार्ड मैन्योर का जो रिकमेंडेशन किया जाता है सॉइल लैब द्वारा उसको जरूर प्रयोग करें। उससे क्या होता है कि अभी जो हमारे खेत में कार्बन की स्थिति दिन पर दिन कम होती जा रही है और कार्बन कंटेंट कम होने से क्या होता है, कार्बन जो है ये हमारे खेत के जीवाणुओं को एक तरह से पोषक तत्व प्रदान करता है। जैसे हम कोई गाड़ी चलाते हैं, कार चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं तो हमको पेट्रोल की आवश्यकता होती है, उसी तरह ये जो कार्बन है उन जीवाणुओं का उनके लिए ये पोषक तत्व का काम करता है कार्बन। और कार्बन सही मात्रा में उपलब्ध होने से मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता बढ़ती है, मिट्टी में हवा की उपलब्धता सही रहती है, हवा की उपलब्धता सही होने से हमारे जो खेती होती है उसमें मृदा जनित रोग नहीं लगते हैं क्योंकि उसमें हवा का संचार प्रॉपर सही तरीके से हो रहा है। और किसान भाई सिंचाई करते हैं तो उसमें मिट्टी में जल रुका रहता है जिससे पौधों को काफी समय तक नमी प्राप्त होती है। जो हम पोषक तत्व डालते हैं, खाद उर्वरक डालते हैं तो घूम करके लीचिंग मतलब बढ़ करके जमीन के सतह से नीचे नहीं जाता है, वो मृदा में उपलब्ध होता है जिससे पौधों को सही मात्रा में उर्वरक मिल पाता है। तो जो हम इतना महंगा उर्वरक डालते हैं वो हमारी जमीन में नुकसान न होकर के पौधों को उपलब्ध होता है तो इससे हमारी उत्पादन लागत कम होती है।
1: जिस तरीके से आपने कहा कि उत्पादन लागत कम होती है तो हमारे किसान भाई जो रासायनिक उर्वरक है उनके वैज्ञानिक कभी कभी सुझाव देते हैं और जो लागत को कम कराने के लिए दूसरे भी माध्यम हैं जैसे जैविक खाद हो गई, आपके बायोफर्टिलाइजर हो गए, आपकी हरी खाद हो गई, इनका भी तो प्रयोग कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, जैसे हम बताए आपको कि मृदा परीक्षण में जो ये खाद की संस्तुत की जाती है उसके अलावा भी धान में बहुत अच्छा रिस्पांस देखा गया हरी खाद का, सनई ढांचा जो होता है अभी इसको छिटक करके खेत में बो दे और जब ये लगभग 35 से और 45-50 दिन की हो जाएगी तो इसको खेत में अपना ट्रैक्टर चला करके दबा देंगे और पानी भर देंगे तो उससे वो क्या होगा कि हरी खाद खेत में सड़ करके खाद हो जाएगी और ये हमारी मिट्टी के लिए समझिए कि बहुत ही अच्छा काम करेगी, वरदान हो जाएगा, एक जैविक खाद हरी खाद अपना पौधे को उपलब्ध होगी और हमारे मिट्टी की स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और जो हम इसमें उर्वरक डालेंगे आगे चल करके वो भी पौधे अच्छी तरह से ले पाएंगे। और जब हम उर्वरक का प्रयोग करेंगे तो चूंकि हम हरी खाद का प्रयोग कर लिए हैं तो हम जो रासायनिक उर्वरक है उसकी मात्रा को हम 15-20% तक कम कर सकते हैं तो हमारी लागत भी कम हो जाएगी। इसके अलावा जब हम बीज का नर्सरी में डालते हैं तो आजकल बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक है एजोटोबैक्टर है, इससे एजोटोबैक्टर क्या करता है कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उनको उपलब्ध कराता है पौधों को। इसी तरह से PSB है, फास्फेट सालिजाइंग बैक्टीरिया होते हैं। जो हम मिट्टी में इतना महंगा DAP खाद डालते हैं, पोटाश डालते हैं, वो पौधे केवल अपनी जड़ की एरिया के पास जो रहता है उसी का उपयोग कर पाते हैं। तो थोड़ी मात्रा में बीज को हम बेहन डालते हैं तो इससे अगर हम एजोटोबैक्टर से, पीएसबी से या पोटास सालिजाइंग बैक्टीरिया से और जिंक सालिजाइंग बैक्टीरिया से, इनके हम बायो फर्टिलाइजर से को जो बीज कम मात्रा में होता है इसको शोधित कर दें और इसको बोए, तो ये बीज जब शोधित होगा तो ये जीवाणु उस बीज के परत पे लगे रहेंगे और ये जब जमीन में रोपाई करेंगे तो रोपाई करते समय भी जो नर्सरी होती है उसको

0: इसका बायो फर्टिलाइजर का घोल बना लेंगे, उसकी जड़ को अपना 15 मिनट के लिए डुबो देंगे उस घोल में, उसके बाद रोपाई करेंगे। तो ये जो हमारे बैक्टीरिया है ये जमीन में कार्यशील हो जाएंगे और जमीन से जो हमारे उर्वरक पोषक तत्व उपलब्ध है लेकिन पौधे नहीं ले पा रहे तो उनको घुलनशील दशा में बना करके और पौधे को उपलब्ध करा देंगे। तो हमारे किसान भाई जब रासायनिक उर्वरक कम मात्रा में भी डालेंगे तो उनको अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा और ये जो हमारे जैविक कीटाणु हैं ये अच्छी तरीके से कार्य करेंगे तो हमारे जो पौधे होंगे इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बनी रहेगी और इसमें कीट पतंगे भी कम लगेंगे। ऐसा देखा गया कि जो हमारे किसान भाई आजकल क्या करते हैं कि पौधे में थोड़ा सा भी इनको लगता है कि पौधा पूरा हरा नहीं दिखाई दे रहा है तो ले जाके यूरिया छिड़क देते हैं, उससे क्या होता है कि पौधे में बढ़वाड़ तो अच्छी हो जाती है लेकिन पौधा में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है, पौधा कोमल हो जाता है, सक्सीलेंट हो जाता है और उससे हमारे कीट पतंगे और बीमारियां अधिक लगने लगती है। तो हम किसान भाइयों से अनुरोध करेंगे कि वो यूरिया का बहुत ही अधिक मात्रा न प्रयोग करें, यूरिया की मात्रा जितना मृदा परीक्षण में दिया गया है उतना ही करें या उससे कम करें और उसके जगह पे 20-25% की मात्रा इस जैविक खाद से, हरी खाद से और गोबर की खाद से इसको 25 से लेकर 40% तक इसको सब्स्टिट्यूट करें।
1: जी डॉक्टर साहब, काफी आपने विस्तार से बताया और बहुत से हमारे किसान भाई खरीफ में दलहनी फसलें भी बोते हैं, दलहनी फसलों में तो उनकी जड़ों में नाइट्रोजन इकट्ठा करने वाले जीवाणु भी पाए जाते हैं तो क्या उनकी बीजों को भी उपचार प्रचारित करके बोना चाहिए?
0: देखिए उनके जड़ों में तो पाए जाते हैं, अगर हमारे किसान भाई कर देते हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं, क्योंकि जो पीएसबी है फास्फेट सालिजाइंग बैक्टीरिया है वो तो जमीन से हमारे जो वैज्ञानिक संस्तुति करते हैं वो दलहनी फसलों के लिए 10:40 के रेशियो में करते हैं कि 10 किलोग्राम नाइट्रोजन 40 किलोग्राम फास्फोरस उपलब्ध कराएं, तो वो हमारे किसान भाई कर देंगे जब उनका बीज शोधन पीएसबी से फास्फेट सालिजाइंग बैक्टीरिया से, तो वो हमारे किसान भाई अगर उसकी मात्रा कम कर देंगे तो हमारे पीएसबी बैक्टीरिया काम करेगा और उसको उपलब्ध कराएगा।
1: जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आपने जिस तरीके से बताया है निश्चित तौर पर हमारे किसान भाई अपनी फसलों से अधिक उत्पादन ले सकते हैं, अपनी लागत भी कम कर सकते हैं और मृदा का स्वास्थ्य भी बनाए रख सकते हैं। जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी हमारे भाई सुन रहे थे जानकारी खरीफ फसलों में कम लागत और अच्छा उत्पादन, डॉक्टर वी के तिवारी से बातचीत कर रहे थे शिवनंदन लाल। और देखिए कल हमारा फोन इन प्रोग्राम है, फोन इन कार्यक्रम है इंडियन पोटास लिमिटेड के सदस्य से, तो 6:30 से 7:30 तक ये लगातार चलेगा और आप इसमें सीधे फोन करके अपनी गन्ने की फसल के बारे में जो जानकारी आपको लेनी है वो पूरी तरह से ले सकते हैं। हमारा जो विषय है कल का वो है गन्ने की बंधाई और देखभाल, तो इस विषय पे अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो हमारे डॉक्टर हमारे विशेषज्ञों से जानकारी को आप ले सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 23:42:10:82 और 23:42:10:83। दिल्ली से बाहर के श्रोता जो है हमारे वो 0-1-1 जरूर लगाएं और अपनी फसल के बारे में जो जानकारी उन्हें लेनी है वो वैज्ञानिकों से लें। तो अब करवाते हैं अपने भाइयों का मनोरंजन और सुनवाते हैं ये उपदेश योगेंद्र निमचाना की आवाज में।
3: दया धर्म पुनदान धैर्य

0: अभी आप सुन रहे थे योगेंद्र निमचाना से ये उपदेश। और देखिए, हम अपने कार्यक्रम के जरिए हमेशा आपको बताते रहते हैं कि किस तरीके से सरकार का भी यही प्रयास है कि जो हमारे किसान भाई हैं वो जैविक खेती की ओर अग्रसर हों, कम से कम रसायनों का प्रयोग करें और मिट्टी की जांच जरूर करवाएं ताकि उन्हें पता चले कि मिट्टी में कौन से पोषक तत्वों की कमी है और उसके अनुसार ही आप उर्वरकों का प्रयोग करें। अत्यधिक उर्वरकों से यहां मिट्टी की सेहत भी खराब होती है और लागत भी ज्यादा होती है, तो इसलिए ध्यान अगर हमारे किसान भाई रखेंगे तो उनकी फसल भी बेहतर होगी और उन्हें अच्छा मुनाफा भी होगा।
1: जी बिल्कुल। और इसी के साथ आज का हमारा कृषि जगत कार्यक्रम यही संपन्न होता है। सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को राम राम। इस कार्यक्रम के प्रस्तुत करते थे तुषार पारासर और संयोजक शिव नंदन लाल।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कृषि जगत। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। शाम के 7:30 होने को हैं। आइए आपको सुनवाते हैं कुछ गजलें।

0: गजल के साथ आपसे गजल के इस कार्यक्रम से मैं इजाजत चाहूंगी। मैं आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, आपसे कुछ ही पलों में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
2: ओह लवली,
1: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
2: अब होगा बड़ा स्टूडियो,
3: कैमरा, नई लाइट्स।
2: लोन ये काम नहीं लगाओ, समय से

0: Stellen Ihnen Rudolfus Life Insurance, ABLIT Life Insurance Policies gefragt. Wenn Sie die Adresse AD Sampath Kare, der india.gov.in पर लॉगिन करें.
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय. दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नई पहल. राजधानी में 32,000 चार्जिंग प्वाइंट लगाने का लक्ष्य. उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने बच्चों पर अत्याचार की रोकथाम के पॉक्सो कानून के अंतर्गत दर्ज मामलों पर दिल्ली पुलिस को तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. दिल्ली पुलिस ने नकली पहचान दस्तावेज तैयार करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया. दिल्ली नगर निगम ने करोलबाग जोन में धूल मुक्त सड़क अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया. और मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में दिल्ली और हरियाणा में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया. अब समाचार विस्तार से. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी एक स्पष्ट कार्य योजना के तहत विकसित की गई है. एक निजी समाचार एजेंसी से बातचीत के दौरान श्रीमती गुप्ता ने बताया कि सरकार ने 32,000 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्वाइंट लगाने का लक्ष्य रखा है, जिनमें से लगभग 9,000 पहले से ही संचालित है.
2: हर व्यक्ति ईवी लेना चाहता है. वर्तमान में लगभग 9,000 ईवी चार्जिंग प्वाइंट दिल्ली में है. हमारा टारगेट है 32,000 पे लेके जाएं. और उसके लिए हमने जो आरडब्ल्यू है, सोसाइटीज हैं, जो बिजनेस इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबको इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए कि हर एक जगह पर आपके ईवी के चार्जिंग स्टेशन होने चाहिए. सरकार उसमें पूरी मदद करेगी, सरकार पूरा सपोर्ट करेगी, मैक्सिमम ईवी चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे.
1: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि नई नीति में केवल सब्सिडी ही नहीं बल्कि पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहन, आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास और ई वेस्ट संयंत्र स्थापित करने की कार्ययोजना

0: शामिल है। उन्होंने कहा कि राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए परिवहन के स्वच्छ साधनों को अपनाना समय की आवश्यकता है।
1: ईवी पॉलिसी मुझे लगता है कि दिल्ली की वो जरूरत थी जिसे बहुत पहले पूरा किया जाना चाहिए था। इसे हम एंड टू एंड सॉल्यूशन के साथ लेके आया है। ना केवल इसमें हमने सब्सिडी दी, बल्कि इसमें हमने स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी दिए, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी की और साथ में ई वेस्ट के प्लांट की भी हमने पूरी योजना बना करके जनता के समक्ष रखी है। आज प्रदूषण जो है दिल्ली की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर वो पक्ष जिसके कारण से पॉल्यूशन हो रहा था उस पर काम किया।
0: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज इस महीने के दौरान मनाए जा रहे बाल संरक्षण माह के अंतर्गत चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों, अभियानों और सुरक्षा उपायों की समीक्षा की। इस दौरान श्री संधू ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि पॉक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत दर्ज सभी मामलों में संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल के साथ त्वरित और पूरी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित उपायों को सिर्फ बाल संरक्षण माह के दौरान ही नहीं बल्कि हमेशा प्राथमिकता के तौर पर लागू किया जाए। बैठक के दौरान श्री संधू ने पहली बार अपराध करने वाले किशोरों की काउंसलिंग और पुनर्वास पर भी विशेष बल दिया। उन्होंने इस महीने के अंत तक दिल्ली के सभी 5,500 से अधिक विद्यालयों में बाल संरक्षण समितियों का गठन करने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े सभी कार्यक्रमों और गतिविधियों का प्रभावी और समय बद्ध क्रियान्वयन सुरक्षित किया जाना आवश्यक है। बैठक के दौरान श्रीमती गुप्ता ने निर्देश दिए कि जुलाई माह के भीतर सभी विद्यालयों में मुख्य प्रशिक्षकों और अन्य प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण पूरा किया जाए। दिल्ली पुलिस ने आज नकली पहचान दस्तावेज तैयार करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार यह गिरोह एक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान लेकर नकली पहचान और अन्य सरकारी दस्तावेज तैयार कर उनकी आपूर्ति करता था। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम ने आज करोलबाग जोन में धूल मुक्त सड़क अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। निगम ने बताया कि 41 दिनों तक चले इस सघन सफाई अभियान के दौरान जोन की सभी मुख्य सड़कों की व्यवस्थित रूप से सफाई की गई। अभियान के दौरान सड़क किनारे बनी नालियों और फुटपाथ से पुरानी जमी हुई धूल को हटाया गया, साथ ही ग्रीन बेल्ट से कूड़ा कचरा और सड़क किनारे पड़े मलबे को भी हटाया गया। निगम ने कहा कि इस अभियान में 22 किलोमीटर लंबी सड़कों को कवर किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 228 मीट्रिक टन पुरानी धूल और 150 मीट्रिक टन कूड़ा कचरा तथा मलबा हटाया गया। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC कल अपने क्षेत्र के 34 स्थानों पर मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव आयोजित करेगी। NDMC के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ मां के नाम अभियान के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का एक अवसर है। एक रिपोर्ट।
2: NDMC के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि दिल्ली सरकार के 70 लाख वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ कल गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत लगभग 600 वृक्ष और 50,000 झाड़ियां लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए NDMC द्वारा 50,000 से अधिक गड्ढे पूर्व तैयार किए जा चुके हैं। श्री चहल ने बताया कि अभियान के तहत पीपल, नीम, जामुन, इमली, चंपा, अशोक, गुलमोहर सहित अनेक देशी और पर्यावरण अनुकूल वृक्ष लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त हिमालया, कैनी लिली, चांदनी और अन्य सजावटी एवं देशी प्रजातियों की झाड़ियां भी रोपी जाएंगी। श्री चहल ने कहा कि NDMC के लिए वृक्षारोपण केवल एक दिवसीय कार्यक्रम नहीं बल्कि एक सतत जन आंदोलन है। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
0: प्रधान संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय दिल्ली अगले महीने की 6 तारीख को नई दिल्ली में पेंशन भोगियों की शिकायतों के समाधान के लिए पेंशन अदालत का आयोजन करेगा। दिल्ली सर्कल के दूरसंचार विभाग, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के पेंशन भोगियों इसमें शामिल हो सकते हैं, जहां पेंशन से जुड़े मामलों जैसे कि PPO जारी करने, सेवा पुस्तिकाओं के रखरखाव और पेंशन वितरण आदि पर विचार

0: जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यहां अदालती मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा, केवल पंजीकृत शिकायतें ही सुनी जाएंगी। शिकायतों के निपटान के लिए पेंशनभोगी 20 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800188119 पर कॉल करके और डाक द्वारा संचार लेखा भवन के पते पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े दो अलग अलग मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में दिल्ली और पंजाब के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार, पिस्तौल और खतरनाक पेट्रोल बम बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि इनमें से एक मॉड्यूल आतंकी गतिविधियों से जुड़ा था, जबकि दूसरा अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल था। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
1: कश्मीर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेता विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित करेंगे। मंत्रालय पिछले 29 वर्ष से विद्यार्थियों में संसदीय प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है। इस प्रतियोगिता में देश भर के 51 विश्वविद्यालयों और कॉलेज के विद्यार्थियों ने भाग लिया। युवा संसद योजना का उद्देश्य युवा पीढ़ी में आत्म अनुशासन, विचारों की उचित अभिव्यक्ति और लोकतांत्रिक जीवन शैली के अन्य गुणों को विकसित करना है। नीतिका की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
0: सरकार ने कहा कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। यह देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
2: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। आज दूरदर्शी राजनेता, राष्ट्र निर्माता और प्रतिष्ठित विद्वान श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि डॉ मुखर्जी का जीवन अधिक राष्ट्र प्रेम का प्रतीक था। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज शहीदी पार्क स्थित डॉ मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि डॉ मुखर्जी ने अपना पूरा जीवन देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित कर दिया था।
3: डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने इस देश की अखंडता का सर्वस्व न्यौछावर किया, 75 वर्ष पूर्व जो उन्होंने कहा वो सपना पूर्ण हुआ और धारा 370 को जड़मूल से समाप्त किया गया और कश्मीर के आवाम को एक नई सुबह देखने का अवसर मिला। आज पूरा देश डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार करने के पश्चात एक आत्मसंतुष्टि का भाव हमारे मन में है।
0: दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि डॉ मुखर्जी के आदर्श राष्ट्र निर्माण, सुशासन और जनसेवा के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि डॉ मुखर्जी आज भी उस नेता के रूप में याद किए जाते हैं जिन्होंने सत्ता से ज्यादा राष्ट्र को महत्व दिया और अपने प्राणों की आहुति देकर एक राष्ट्र एक विधान का संदेश दिया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समितियां बनाई गई हैं।

आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय डॉ गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के दौरान दिल्ली और हरियाणा में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहने के बावजूद लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नई पहल, राजधानी में 32,000 चार्जिंग प्वाइंट लगाने का लक्ष्य। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने बच्चों पर अत्याचार की रोकथाम के पॉक्सो कानून के अंतर्गत दर्ज मामलों पर दिल्ली पुलिस को तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दिल्ली पुलिस ने नकली पहचान दस्तावेज तैयार करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। दिल्ली नगर निगम ने करोल बाग जोन में धूल मुक्त सड़क अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया। और मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में दिल्ली और हरियाणा में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर।

सलाम नमस्ते, स्वागत है आपका आपके फेवरेट प्रोग्राम गीत मालिका में। स्टूडियो की घड़ी ने बजा दिए हैं रात के 8 और आ चुकी हूँ मैं लेकर कुछ चुनिंदा गीत देने आपका साथ। और आज की गीत मालिका की 1600 राइड में आपके साथ हूँ मैं, आपकी मितवा, आपकी साथी, आपकी अपनी दीप्ति। तो पहले खास आपके लिए स्पेशली फॉर यू ये गीत और फिर करेंगे हम मिलकर थोड़ी सी बातचीत।

कहते हैं कि ये जो प्यार की शुरुआत है ना, ये एक छोटे से आओ ना से होती है। जैसे कि आओ ना तुम भी बैठो, आओ ना चाय पीने चलते हैं, आओ ना वहां साथ चलते हैं, और फिर कब वो मुलाकातों, मुस्कुराहटों और ढेर सारी यादों का दौर बनता चला जाता है, कुछ पता ही नहीं चलता। उस गीत में आपने उस प्यारी सी मासूम सी पुकार को महसूस किया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि जब दो दिल सच में एक दूसरे का साथ चुन लेते हैं ना, तो फिर मंजिल नहीं सफर मायने रखता है, और उस सफर में बस चार कदम नहीं पूरे जिंदगी साथ चलने का एहसास छुपा होता है। तो आइए बढ़ाते हैं इसी खूबसूरत से एहसास को थोड़ा और आगे, बनाते हैं इसी एहसास को थोड़ा और खास।

तो कभी कभी ना प्यार की सबसे खूबसूरत बातें शब्दों में नहीं बल्कि साथ निभाने से कही जाती हैं। लेकिन अब हर प्रेम कहानी इतनी आसान भी नहीं होती। कुछ रिश्ते वक्त से जुड़ते हैं और कुछ रिश्ते वक्त से लड़ते हैं, कुछ हालात से और कुछ अपने ही दिल से। और जब मोहब्बत इम्तिहान लेने लगे तब तो दिल हर चीज दांव पर लगाने को तैयार हो जाता है, क्योंकि सच्चे प्यार में नफा नुकसान का तो हिसाब ही नहीं होता ना, बस एक ही चाहत होती है अपने हम सफर का साथ।

कहते हैं कि प्यार का सबसे खूबसूरत सौदा वही होता है जिसमें दिल हार कर भी इंसान को सबसे बड़े जीतने वाला समझा जाए। फिर हर मुलाकात किसी त्योहार जैसी हो जाती है, हर मुस्कान एक नई कहानी लिख देती है। लेकिन प्यार ना, प्यार सिर्फ हंसाता नहीं है, ये थोड़ा सा शर्माता भी है, थोड़ा सा तड़पाता भी है, थोड़ा सा झिझकता भी है, और कभी कभी तो चांद को भी अपनी तरफ मिला लेता है। और शायद इसीलिए मोहब्बत करने वालों के सामने चांद भी आने में थोड़ा झिझकता, थोड़ा शर्माता है। जैसे कि मोहब्बत का गवाह तो बनना है, लेकिन क्या करें, थोड़ी थोड़ी शर्म का भी लिहाज रखना है। तो फिर खूबसूरत प्यार के नाम, बादलों के नाम, इस खूबसूरत चांद के नाम एक गीत तो बनता है।

जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है उनको हम बता दें कि आपने ट्यून इन किया है आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल को। प्रोग्राम चल रहा है गीत मालिका और आज गीत मालिका की इस रोलर कोस्टर राइड पर आप हैं मेरे संग यानी दीप्ति पाठक निधीश के संग। तो चलिए अब बात करते हैं कुछ आगे। कुछ गाने होते हैं ना वो ऐसे होते हैं कि खत्म तो हो जाते हैं लेकिन उनका एहसास जो होता है वो यहीं कहीं आपके आसपास ठहर जाता है। अभी देखिए ना चांद बादल और रात की बातें हो रही थी और अब हम बात करेंगे उन सवालों की जो प्यार में हर दिल कभी ना कभी जरूर पूछता है। वैसे प्यार ना ये होता बहुत शरारती है, पहले चुपके से दिल में एंट्री करेगा और फिर मुस्कान पर कब्जा और फिर दिमाग को भेज देगा हॉलीडे पर, ना कुछ सोच पाओ ना कुछ समझ पाओ। अच्छा लगता है तो बस उससे जुड़ी हर छोटी छोटी बात, सब कुछ स्पेशल, हर धड़कन कोई नया राज सुनाने लगती है और तब कब दिल बस यही सोचता रह जाता है क्या हुआ क्यों हुआ कैसे हुआ खुदा जाने।

दोस्तों, ये मोहब्बत भी ना ये बहुत दिलचस्प चीज है। शुरुआत में तो दिल बस एक ही बात सोचता रहता है कि भाई ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और फिर धीरे धीरे मुस्कुराहटें बढ़ने लगती हैं, मिलने के बहाने बनने लगते हैं और बातें बातें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। लेकिन सबसे मुश्किल पल तब आता है जब दिल में तो बहुत कुछ होता है लेकिन होठों तक आते आते सारे अल्फाज गायब हो जाए। आखिर कब तक नजरें ही सारी बातें करती रहेंगी? कभी तो दिल की बात दिल से निकलकर लफ्जों तक भी पहुंचनी चाहिए ना, क्योंकि कुछ एहसास सिर्फ महसूस करने के लिए नहीं होते, उन्हें ना कह देना भी जरूरी होता है।

ना जरा। वैसे प्यार में सबसे मुश्किल काम होता है दिल की बात कह देना, लेकिन एक बार वो बात कह दीजिए तो फिर जिंदगी ना पहले सी नहीं रहती। छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी लगने लगती हैं और हर मौसम गुनगुनाने सा लगता है। फिर दिल की बात तो हमने कह ही दी, अब आगे क्या? अब शुरू होती है वो प्यारी सी कहानी जहां मैं धीरे धीरे हम बन जाता है।

वैसे दोस्तों ये इश्क काबिना एक अपना बड़ा मजेदार सा सिस्टम है। पहले तो दिल महीनों तक रिहर्सल करता रहेगा कि बोलूं या ना बोलूं, फिर एक दिन हिम्मत जुटाकर कह दिया बोल दो ना जरा, और बस उसके बाद तो कहानी का नया चैप्टर स्टार्ट हो जाता है। अब हर मुलाकात में तारीफ का नया बहाना, हर मुस्कान पर दिल का नया फसाना। कभी लगता है ये मुस्कान इतनी प्यारी कैसे है, तो कभी लगता है ये सादगी इतनी खूबसूरत कैसे है। सच कहूं तो मोहब्बत में कॉम्प्लीमेंट्स कभी खत्म नहीं होते, और जब दिल पूरी तरह इम्प्रेस हो जाए तो डिक्शनरी के सारे शब्द छोटे लगने लगते हैं।

दोस्तों, इसी प्यारी सी मुस्कान, खूबसूरत से एहसास और ढेर सारी मोहब्बत के साथ आज के सुरीले सफर के रोलर कोस्टर राइड को यही देना होगा विराम। उम्मीद है इन गीतों ने आपके दिल को जरूर छुआ होगा, चेहरे पे मुस्कान भी आई होगी और आपकी कुछ खूबसूरत यादें फिर से ताजा जरूर हुई होंगी। तो मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, बने रहिए आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के संग। मैं दीप्ति पाठक निधीश फिलहाल के लिए चाहूंगी आपसे इजाजत। आप जुड़े रहिएगा आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के संग।

0: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉ मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
1: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में दो वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
2: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
1: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरे ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
3: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की

0: जाएगी।
1: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओणम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य

नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे

0: इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
1: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए, और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
2: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसडीआरएफ के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गयी। इस बीच आईएमडी ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है।

0: जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरल, माहे ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉ जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉ अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमरीका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामनेई को उनके जन्मस्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई ये 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम और पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉ गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल #askar के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के 6 स्वदेशी स्टील फ्रिगेट युद्धपोत महेंद्र गिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इस आधुनिक युद्धपोत की रूपरेखा भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrived.

मुश्किल 20 मिनट पर एक फनकार प्रोग्राम पेश किया जाएगा। इस प्रोग्राम में आज की फनकार हैं चित्रा सिंह। नमस्कार 45 मिनट पर आप खबरें सुनेंगे और 9:55 मिनट पर मशवरे सेहत के सिलसिले के तहत कुछ बातें होंगी आपकी सेहत के हवाले से। रात 10 बजे अदबी मैगजीन आईना पेश की जाएगी और 10:30 पर आप सुनेंगे फरमाइशी फिल्मी नाखूनों का प्रोग्राम तामिल इरशाद। तामिल इरशाद प्रोग्राम जारी रहेगा 11:30 बजे तक। पुराने प्रोग्राम आप सुनेंगे खबरें बरे सगीर से का उर्दू न्यूज बुलेटिन। साढ़े 11 बजे प्रोग्राम पेश होगा सुर्खियों में और 11:45 पर कव्वालियां पेश करेंगे चंचल भारती कव्वाल और हमनवा। शब के 12 बजे आलमी खबरें नशर की जाएंगी और 12:10 पर क्लासिकी मौसीकी में आप सुनेंगे भजन सोपोरी का संतूर को बजाय राग किरमानी। जबकि 12:30 बजे आखिरी शब प्रोग्राम में हम आपकी नजर करते हैं चंद सदाबहार पुराने फिल्मी नगमे। 12:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और शब 1 बजे उर्दू सर्विस की 3री मजलिस की नशरियात इख्तिताम पजीर हो जाएंगी। सामने थे मुख्तसर तारुफ इस मजलिस में नशर वाले प्रोग्रामों के हवाले से। मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DTF रेडियो पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस। पेश खिदमत प्रोग्राम एक फनकार। इस प्रोग्राम में आज आप महसूस होंगे चित्रा सिंह की गाई चंद गजलों और गीतों से।

सईद राही का कलाम पेश कर रही थी चित्रा सिंह, और इस गजल के साथ ही आज का एक फनकार प्रोग्राम अब खत्म होता है। मीडियम वेव 1071 किलोहर्ट्ज़।

डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं सालगिरह को 2 साल कौमी जश्न के तौर पर मना रही है। वजीर आजम ने कहा कि इन तकरीबात का आगाज पिछले बरस 6 जुलाई को हुआ था और ये अगले बरस 6 जुलाई तक जारी रहेंगी। वजीर आजम ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की जिंदगी एक तरगीब है जो बताती है कि किस तरह एक तस्वुर एक अवामी तहरीक के तौर पर अपनी तकमील को पहुंचता है। जनाब मोदी ने कहा कि बंगाल में बीजेपी हुकूमत की तश्कील के साथ रियासत में इस कौमी एजाज के तई जोश व खरोश में मजीद इजाफा कर रही है और तहरीक देने वाली इस शख्सियत को याद कर रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कोलकाता में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती तकरीबात में शिरकत की। वजीर दाखिला ने आज कोलकाता में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आबाई घर का दौरा किया और उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इससे पहले उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125 फीट ऊंचे मुजस्मे के संग बुनियाद रखे जाने की तकरीब में शिरकत की। इन तकरीबात में मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी, मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत, राज्यसभा के रुकन शमीक भट्टाचार्य और दीगर मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। इससे पहले सुबह में वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता की रेड रोड पर हुई तकरीब में शिरकत की, जहां वजीर आला और दीगर मौजूद शख्सियात ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के मुजस्मे पर गुलाह अकीदत पेश किए। मध्य प्रदेश के वजीर आला डॉ मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का संग बुनियाद रखा। 200 से ज्यादा सरकर्दा सनतकार और सरमाकारों ने इस तकरीब में शिरकत की। ये पार्क 173 एकड़ जमीन पर बनाया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्ट के मेंबर डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे मंजूर कर लिए। दोनों लोगों ने राम मंदिर को दिए गए दान में खुर्द बुर्द के मुबैना मामले में अपने नाम आने के बाद अपने ओहदों से इस्तीफे दे दिए थे। कृष्ण मोहन को उस वक्त तक उपरी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है जब तक कोई नया जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर नहीं हो जाता। उनकी शिकायत उस FIR की बुनियाद बनी थी जिसके तहत दान में दी गई चीजों के सिलसिले में मुबैना बेजाब्तगियों का मामला दर्ज किया गया और जिसके बाद 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। ट्रस्ट के एक चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर की तकरीरी का भी फैसला किया गया है। 3 मेंबरों पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी गई है ताकि तकरीरी के लिए मुनासिब नाम तजवीज किए जाएं। मीटिंग के दौरान गोपाल नगर कोटे का नाम भी ट्रस्ट के खसूसी मदुईन की फहरिस्त से निकाल दिया गया। मीडिया से बात करते हुए ट्रस्ट के खजांची गोविंद देवगिरी ने बताया कि पूरे मामले के पीछे किसी साजिश के इम्कान को खारिज नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने दान में दिए गए जेवरात और दीगर कीमती अशिया को दिखाया और वजाहत की कि दान में दी गई तमाम अशिया महफूज हैं और उनका बाकायदा हिसाब किताब रखा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी शख्स दान में दी गई अशिया की तफसीलात ट्रस्ट से हासिल कर सकता है। कृष्ण मोहन ने एतराफ किया कि इस तनाजे की वजह से ट्रस्ट की छवि को नुकसान पहुंचा है। अलबत्ता अपनी बाकायदा प्रेस रिलीज में ट्रस्ट ने कहा है कि राम के करोड़ों अकीदतमंद अब भी राम मंदिर में ऐसा यकीन रखते हैं जिसमें कोई तजलजुल नहीं है और ये भी कि दान की अशिया में मुबैना खुर्द बुर्द का मामला सामने आने के बाद से राम मंदिर में आने वाले अकीदतमंदों की तादाद में कोई कमी नहीं आई है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर कतर का अपना दौरा मुकम्मल करने के बाद मगरबी एशिया के अपने दौरे के दूसरे मरहले में आज बहरीन पहुंचे। डॉक्टर जयशंकर ने मनामा में बहरीन के अपने हम मनसब डॉक्टर अब्दुल लतीफ बिन राशिद अज़ज़यानी से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मीटिंग के दौरान उन्होंने भारतीय बिरादरी की खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए बहरीन के अपने हम मनसब की इंतहाई सताइश की। दोनों वुजरा ने बाहमी तआवुन को मजीद बढ़ाने और खित्ते में जारी अहम वाकयात के तनाजुर में तबादला ख्याल भी किया। डॉक्टर जयशंकर मगरबी एशिया के अपने दौरे के हिस्से के तौर पर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तिजारत और सनत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने आज कहा कि टेक्नोलॉजी पर मबनी 2 जमानों पर मुश्तमिल मैनेजमेंट की तालीम देही शहरी फर्क को खत्म करने और हर एक बासलाहियत और जरूरतमंद तलबा को उनके हालात से खतः नजर मियारी तालीम तक रसाई को यकीनी बनाएगी। जनाब गोयल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट उदयपुर में नए कोर्स के नई दिल्ली से वर्चुअल इफ्तिताह के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे। भारतीय महकमा मौसमियात ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, वस्ती महाराष्ट्र, साहिली कर्नाटक के दूरदराज के मकामात पर कल शदीद से शदीद तरीन बारिश के इम्कान के तनाजुर में रेड अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अंदरूनी कर्नाटक, मध्य कर्नाटक,

0: इसके बाद हम खुरमा व हम सवाब, किशना और बादार हुस्न जैसे इब्तदाई नावलों में उन्होंने नज़ीर अहमद के समाजी इस्लाही नुक्ते नजर को बरतने की कोशिश की। इसी दौर में प्रेमचंद ने रानी सारंधा जैसे तारीखी किस्से और नावलेट भी लिखे, जिनमें राजपूतों के जज्बे हमियत, शुजात और जांबाजी के किस्से सुनाए। प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी ने शरर के इस्लामी तारीखी नावलों से प्रेमचंद के इन किस्सों का मुआवजा करते हुए सही कहा है कि प्रेमचंद की आवाज इतनी जंग आजमाओं की नहीं मालूम होती जितनी उन दास्तां सराओं की, जो गांव में रात को अलाव के गिर्द बैठने वालों को या फसल कटने के जमाने में किसान मर्द औरतों और बच्चों को किस्से सिकंदर और दारा सुनाते हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी साहब का यह कौल प्रेमचंद के फन नावल निगारी की बुनियादी हकीकतों की तरफ इशारा करता है। वो उर्दू के पहले अदीब हैं जिन्होंने हिंदुस्तानी गांव के किसानों, खेत मजदूरों और हरिजनों की जिंदगी, उनकी अजमत और उनके इंसानी वकार को समझा और उनके लिए उर्दू नावल के कुशादा दरवाजे खोले। प्रेमचंद ने उन्हें हीरो बनाकर नावल में उनके दुख सुख की गाथा सुनाकर उर्दू के अफसानवी अदब को नई वसतों और एक नए एहसास जमाल से आशना किया। इस तरह उर्दू अदब, जो अब तक शहर के आला और मुतवसित तबके की तर्जमानी करता रहा था, सारे मुल्क की मुतहर्रिक जिंदगी, करोड़ों मेहनतकश इंसानों की तहरीकों और आम इंसानों के मशगलों और मारकों का जानदार मरक्का बन गया। उनके पहले संजीदा नावल गोश है आफियत से गौदान तक उनकी तवज्जो का मरकज 80% हिंदुस्तानी अवाम, किसान और मजदूर रहे हैं, बेशतर वो जो गांव में जिंदगी बसर करते थे। इफलास, महरूमियों, वबाओं और जहालत के अंधेरों में जो हैवानों की सतह पर जीने पर मजबूर थे, प्रेमचंद ने उनकी जिंदगी के संगीन हकायक को, उनके बुनियादी मसाइल को नावल का मौजू बनाकर उर्दू के अफसानवी अदब का रुख मोड़ दिया और नावल को हकीकी मानों में रूह असर का तर्जुमान बना दिया। मुमताज नकाद गौरगी लूकाश ने दुनिया के अजीम अफसानवी अदब का जिक्र करते हुए लिखा है कि हर बड़ी अफसानवी तख्लीक में किरदार ऐसे मौसर, मानी खेज और हमाजहती अंदाज से पेश किए जाते हैं कि वो न सिर्फ बाहमी तौर पर एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं, बल्कि वो समाज की पेचीदगियों और उसके अजीम मसाइल की नुमाइंदगी भी करते हैं। ये बाहमी असर पजीरी और तर्जमानी जितनी गहरी और घनी होगी, उस तख्लीक की फनी बड़ाई के इम्कानात भी उतने ही रोशन होंगे। प्रेमचंद के तमाम नावल न सही, चंद नावल ऐसे जरूर हैं जो इस मियार पर पूरे उतरते हैं। उन्होंने बलराज, सूरदास और होरी जैसे किरदारों को उस अहद के वसी तारीखी तनाजुर और समाजी आवेदिश के आईने में पेश किया है। ये किरदार अपने अहद की तर्जमानी के बावजूद एक इनफरादी आवरंग भी रखते हैं। प्रेमचंद की इंसान दोस्ती और दर्दमंदाना एहसास ने उनकी सीरत के इनफरादी नकूश भी बड़ी महारत से उभारे हैं। उनके दुख सुख, ख्वाबों और ख्वाहिशों की एक अपनी दुनिया है जो दूसरे किरदारों की दुनिया से अलग पहचानी जाती है। हर नावल निगार के जहन में नावल का और नावल में हकीकत की तर्जमानी का एक खास तसव्वुर होता है, जो उसके तख्लीकी रवैये में भी बरूएकार रहता है। अब सवाल यह है कि प्रेमचंद के जहन में नावल का क्या तसव्वुर था। अपने कई मजामीन में उन्होंने नावल के फन पर इजहार ख्याल किया है। लिखते हैं,
1: मैं नावल को इंसानी किरदार की मुसव्वरी समझता हूं। इंसान की सीरत पर रोशनी डालना और उसके असरार को खोलना ही नावल का बुनियादी मकसद है। सवाल यह है कि क्या नावल निगार का काम किरदारों का मुताला करके उनको कारी के सामने वजन से ही रख देना

0: ख्वाजा अहमद अब्बास, उपेंद्र नाथ अश्क और दूसरे अदीबों ने जब लिखना शुरू किया तो प्रेमचंद के नॉवेलों ने उन्हें खास तौर पर मुतासिर किया। ख्वाजा अहमद अब्बास लिखते हैं,
1: उनके बड़े नावलों में चौगाने हस्ती और मैदाने अमल ने मुझ पर बहुत असर किया। ऐसा लगता था कि दिमाग की खिड़कियां खुल गईं और उनमें से मैंने अपने मुल्क के पसमानदा तबके को देखा जो गांव में रहता था, और इस तरह वहां के समाज से मेरी पहली अदबी मुलाकात हुई। देहाती माशरत से मुंशी जी को बड़ा लगाव था। देहाती किरदार उनके इतने जीते जागते होते थे कि नकली नहीं असली लगते थे। उसके मुकाबले में मुतवस्त और ऊंचे दर्जे का किरदार किसी कदर नकली लगते थे। अली सरदार जाफरी लिखते हैं,
0: प्रेमचंद ने हालांकि शुमाली हिंदुस्तान की जिंदगी को पेश किया है, लेकिन उनकी नजर में इतनी गहराई और बयान में इतनी सदाकत है कि वो तस्वीर मजमूई हैसियत से सारे हिंदुस्तान की नुमाइंदगी कर सकती है। गौदान की होरी और धनिया शुमाली हिंदुस्तान के बदहाल किसान मर्द और औरत हैं, लेकिन उनमें सारे हिंदुस्तान के किसान अपने खदोखाल की झलक देख सकते हैं। गोशा याफियत का बलराज हर जगह बगावत कर रहा है। प्रेमचंद के तख्लीक किए हुए क्लर्क और सरकारी हाकिम, कारिंदे और सिपाही, साधु और मजहबी पेशवा सारे मुल्क में फैले हुए हैं। इसी हकीकत ने उनके अदब को

सूर्यवंशी प्रेमचंद। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। हमारी नशा जारी है मीडियम वेव्स 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और डीडी फ्री डिश पर। तामिले इरशाद, तामिले इरशाद प्रोग्राम के सभी सामईन को नईम का आदाब। ये मेरा इश्क था या फिर दीवानगी की हद, कि तेरे ही करीब से गुजरे तेरे ही ख्याल में।

मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान है, गांव दुलापुर मुरादाबाद यूपी से। और ये फरमाइश ईमेल बहुत जल्दी रिपीट हुआ, इसको करना पड़ेगा साइड लाइन वरना सेल्फ गोल हो जाएगा दोस्तों। फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से फरमाइश की नासिर शेख नादेना से साजिद शाहिद ने। और दिल्ली उत्तम नगर से हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी और साथ में गीतिका खोरवाल। और ये फरमाइश ईमेल फिर हो गया रिपीट, इसको भी करते हैं हम साइड लाइन। मुनव्वर अल्लाह पीरजादा, नसीन मिर्जा, अरबाज शहबाज की फरमाइश पश्चिम थोक गंज जुंडवारा से मिली। एस एम जावेद शगुफ्ता नियम टावर चौगुमला झारखंड से। और नरोत्तम गौड़, हिमांशु गौड़, यश गौड़ उदयपुर से इसी कवाली को सुन रहे थे। बोरखेड़ा उज्जैन से विनोद मूणत, नेहा जैन और दीपक मूणत। और किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहनदास, आशा देवी और देवा। और अगला ईमेल फिर रिपीट हुआ, इसको भी साइड लाइन करना पड़ेगा। रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान है हनुमानगढ़ राजस्थान से। तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला नगमा। और अगला नगमा है मोहम्मद रफी, बलबीर और साथियों की आवाजों में। और फिल्म है हकीकत, कैफी आजमी यहां भी शायर है। और मौसीक की तरतीब दी मदन मोहन साहब ने। और साथ में तलत महमूद और मन्नडे यहां पर मोहम्मद रफी का साथ दे रहे हैं। और इस कव्वाली को सुनने के लिए हमारे कुछ दोस्तों ने लिखा, अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल अट्टावर, जियाउर रहमान डावर, नागचून रोड संजय कॉलोनी से। और छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश और राशि राजेश और उनके कुछ और साथी। मधु कटीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु बालूजा, साथ में सागर बालूजा। आसेगांव बाजार से करण रंजीत पुनकर की फरमाइश भी है। और कृष्णा कॉलोनी हासे सुभाष योगी, राजू मिगलानी और बब्बू डब्बू। और भोपाल की अगर बात की जाए तो यहां से सुन रहे हैं तमिल इशात प्रोग्राम चंपालाल दुबे, साथ में आनंद और दर्शिका दर्शित। कुछ इस तरह से नाम आपने लिखकर भेजे हैं। और अगला ईमेल किसका है ये भी देख लेते हैं जनाब। इम्तियाज इमाम आतिश, ताहिरा परवीन आतिश, डॉक्टर मोहम्मद आसिफ हैं गिरडीह झारखंड से। आपकी फरमाइश हमें मौसूल हुई है और अगला ईमेल फिर रिपीट हो गया, इसको भी करना पड़ेगा साइड लाइन। चंद्रेश गौर, वंदना गौर, जयपाल यादव, सागर एमपी से आपकी फरमाइश हमें मिली। और जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत हैं, निर्माबाद जीन से आपकी फरमाइश है। और इसी नकमे को सुनना चाहते हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, साथ में है जाहिरा बेगम, मोहम्मद अयान अंसारी, गंज डंडवारा कासगंज से आपने फरमाइश है मिसाल की है। और ऊपरकोट मौला चौखुंडी बुलंदशहर से सुनने के मुतमन्नी अगले नकमे को मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी और साथ में शाहनवाज सरफराज अब्बासी। और ये ईमेल मिला है रघुवी नगर से दिलावर खान, हसीना बानो और अलीजा नायाब का। और सहारनपुर से आशु नारंग, सुरेश नारंग और सोनाली और उनके कुछ और साथी। और शब्बीर हुसैन, मुज्जू बाबा और शहजाद हैं सब्जी मंडी बुलडाना से। इसी नगमे को सुनने के मुंतजिर हैं जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नौरीन अंसारी और नसरीन अंसारी। और ये फरमाइशी ईमेल नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी का है मरहरा दरवाजा एटा से। और दिलीप रामेकर, हर्षा रामेकर, अक्षय रामेकर हैं राठगांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से। और बाबू सिंह धीमान, बलजिंदर कौर धीमान, रवनीत निशु की फरमाइश है मुख्तसर पंजाब से। अल्ताफ उजे, सैफुल्ला सबाहत सांगली जत्ते शहर से सुनना चाहते हैं अगले नखमे को। विनायक बेंडे, मंगला बेंडे, शुभम है आकोट से। और अगला ईमेल मिला है नर्मदा पार्क मंगलवेड़ा से महाराष्ट्र से हैं मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल, साथ में नदीम और उनके कुछ और साथी। और खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा और नानक चंद्र मल्होत्रा। तो आइए सुनते हैं प्रोग्राम का अगला नगमा, ये भी कव्वाली की शक्ल में है।

0: वाकई मोहब्बत भी इंसान को क्या क्या बना देती है, कभी दीवाना बनाती है, कभी बीमार कर देती है और कभी मजबूर भी कर देती है। और ये मजबूरी जो है मोहब्बत की मजबूरी है जनाब, कौन मजबूर होना ना चाहेगा। हम भी इस मोहब्बत में गिरफ्तार हैं आपकी और चले आते हैं गाहे बगाहे आपसे मुलाकात करने, और इसी मुलाकात में एक और खूबसूरत नगमा भी हो जाए, ये भी कव्वाली की शक्ल में। जनाब रफी साहब के साथ में बलबीर हैं और कुछ और साथी हैं, हंसते जख्म बिल्कुल कव्वाली कैफी आदमी साहब के लिखे, मदन मोहन यहाँ भी मौजूद हैं एक मौसिकार के तौर पर। और तामिली शाद प्रोग्राम में अब जो ईमेल्स हम शामिल कर रहे हैं उनको थोड़ा सा तरतीब देते हैं, रिफ्रेश करके फिर उसके बाद शामिल करते हैं ताकि हमारे दोस्तों को शिकायत ना हो कि हमने तो पहले भेजा था जनाब, हमारा नाम शामिल नहीं हुआ, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहे हो। लेकिन बस बात तो बन गई है। नलेश्वर नगर नरवेल से हैं पीएस नाहौकर, निर्मला नाहौकर और विशाल नाहौकर, और ये फरमाइश ईमेल मिला अकली दीवान एमपी से रामलाल चंद्रवंशी, कृष्णा चंद्रवंशी और साथ में मीनाक्षी और उनके बहुत सारे साथी हैं, उनको शामिल नहीं कर सकते लेकिन हाँ बस इतना कह दिया कि और भी साथी हैं। संजय ढींगे नमन ढींगे अपार हैं बागपत यूपी से, अगला नगमा आप भी सुनना चाहते हैं, आप है कैलाश फूलमाली, दीपक फूलमाली, समर फूलमाली, अहमदपुर खेगा उखंडवा से हैं, अशोक दले साथ में अनिकेत दले और सविता भी हैं, आपने श्रीरामपुर के कुम्हार गली से फरमाइश हमें साल की है, अभियुत गोहन का राय सरिता गोहन का, अर्जुन गोहन का डुक्कू है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, और बाबा कुटी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान साथ में उत्कर्ष, और दाता सिंह शेखावत, संगीता कांवर साथ में रिंकी शेखावत, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से, और अगला ईमेल रिपीट हो गया है इसको भी साइडलाइन कर देना है। अरुण कुमार शर्मा, रेणु देवी, राहुल कुमार शर्मा हैं सलाही सोक नहा नेपाल से, और रुकनुद्दीन मंटाल, शबीर बनट्टी, आसिफ इकबाल कर्नाटक के गुलबर्गा से, उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किशुताशु पाकुर झारखंड से, और मसरूर हसन साथ में शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम, गांव कुमारहेड़ा सहारनपुर से, अगला ईमेल मौसूल हुआ आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा और योगेश का, इसी नगमे को सुनना चाहते हैं, मोटाला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रत्नमाला सुरलकर और आरती और उनके कुछ और साथी, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबे शेख, शेख रहीम मुन्ना और इसी नगमे को सुनने के मुंतजर हैं बबलेश पवा, डैनी पवा, मास्टर मनीष, गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से आपने फरमाइश हमें साल की है, और डांगरी से बाबू राम जयपाल, और रामदेवड़ा से दिनेश चौहान, राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे विद्यार्थी, बुल्की वाली फलना जाए, गोकुल चौक गंगजला सहरसा से हैं, और लालगिरी गोस्वामी हेमलता हिना, रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से ये फरमाइश आपने साल की है, कस्बा बराड़ा अम्बाला से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल और राज पैलेस ममनाथ भंजन यूपी से सुनना चाहते हैं अगला नगमा तामिली शाद प्रोग्राम का, राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा और मेन बाजार कुंडलवाड़ी से हैं गंगाधर यमिकर, प्रमोद यमिकर, प्रदीप यमिकर, उत्तम कुमार भगत, बघेल रुक्मणी बघेल साहिल हैं लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से, और ये फरमाइशी मेल मौसूल हुआ है जज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटे, रीटा भाटिया और रजत का, और आप हैं बबलू शेख वजीर और सुहेल शेख मोटाला बाजार से। आइए सुनते हैं प्रोग्राम की अगली पेशकश।
1: हाय

पड़ा ये माना मेरी जान मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान।

0: इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के तीन मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में जकार्ता पहुंच गए हैं। वजीर आजम मोदी ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं सालगिरह के मौके पर खिराज अकीदत पेश किया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बहुत तेज बारिश के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश और साहिली कर्नाटक में कल बहुत तेज बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। और फीफा वर्ल्ड कप में आज रात अमरीका में पुर्तगाल और स्पेन का मुकाबला राउंड ऑफ 16 के मैच में होगा। इसी के साथ बर्रसगीर की खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है और प्रोग्राम जारी है तामिले इरशाद। न रात कटती है न जिंदगी, एक शख्स मेरे वक्त को मध्यम कर गया।

जो बेचते थे दर्द दिल की दवा, वो हकीम साहब तो दुकान बढ़ा चले, लेकिन जनाब हमारी दुकान तो अभी खुली है, क्योंकि यहाँ तो बहुत सारी फरमाइशें भी बाकी हैं और लगता है कि गाड़ी को अब चौथे गियर में डालना पड़ेगा। ये टैक्सी ड्राइवर फिल्म का नाम था लता मंगेशकर की आवाज में, साहिर लुधियानवी साहब का लिखा हुआ, एस डी बर्मन की थी मौसीकी, और जहां तक फरमाइश की बात है तो जल्दी से इनको शामिल करना चाहेंगे। कारो करोनी बड़वा से, खरगोन से प्रवीण शेमाली, मीना शेरीमाली और अनंता भगत अरुणा भगत सुलोचना है, मस्तानपुरा पूर्णा जंक्शन से, और ये फरमाइश आई है कर्नाटक स्टेट चिन्ना तिरुपति गांव से। श्यामला प्रकाश, अश्विनी आनंद और मनवित भी साथ में शामिल हैं, और आप हैं वो दोस्त जो शामिल हो चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं, दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से रेखा बसंत कुमार सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता और अविन का तनुश्री, और इसी नगमे को सुन रहे थे राम कुमार रेवाड़ चंद्रकला सालू शहर राजस्थान से, बिट्टू भाटिया रीटा भाटिया रजत की फरमाइश झज्जर से मिली, और आप हैं मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद मोहम्मद शदाब।

आप हैं विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तृप्ति साहू, लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से, संतोष खटसे, विनोद खटसे की फरमाई, यवतमाल विदर्भ से मिली। और अगला ईमेल इशरत खान, सायरा बेगम, रऊफ खान का, आपने गंगोला दातागंज जिला बदायूं से ये फरमाइश हमें इरसाल की थी। और अगला ईमेल रिपीट हो गया, इसको भी साइड लाइन कर देते हैं दोस्त। सुरज चौधरी है कोलकाता से, और इसी नगमे को सुनना चाहते थे वो दोस्त जो शामिल हो चुके हैं, तो आपको भी साइड लाइन करना पड़ेगा जनाब। खान जी भी उदयपुर से, जब्बार मोहम्मद, नजीब खान, मंजू अशरफ, और ये फरमाइश ईमेल मौसूला भाटापारा छत्तीसगढ़ से बचकमल, डॉक्टर बसंत प्रभु और मोतीलाल यादव की जानिब से। और आप हैं सदाशिव थोराट, कविता थोराट, श्रेया थोराट, गांव देगांव, तहसील पूर्णा, महाराष्ट्र से। और अगला ईमेल हो गया है रिपीट, बड़ा रिपीटेशन है आज जनाब, बड़ा मुश्किल है इनसे दो चार होना। गाडगी नगर यवतमाल महाराष्ट्र से लक्ष्मण राव लोखंडे, कल्पना लोखंडे, साथ में है शैलेश लोखंडे। लेकिन हमें बहुत अच्छे से निपटना आता है इन सबसे। कोटवा नारायणपुर बापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, साथ में अमित कुमार, और वर्षा मालोडे, श्रद्धा मालोडे, मानसी मालोडे, कोजागिरी कॉलोनी, कोपर गांव से। और ये फरमाइश मिली है प्रकाश निषाद, बल्लू निषाद और सौरभ की, जेल रोड रायगढ़ से हैं। और अगला ईमेल फिर रिपीट हो गया है जनाब, कोई बात नहीं है, आपको भी वही आपके साथ सलूक होगा जो दूसरे रिपीटेशन के साथ होता है। नागपुर से विठल जाधव, सुया जाधव, पवन राजे जाधव, सुनील पाठक, कमल पाठक, और साथ में गव्या मल्होत्रा, नारकली बाजार जगराव से हैं। और ये फरमाइश मिली है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, मीनाक्षी गोस्वामी के, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से। और अब फरमाइशें शामिल करते हैं अगले नगमे की, जो है मन्नड्डे की आवाज में हिंदुस्तान की कसम फिल्म का नगमा है, और इसे सुनना चाहते हैं अहमदपुर के गांव खंडवा से। मुझे लगता है शायद ये पहले शामिल हो चुके हैं जनाब, और नहीं हो तो बता दीजिएगा, शामिल कर लिया जाएगा, वक्त है अभी। वेद मिंटा और अलका मिंटा की फरमाइश हनुमानगढ़ राजस्थान के नाईवाला से मिली है। और आप हैं जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, विलिस, जनकपुरी, सहारनपुर से। और अगला ईमेल किसका है जी हाँ, ये भी देखना चाहेंगे। आनंद कुमार कामले, रेखा कामले और साथ में राखी कामले, गौरीनगर इंदौर से आपकी फरमाइश मिली है। और अगला ईमेल भी रिपीट हो गया है, इसको भी उसी अंजाम तक पहुंचाते हैं। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर आई, मेरा जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं। डॉक्टर गजन कुमार, पद्मावती कुमार, साथ में गजन मधुरा हैं, आपने अकोला महाराष्ट्र से फरमाइश की है। मानेवाड़ा रोड नागपुर से देवेंद्र भटकर, सुशीला भटकर, साथ में अनिकेत भटकर, और ये फरमाइश है एम ए वहीद रोमानी, डॉक्टर मोहम्मद जमीर, मोहम्मद फसी की फुलांग, निजामाबाद तेलंगाना से, आनंद जोशी, तनुजा जोशी, ध्रुवी जोशी हैं, प्रोफेसर कॉलोनी खंडवा एमपी से, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता और वंश हैं कनेरा मोहल्ला पटियाला से। और ये फरमाइश मेल मिला है तेलंगाना भोंगीर से, मोहम्मद बुरहानुद्दीन, मोहम्मद यूसुफुद्दीन की जानिब से। इसी नगमे को सुनना चाहते हैं शारदा लोखंडे, आरती लोखंडे, प्रसाद लोखंडे, नेवासा महाराष्ट्र से हैं। और अगला ईमेल भी रिपीट हो गया, इसको भी हटाना पड़ेगा जनाब साइड में। छत्तीसगढ़ कोका भिलाई से प्रताप पांडे और रेखा पांडे, और ये फरमाइश आई है परेंद्र सिद्धांत गोहानकर और टुकटुक गोहानकर की, बदलापुर मुंबई से आपने फरमाइश मिसाल की है। और इसी नगमे को सुनना चाहते हैं पोषण बंछोर, चंद किरण और छाया, पहारा दुर्ग छत्तीसगढ़ से, राधेश्याम शर्मा, इंद्रा शर्मा, सार्थक शर्मा, हांडीखेड़ा सिरसा हरियाणा से हैं, और सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह पिरखर हैं, पद्मा टॉपिस नेकानगर एमपी से, नेपानगर दरअसल है जगह का नाम, और नेबस्तीगंज चुंडवा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी भी हैं। और आप हैं मोटाला महाराष्ट्र से, ये शामिल हो चुके हैं शायद पहले, और सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशवर रामटेके, शव्य भी साथ में शामिल हैं, और अनु रावकर, रोहित रावकर, रेणुका रावकर, कालेमला कोपर गांव से, और डॉक्टर नौशाद अहमद सिद्दीकी, बेगम हमीदुन सिद्दीकी, जिशान अहमद हैं, तीन चार भिलाई छत्तीसगढ़ से, और गंगागर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर, राम रतन टॉकी कोंडल वाड़ी से। और ये फरमाइश आई है साईनगर आरवी महाराष्ट्र से नरेंद्र मिर्गे, प्रियदर्शी मिर्गे, साथ में डॉक्टर प्रियंका काल पांडे, बंडू लोहार पोपलगढ़, चंद्रकला और देवीदास पोपलगढ़ हैं, तालुका निवासा खोपटी से।
और अगला ईमेल हो गया, रिपीट इसको करते हैं साइड लाइन। और अब आपको सुनवाते हैं खूबसूरत सा

नंद किशोर कटे, अंजलि करवा, बाला साहेब करवा हैं बीड शहर से, और ही फरमाइश आई है बैलाडीला बस्तर से शिवप्रसाद देवदास, मोहित कुमार देवदास और युवती देवदास की, और आप हैं नेहरू चौक 65 से सुरेश जाधव, अनिता जाधव, सोनल प्रसाद जाधव, और सामरा नगर अमरावती से रेखा संगर, संजय संगर की फरमाइश भी है, योगेश गुजराती, रेखा गुजराती, अभय गुजराती, कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से हैं, और ही फरमाइश मेल मिला है उन दोस्तों का जो शामिल हो चुके हैं। अगला ही मेला है गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवी जस्सी और गीता का, और इसी नकमे को सुनने के मुंतजर है किशन सबकाल, आशा सबकाल, सोनिया विशाल सबकाल, शास्त्री नगर बीट शहर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, स्वाति जायसवाल, जामनिया गाजीपुर से सुशांत पीरेजा, मास्टर निवेश कुमार और लड्डू कुमारी हैं टिम्बर मार्केट कीर्ति नगर नई दिल्ली से, पंधर कावड़ा से अनिल उषा बुरांडे, अनुश्री धनश्री बुरांडे, और इसी नकमे को सुनना चाहते हैं रमेश कटांकर, वैशाली कटांकर और बेबी कार्तिकी, गांधी बाग अकोला से, इसी नकमे की फरमाइश मास्टर विट्ठल सुरोशे, मायरा सुरोशे और सुषमा सुरोशे की, कार्टर रोड वाशिम से आप शामिल हुए हैं, अमृत पाल सिंह, रामगढ़िया परमिंदर सचनूर हैं, गांव कल्याण मलका जिला भटिंडा पंजाब से, और ये फरमाइश मेल मिला है सुरेश चौरसिया का, साथ में उनके कौन कौन है ये भी देख लेते हैं आज, सरोज चौरसिया और बाबू शिवा चौरसिया, फर्रुखाबाद के मोहल्ला साहबगंज चौराहा से आपकी फरमाइश मिली है, और ये फरमाइश मेल गुन्नौर से मिला है आदिल कमर, तस्दीक अली और मुजफ्फर अली का, राष्ट्रपाल गजबी डोंगर गांव छत्तीसगढ़ से, साथ में राधिका गजबी और बेबी अनिष्का गजबी, और आनंद सागर, तरुलता सागर, चांदखेड़ा अहमदाबाद से सुनने के ख्वाहिशमंद हैं, और अगला ईमेल है उन दोस्तों का जिनके नाम हो गए शामिल, तो आगे बढ़ते हैं, मनोज जेठवा, हर्ष जेठवा, बुराव के नगर श्रीरामपुर से हैं, अमोल मानकर, शोभा तैमान का, श्लोक कुमार बुल्डाना के बर्ड शिंगी से, और ये फरमाइश ईमेल मिला है श्रीगांव बुल्डाना महाराष्ट्र से संतोष एस काले, तेजस एस काले और लोकेश एस काले की जानिब से, और आफताब अंसारी, रियाज अहमद अंसारी, अनवर मास्टर हैं शेरवानी स्कूल गंज डंडवारा से हैं, विनोद मंडलकर, वीणा मंडलकर विविधा है रायपुर छत्तीसगढ़ से, और स्टेट बैंक ईश्वर कॉलोनी नांगली डेरी से नजफगढ़ से, मैथिली कुमारी और टुकटुक और उनके कुछ और साथी, और शंभू दयाल खटक, विमला देवी, दीपक कुमार खटक, गांव जाखोद राजस्थान से।

जब तक नगमा शुरू होता है हम शुरू हो जाते हैं। जयराज प्रोट राजकोट से, मधुसूदन भट्ट, आरती भट्ट और साथ में प्रयागराज भट्ट और मोहम्मद अनीस मोहल, मोहम्मद दानिश मोहल, मोहम्मद रिजवान है बाजार फैल छेगांव महाराष्ट्र से। अगला ईमेल रिपीटर्स को करते हैं साइड लाइन। ताज मंजिल अक्कर बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, साथ में मोहम्मद हसैन पवार और जलालाबाद वेस्ट से सुरेश ककनीजा, पूनम ककनीजा, विशाल और उनके कुछ और साथी। बिलामगेट कासगंज से एम असलम सैफी, जेबुनिसा बेगम और सद्दाम सोनी और हररपुर मटकली बराजी से हैं शारून और अंसारी, फरियाद हुसैन अंसारी, शकील अहमद इदरीसी। तंगौरी मोहली पंजाब से गुरप्रीत सिंह तंगौरी, जसवीर कौर और महकप्रीत कौर, विजय चौहान इंदुरकर, तेजस्वी चौहान, अंकिता निके चौहान है वर्णा शाहपुर महाराष्ट्र से और विनोद कुमार ढवले, विनीताई और प्रथमेश हैं अयोध्या नगर रालीगांव से। जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजिमा बेगम सिद्दीकी और मोहम्मद रिहान उनके अहल खाना और शंकर लाल जायसवाल, गणेश लाल जायसवाल, शिवम प्रसाद जायसवाल, नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से। और ये फरमाइशी ईमेल मौसूल हुआ है विक्रम कड़वासरा, सचिन कड़वासरा, योगेश कड़वासरा का।

और गांव कलाना भादरा हनुमानगढ़ राजस्थान से, गणेशपुरगंज डिंडवाराटे से शेख शमा परवीन, एम फारूक शेख और बेबी मुस्कान, यवतमान से अनिल उषा ब्रांडे, मुझे लगता है पहले से शामिल हो चुके हैं जनाब, और जरूर से बाबा साहेब अटोदे आदिचार पे चंद्र प्रभाव रोडे की फरमाइश भी है, और ये फरमाइश ही में वेडिंग खेड़ा पंजाब से मिला मिंटू थॉमस और पिंकी अरोड़ा की जानिब से। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से हैं अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और प्रभुदास कोटेचा, हंसा कोटेचा आशीष हैं। जंक्शन प्लॉट राजकोट से तारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा चौटाला हरियाणा से हैं। धर्मेंद्र छिपा, कबीर छिपा, पूजा परिहार गोपालगढ़ राजस्थान से, ओम प्रकाश ये पहले शामिल हो गए जनाब, और खैरागढ़ लाल राज लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे, सुशीला भीमटे, मेघा और उनके कुछ और साथी। सल्लर पहलगाम कश्मीर से हैं पीरजादा मिराजुद्दीन, नजमुद्दीन और कैसरुद्दीन। शमसुल कमर रही, शाहीन फातिमा, अदनान खान गंज जंडवारा से। मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से सोपान तारे, वसंतरा भोजनी और अहले खाना। शाहजी बोटके, नंदा बोटके और उत्तम जमधाड़े हिंगोली महाराष्ट्र से। जगदीश धाकड़ नयमा, साथ में उनके युवराज धाकड़ शिवांगी हैं। मालवा रेडियो लिसनर्स क्लब इनका हिंगड़ी आलोट से हैं। और हिना साबरी, आयजल इमाम, मोहम्मद हसन इमाम, झारखंड के बिशनपुर गिरडी से आपकी फरमाइश के लिए। मुरादाबाद दुल्लापुर से हैं मुकेश कश्यप, शीतल और सोनू सुरेश। फाजिलका पंजाब से हैं, हीरावाली से सुभाष गुरदारा, बिमला गुरदारा, इंदु पार्वती। नथुराम शर्मा, ललित शर्मा, इंद्राज हैं मंडी हरजीराम मलोट से। पंजाब रामटेक, यशोधरा शव्या, सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से। और सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, मायदी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा। और ये फरमाइश मिली मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, किरण ठाकुर और मीनाक्षी ठाकुर की जानिब से। और ये आखिरी नगमा है तमिल शाह प्रोग्राम का, जिसे सुना जाता है अस्तुपुरा जिला मऊ से मदर अली अंसारी, रजबे अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, सुरेश खुराना, पप्पी खुराना, लबे खुराना, एमएलबी रोड ग्वालियर से। और बक्सर बिहार से शफीउद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, आसमा खातून अंसारी, फहीम मंसूरी अदी, फातिमा मंसूरी। बांदा यूपी से आपने फरमाइश हमारे साल की है। श्याम किटे, वंदना किटे, कार्तिक किटे, राहड़गांव कैब अमरावती महाराष्ट्र से हैं। और अगला ईमेल किसका है भी देखते हैं। सत्यन कुमार चंसोलिया आदर्श और सार्थक हैं पैजोनिया जालौन।

मेरे पाठनामा तेलंगाना से अजीज भाई मतीन भाई और शेख चांद फारूक। जब कोई अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा सबीहा और रेहान और उनके कुछ और साथी। भवानीगढ़ संगरूर पंजाब से परमिंदर सिंह रंधावा, लखनपाल और सुरेंद्र कौर रंधावा। और ये है इस प्रोग्राम का आखिरी ईमेल। नागपुर महाराष्ट्र से कमल सहनी, पिंकी सहनी और अहले खाना।

0: یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ سرخیوں میں
1: یہ آکاشوانی ہے، پرستوت ہے کاریکرم سرخیوں میں۔ اس کے انترگت سنیے پردھان منتری کی انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی یاترا اور اس کے رنیتک مہتو پر چرچا۔ اس میں بھاگ لے رہے ہیں انتراشٹری معاملوں کے جانکار پروفیسر راہل مشرا، کاریکرم کا سنچالن کر رہی ہیں شریا پاٹھک۔
2: نمسکار، سرخیوں میں کاریکرم کے آج کے انک میں آپ کا ہاردک سواگت ہے۔ آج ہم چرچا کریں گے پردھان منتری نریندر مودی کی انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کی 6 دیوسیہ یاترا پر۔ اس یاترا کا ادیشیہ تینوں دیشوں کے ساتھ بھارت کے سمبندھوں کو نئی مضبوطی دینا ہے۔ ویاپار ہو، نویش، رکشا، سمندری سرکشا، سکشا، نئی تکنیک اور بھارتیہ سمودائے جیسے کئی مہتوپورن مدوں پر بھی بات چیت ہوگی۔ ساتھ ہی یہ یاترا بھارت کی ایکٹ ایسٹ پالیسی، महासागर विजन और फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी आगे बढ़ाने वाली मानी जा रही है। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर राहुल मिश्रा। प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सबसे पहला प्रश्न जो मैं आपसे करना चाहूंगी वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये यात्रा है इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की, यह तीनों देशों की यात्रा भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और आप इस दौरे को किस नजरिए से देखते हैं?
3: देखिए, तीनों ही देश और खास तौर से जो प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा का जो पहला चरण है इंडोनेशिया की यात्रा, ये मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके कई वजह हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडोनेशिया आसियान क्षेत्र का, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या के मामले में भी, अपनी आर्थिक शक्ति के मामले में भी, और उसकी जो सामरिक जो महत्व है उसका दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए इंडोनेशिया केंद्रीय स्थान रखता है भारत की एक्ट ईस्ट नीति में। साथ ही साथ भारत और इंडोनेशिया के बीच में, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति प्रबोवो के बीच में जो संबंध है, उनकी जो पर्सनल डिप्लोमेसी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 2018 में जब कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच में साइन हुई थी, तब से लेकर के अभी तक खासी प्रगति दोनों देशों के बीच में हुई है। हमें मालूम है कि पिछले ही साल 2025 में राष्ट्रपति प्रबोवो हमारे भारत के गणतंत्र दिवस पर गेस्ट ऑफ ऑनर थे और राष्ट्रपति प्रबोवो की प्रधानमंत्री मोदी की लगातार बैठकें होती रही हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दोनों ही देशों के नेता अपने संबंधों को लेकर के सजग हैं और संबंधों को आगे की दिशा में बढ़ाना चाहते हैं। इंडोनेशिया की जहां तक आर्थिक रूप से उसकी जहां तक महत्ता है, वो ये है कि 25 बिलियन का व्यापार दोनों देशों के बीच में है, जिसे इनफॉर्मल अगर हम ट्रेड जोड़े तो वो उससे भी ज्यादा होता है। दोनों ही देशों की इंडो पैसिफिक को लेकर के अपनी एक जो नीति है उसमें समानताएं बहुत सारी हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर के इंडोनेशिया भारत से सीखना चाहता है। भारत की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी में इंडोनेशिया का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल होकर के और अपना योगदान देना चाहता है। इसके पहले हमने देखा कि इंडोनेशिया और भारत दोनों ही देशों ने G20 की अध्यक्षता की और किस तरह उन्होंने तमाम जो देश हैं, जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर के ग्लोबल साउथ के विकासशील जो देश हैं, वो कैसे अपनी विदेश नीति और सामरिक नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है इंडोनेशिया की यात्रा इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा वहां के प्रधानमंत्री अल्बनीजी के निमंत्रण पर है। ऑस्ट्रेलिया, जैसा कि हमें पता है कि भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण साझेदार है ओशानिया या पैसिफिक आइलैंड के क्षेत्र में, दक्षिण इंडियन ओशन के क्षेत्र में, और वहां पर एक दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों ही क्वाड के सदस्य देश हैं और इस लिहाज से क्षेत्रीय संतुलन को लेकर के, क्षेत्रीय सामरिक संतुलन को लेकर के दोनों ही देश का जो नजरिया है वो एक जैसा है और दोनों ही देश चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रूल्स बेस्ड ऑर्डर बना रहे और इस बात को लेकर के दोनों ही देशों में डिफेंस को लेकर के, सुरक्षा और सामरिक मुद्दों को लेकर के दोनों देशों के बीच में लगातार डायलॉग्स और एक्सचेंजेस भी होते रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के, सप्लाई चेन रेजिलियंस को लेकर भारत, ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देश कनाडा के साथ भी और जापान के साथ भी मिलकर के तमाम तरीके के ट्राइलैटरल मैकेनिज्म्स की भी बात कर रहे हैं। तो इस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में व्यापार समझौता होने के बारे में भी काफी बातें चल रही हैं, तो उसको नतीजे तक पहुंचाने के लिए मुझे लगता है कि ये कोशिश होगी। और तीसरा देश है न्यूजीलैंड, जहां पर पिछले साल हमने देखा था कि न्यूजीलैंड

0: की तरफ से भारत की यात्रा हुई थी 2025 मार्च में। न्यूजीलैंड की यात्रा जो है वो इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों देशों के संबंधों को एक नई दिशा, एक नई गति देनी है। वैसे भी भारत के प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये 40 सालों में पहली यात्रा, तो इस लिहाज से जो कूटनीतिक संबंध दोनों देशों के बीच में है उनको भी आगे बढ़ाने के लिए न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा महत्वपूर्ण है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं लेकिन उस अभी तक रेटिफिकेशन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो कौन से वो मुद्दे हैं, लेबर मोबिलिटी या एग्रीकल्चर सेक्टर या फार्मास्यूटिकल्स, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हम अपनी शुरुआत पहले करें और कौन से वो क्षेत्र हैं जिनमें हमें संभल कर और समझबूझ से चलना है, ये सभी मुद्दे भी भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में आएंगे। पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि भारतीयों का न्यूजीलैंड जाना सर्विसेज के लिहाज से, एग्रीकल्चर के लिहाज से, वहां पर जाकर छोटे मोटे व्यवसाय या स्टार्टअप्स खोलने के लिहाज से न्यूजीलैंड एक बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा है। तो भारतीयों और भारतवर्षियों की भी वहां पर जो मौजूदगी है उस हिसाब से भी न्यूजीलैंड की यात्रा प्रधानमंत्री की बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम देखें इसके इस पूरी तीनों देशों की यात्रा को, अगर हम पिछली जो यात्राएं हुई हैं प्रधानमंत्री की उनसे अगर हम जोड़ के देखें और साथ जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकायची की भारत यात्रा से जोड़कर देखें, तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तमाम जो उभरती हुई शक्तियां हैं और तमाम जो मिडिल पावर्स हैं, भारत जैसे राइजिंग पावर्स और ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया जैसे जो मिडिल पावर्स हैं, ये सभी साथ मिलकर अपनी ऊर्जाओं को, अपनी जो चिंताएं हैं सामरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, उनको मिलकर साझा करना चाहते हैं, उनको मिलकर बैठकर उनको साझा करना चाहते हैं और उनको बात के मद्देनजर कि चीन और अमेरिका के जो दोनों ही देशों की जो विदेश और सामरिक नीतियां हैं वो इंडो पैसिफिक के छोटे और मझोले देशों के हितों में नहीं है, तो कैसे उन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए ये देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी विदेश और सामरिक नीति को आगे बढ़ाए, ये मुझे लगता है कि एक बड़ा कनेक्टिंग फैक्टर है प्रधानमंत्री मोदी की पिछली यात्राओं की और साथ में इन तीन देशों की यात्रा के।
1: प्रोफेसर मिश्रा, जैसा आपने अभी बताया कि इंडो पैसिफिक कितना महत्वपूर्ण एक मुद्दा है, तो प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि ये यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर विजन और मुक्त एवं खुले हिंद प्रशांत यानी कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगी, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं?
0: देखिए, इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कभी भी भारत ने किसी दूसरे देश को नहीं दी, इंडोनेशिया ने भी किसी दूसरी महाशक्ति को नहीं दी। इंडो पैसिफिक का जो क्षेत्र है उसके कई महत्वपूर्ण पहलू हैं, कई डिफाइनिंग फीचर्स हैं, उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है अमेरिका और चीन के बीच में सामरिक जो रस्साकशी है, लेकिन इसके साथ ही दो और महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला, भारत की और भारत के साथ जापान की, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इन तमाम देशों की इंडो पैसिफिक को लेकर के एक बड़ी ही मुखर और बहुत ही स्पष्ट नीति का होना कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हम किन्हीं भी दूसरे देशों को हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा या रूल्स बेस्ड ऑर्डर से खिलवाड़ करने नहीं देंगे। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि भारत की नीतियों में और ऑस्ट्रेलिया, जापान या इंडोनेशिया की जो खुले और मुक्त इंडो पैसिफिक क्षेत्र की जो नीति है उसमें बड़ी समानताएं हैं, और इन्हीं समानताओं के चलते आसियान की भी अपनी एक इंडो पैसिफिक का आउटलुक है, आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक, जिसमें बहुत सारी समानताएं भारत के इंडो पैसिफिक विजन से या महासागर विजन से। तो क्योंकि इन तमाम देशों की इंडो पैसिफिक को लेकर के उनकी चिंताएं, उनकी आकांक्षाएं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये देश चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक को लेकर के एक बड़े लेवल पर एक कंसेंसस रहे और इस कंसेंसस के साथ साथ इन देशों के बीच में आपसी सामंजस्य बढ़े, और यही मुझे लगता है इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुरक्षित और स्थिर और शांतिपूर्ण बनाने में मदद करेगा, और यही इन देशों की भूमिका है इंडो पैसिफिक को लेकर।
1: इस दौरे में व्यापार, निवेश, शिक्षा या फिर नवाचार और कई सारी नई तकनीकों पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने से भारत को क्या प्रमुख लाभ मिल सकते हैं, इस पर आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा समझाएं।
0: देखिए, भारत के साथ तमाम देशों के, भारत के साथ इंडोनेशिया का जहां तक सवाल है व्यापार और निवेश का, ऊर्जा के क्षेत्र में, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आपसी व्यापार को खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के क्षेत्र में आगे बढ़ाना और सर्विसेज सेक्टर में भारत की अपनी जो क्वालिटीज हैं उसको इंडोनेशिया तक पहुंचाना और भारत और इंडोनेशिया के व्यापार को आगे आने वाले वर्षों में 50 बिलियन तक पहुंचाने की कोशिश ये दोनों देश कर रहे हैं। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में व्यापार को लेकर के बहुत सारी कॉम्प्लीमेंटैरिटीज है, लेकिन दोनों देशों के बीच में कॉम्पिटिशन भी बहुत ज्यादा है, और यही भारत और इंडोनेशिया दोनों ही देश ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अपनी कॉम्प्लीमेंटैरिटीज को आगे बढ़ाते हुए हुए, कंपटीशन को कम से कम रखा जाए, आपसी सामंजस्य से ये दोनों अर्थव्यवस्थाएं तेजी से आगे बढ़े। जैसे लेबर मोबिलिटी एक बहुत बड़ा उसका पहलू है, जिसमें हम देखते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया का ब्लू कॉलर जो लेबर है वो तमाम देशों, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे मलेशिया हो, ब्रुनेई हो, वहां मौजूद होता है। भारत की भी लेबर मोबिलिटी को लेकर के, आउटबाउंड लेबर मोबिलिटी को लेकर के बड़ा दखल रहा है, और भारतीय आमतौर पर ब्लू कॉलर जॉब्स में भी और व्हाइट कॉलर सर्विसेज सेक्टर में भी भारत से बाहर जाते रहे हैं, और दक्षिण पूर्व एशिया एक बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा है। तो इस लिहाज से दोनों देशों के बीच में आर्थिक कॉम्प्लीमेंटैरिटी को कैसे बढ़ाया जाए, ये महत्वपूर्ण है। इंडोनेशिया में कोयले को लेकर के और ऑयल और गैस को लेकर के तमाम बातचीत चल रही है। अभी कोई इस संदर्भ में तार्किक परिणति तक कोई एग्रीमेंट पहुंचा नहीं है, लेकिन इस पर मुझे लगता है काफी बातचीत होगी। ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप या आरसीईपी जिसे हम कहते हैं, उसका एक हिस्सा है। अगले साल आरसीईपी के 10 साल भी पूरे हो रहे हैं, तो ये कोशिश जरूर होगी कि भारत को आरसीईपी में लाया जाए, और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो व्यापार समझौता है उसके तहत भी ऑस्ट्रेलिया ये कोशिश जरूर करेगा कि भारत एक क्षेत्रीय आर्थिक इकोसिस्टम का भी हिस्सा बने। ऑस्ट्रेलिया के साथ जहां तक संबंधों का सवाल है, भारत की नीति ये रही है कि ऑस्ट्रेलिया से क्रिटिकल मिनरल्स, यूरेनियम जिस पर एग्रीमेंट हो चुका है, और तमाम ये इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको इम्पोर्ट किया जाए। एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक बड़ी शक्ति है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को आपसी व्यापार समझौतों से अलग रखा जाए, और सर्विसेज के क्षेत्र में, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में, रक्षा और रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए। न्यूजीलैंड, जैसा मैंने पहले कहा कि न्यूजीलैंड के साथ आर्थिक संबंधों को लेकर के और न्यूजीलैंड का भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निवेश को लेकर के भारत ने न्यूजीलैंड को एक बड़ा साझेदार माना है, और ये कोशिश की है कि न्यूजीलैंड का भारत में निवेश हो, निवेश भारत में हुआ भी है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। दोनों देशों के बीच में व्यापार अभी $3 बिलियन भी नहीं पहुंचा है, तो मुझे लगता है उस क्षेत्र में कैसे दोनों देशों के व्यापार को आगे बढ़ाया जाए, ये भारत की कोशिश है, और मुझे लगता है इस पर भी काम इस यात्रा के दौरान होगा।
1: प्रधानमंत्री की जो ये तीनों देशों की यात्रा है, इसमें उन्होंने भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करने की बात कही है। विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था, निवेश, संस्कृति और वैश्विक छवि को मजबूत करने में किस तरह से योगदान देते हैं, और आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की जो ये समुदाय से जो उनका ये मुलाकात होगा वो किस तरीके से महत्वपूर्ण है?
0: देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की विदेश नीति में भारतीयों का और भारतवंशियों का, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं एनआरआईज, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, और पीआईओज, पर्संस ऑफ इंडियन ओरिजिन, दोनों पर बहुत खास ध्यान रहा है। तो भारतीयों और भारतवंशियों से हमेशा अपनी हर यात्रा के दौरान वो उन्होंने उनके साथ बातचीत की है, उनके साथ मुलाकात की है, उनको संबोधित किया है, और उनके दुख दर्द को जानने की कोशिश की है, उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं को भी समझने की कोशिश की है। इंडोनेशिया में भी भारतीयों के साथ मुलाकात, भारतवंशियों के साथ मुलाकात होगी। ऑस्ट्रेलिया में बड़े स्तर पर होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में लाखों की संख्या में भारतीय और भारतवंशी रहते हैं। भारतीयों के तौर पर ज्यादातर भारतीय विद्यार्थी जो वहां हायर एजुकेशन में जाते हैं, टर्शरी एजुकेशन में, एमए या प्रोफेशनल कोर्सेज या पीएचडी के लिए जाते हैं, और जो वहां पे सर्विसेज सेक्टर में भारत के प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वहां पे मौजूद हैं, और साथ ही साथ डायस्पोरा के जो तमाम लोग हैं जिनकी एक अच्छी खासी संख्या ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त है। न्यूजीलैंड में भी अब भारतीयों और भारतवंशियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि न्यूजीलैंड में भी सर्विसेज सेक्टर में भारत एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभरा है। भारतवंशियों की भी अब संख्या बढ़ रही है, क्योंकि तमाम भारतीयों, खासतौर से पंजाब जैसे देशों से तमाम भारतीय न्यूजीलैंड में जाकर माइग्रेट हो गए हैं और वहां सेटल हो गए हैं, तो उनको भी समझने और उनके साथ भी बातचीत करने की कोशिश होगी। डायस्पोरा हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी जी की विदेश नीति में एक बहुत अहम स्तंभ रहा है, और कितनी इसको इम्पोर्टेंस इस भारतीय विदेश नीति में आज दी जा रही है, ये मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के तमाम इन तीनों देशों में जो संबोधन होंगे उनसे ये ज्यादा स्पष्ट होगा।
1: प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और बहुत ही सरल भाषा में आपने हमारे श्रोताओं को समझाया कि यह प्रधानमंत्री की जो यात्रा है तीनों देशों की, यह कितनी महत्वपूर्ण है और ये विकसित भारत का लक्ष्य पाने में कितनी मदद करेगी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम सुर्खियों में, ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशा खिदमत है चंद कवालियां, फनकार है चंचल भारती कवाल और हमनवा।

0: गाने पेश कर रहे थे चंचल भारती कव्वाल और हम नवा। ये आकाशवाणी है मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज़, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और DD फ्री डिश पर आप सुन रहे हैं उर्दू सर्विस। शब के 12 बजे चाहते हैं, अब आलमी खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप तौहीद हक्कानी से आलमी खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के तीन मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में जकार्ता पहुंच गए हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर

वाराणसी के मौसीकी में अभी आप सुन रहे थे भजन सोपोरी का संतूर पर बजाय राग किरवानी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। पेशा खिदमत है प्रोग्राम आखिरी शब्द। इस प्रोग्राम में सुनिए चंद सदाबहार पुराने फिल्मी नगमे। आकाश शमशाद बेगम के गाए इस नगमे से फिल्म है सीआईडी।

0: चंद्रकांत फिल्म का नगमा सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, अंदत्ता की थी मौसीकी। इस नगमे के साथ ही आखिरी शब प्रोग्राम अब खत्म होता है। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। शब के 12:50 हुए हैं, अब खबरें नशर की जाएंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप तौहीद हक्कानी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 3 मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में जकार्ता पहुंच गए हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं सालगिरह के मौके पर खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि उनका तस्वुर नए भारत की रहनुमाई करता रहेगा। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बहुत तेज बारिश के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश और साहिली कर्नाटक में आज बहुत तेज बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। ईरान के आजहानी आला रहनुमा आयतुल्ला

0: मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। श्री जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक खाड़ी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान वे कुवैत और ओमान भी जाएंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने कहा कि बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही युवराज और प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से भी मुलाकात का अवसर मिला। श्री जयशंकर ने बहरीन में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए ये 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जोएल ओराओ कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे जिसमें लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। सऊदी अरब ने एक नई सेवा का प्रायोगिक शुभारंभ किया है जिसके अंतर्गत यात्री एकीकृत पैकेज के जरिए अपना वीजा, उड़ान और होटल बुक कर सकेंगे। खाड़ी देश के पर्यटन मंत्रालय ने यह जानकारी दी। सऊदी अरब के पर्यटन मंत्री अहमद अल खतीब ने कहा कि सऊदी अरब का पर्यटन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और पैकेज वीजा देश की यात्रा को और अधिक सुगम बनाएगा। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरों और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में पुर्तगाल और स्पेन के बीच मुकाबला जारी है। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से सिएटल में भारतीय समयानुसार सुबह 5:30 बजे से होगा। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Himakshi Pawar. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Jakarta on the first leg of his high-stakes three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post yesterday, Mr. Modi said, India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. a vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee yesterday, Mr. Modi said, "The thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India."
3: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
2: एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर मेट किंग हमद बिन ईसा अल खलीफा ऑफ बहरीन एंड डिस्कस्ड वेज टू फर्दर स्ट्रेंथन द बायलैटरल पार्टनरशिप बिटवीन द टू कंट्रीज। Dr. S. Jaishankar arrived in Bahrain from Qatar on the second leg of his four-nation visit to the Gulf region, which also includes Kuwait and Oman. In a post on X, Dr. S. Jaishankar said he was honored to have an audience with King Hamad bin Isa Al Khalifa. He also said it was a privilege to meet Crown Prince and Prime Minister Salman bin Hamad Al Khalifa during the audience. The minister conveyed the greetings of President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi to the King. Union Railways Minister Ashwini Vaishnav has virtually inaugurated a new train service between Tanakpur in Uttarakhand and Hazur Sahib at Nanded in Maharashtra, along with the extension of the Tanakpur-Pilibhit rail service up to Shahjahanpur. He said the new service fulfills a long-pending demand of people living in the Terai region of Uttarakhand. Central Bureau of Investigation has conducted searches at 26 locations across 11 states and union territories in connection with four criminal cases pertaining to misappropriation of funds in Border Roads Organization. The states and union territories are Jammu and Kashmir, Ladakh, Delhi, Haryana, Uttarakhand, Uttar Pradesh, Bihar, Maharashtra, Assam, Arunachal Pradesh and Nagaland. Several incriminating documents and digital evidence have been recovered during the searches and investigation is continuing. In FIFA World Cup, round of 16 match between Portugal and Spain is underway at Arlington in US. Another round of 16 match will be played between co-host US and Belgium in Seattle this morning at 5:30 a.m. Indian time. In boxing, India continued its impressive campaign at the Under-23 Asian Championships in Jakarta yesterday, with Asian champion Vishwanath Suresh, Ganga, Hitesh and Tanu registering commanding 5-0 victories in their respective bouts.
4: ये आकाशवाणी दिल्ली का एयरलाइव न्यूज 24x7 चैनल है और स्टूडियो की घड़ी में रात के 1:10:15 हुए हैं। ये वक्त है कार्यक्रम गीत सुनहरे का। जी हाँ, ये वो कार्यक्रम है जिसमें आप सुनते हैं पुराने जमाने के गोल्डन एरा के खूबसूरत गीत। और आज इन गीतों का पिटारा लेकर मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी सरिता। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

सुन सुनिए अगला गीत फिल्म ढोल का फूल से। गीतकार है साहिर लुधियानवी और संगीत यह है एन दत्ता ने। आवाजी अशोक भोसले और महेंद्र कपूर की।

அனுஜீத் சென் காலி டோபி ரூமால் से आवाजें लता मंगेशकर की और संगीत है चित्रगुप्त का।

वालों की

अभी आपने ये गीत सुना फिल्म साधना से, आज मोहम्मद रफी और बलबीर की है। गीत का सही लुधियानवी, संगीत दिया है एन दत्ता ने। आइए सुनते हैं अगला गीत, फिल्म का नाम है फागुन। आवाजें आशा भोसले और मोहम्मद रफी की, संगीत दिया है ओपी नैयर साहब ने और गीतकार हैं कमर जलाधार पादी।

फोन पर देसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू ले गया। ओए फोन पर देसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों

0: मोटी मोटी अखियों में आंसू दे गया,
1: बड़ी टीसी मेरा दिल ले गया, जखे जखे मीठा मीठा हम दे गया।
2: मुझे सुनिए गीत सुनहरे कार्यक्रम में अगला गीत, फिल्म का नाम है मधुमती, आवाज ये लता मंगेशकर और मन्ना डे की है, संगीत दिया है सलिल चौधरी ने।

Oh,

अगला गीत फिल्म हावड़ा ब्रिज से, आवाजें गीता दत्त की हैं, संगीत दिया है ओपी नैयर ने।

ਜਾਏ ਨਾ ਪਾਗਲ ਤੂੰ ਦਿਲ ਪਰ ਰੱਖ ਲੈ ਹੱਥ ਜਰਾ ਹੋ ਜਾ।

सुनिए अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में, फिल्म का नाम है उजाला और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

गीत सुनहरे कार्यक्रम में लीजिए सुनिए आखिरी गीत। फिल्म का नाम है दिल अपना और प्रीत पराई। आज है लता मंगेशकर की। गीतकार है शैलेंद्र और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। इसी गीत के साथ अपने दोस्त सरिता को दीजिए कार्यक्रम संपन्न करने की इजाजत। नमस्कार।

0: सुनते कार्यक्रम गीत सुनहरे यह आकाशवाणी दिल्ली का एआरलाइव न्यूज 24x7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 2 बजने हुए हैं। आज से थोड़ी देर में पहले हिंदी में और उसके उपरांत अंग्रेजी में समाचार सुन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। श्री जयशंकर ने बहरीन में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। श्री जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक खाड़ी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में

0: से बहरीन पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान वे कुवैत और ओमान भी जाएंगे। विदेश मंत्री श्री जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान करने के लिए चारों खाड़ी देशों के अपने समकक्षों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सीरिया पहुंच गए हैं। साल 2024 में बशर अल असद को सत्ता से हटाए जाने के बाद इस युद्धग्रस्त देश का दौरा करने वाले वे पहले बड़े पश्चिमी नेता हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति का यह दौरा मध्य पूर्व में शांति के माहौल के बीच हो रहा है। सीरिया के दौरे के बाद मैक्रों नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तुर्की के अंकारा शहर जाएंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराव कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे, जिसमें लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सीमा सड़क संगठन से जुड़े चार आपराधिक मामलों के संबंध में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 26 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए। मामले की जांच जारी है। एजेंसी के अनुसार इन मामलों में लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर और इंजीनियर रैंक के कुल 10 अधिकारियों के साथ कुछ निजी व्यक्तियों को नामजद किया गया है। ये मामला लद्दाख में प्रोजेक्ट विजयक और प्रोजेक्ट योजक के अंतर्गत अस्थायी श्रमिकों की तैनाती और फर्जी श्रमिकों के नाम पर किए गए भुगतान में अनियमितताओं से जुड़ा है। सऊदी अरब ने एक नई सेवा का प्रायोगिक शुभारंभ किया है, जिसके अंतर्गत यात्री एकीकृत पैकेज के जरिए अपना वीजा, उड़ान और होटल बुक कर सकेंगे। खाड़ी देश के पर्यटन मंत्रालय ने यह जानकारी दी। सऊदी अरब के पर्यटन मंत्री अहमद अल खतीब ने कहा कि सऊदी अरब का पर्यटन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और पैकेज वीजा देश की यात्रा को और अधिक सुगम बनाएगा। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में पुर्तगाल और स्पेन के बीच मुकाबला जारी है। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से सिएटल में भारतीय समय अनुसार सुबह 5:30 बजे से होगा। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Jakarta on the first leg of his high-stakes three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post yesterday, Mr. Modi said India and Indonesia have elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee yesterday, Mr. Modi said the thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India.
2: आज देश की धरती पश्चिम बंगाल की धरती अपने

चुनाव आप आनंद ले रहे हैं नॉनस्टॉप फिल्म संगीत का और लीजिए इस कार्यक्रम का आखिरी गीत आपके लिए पेश है। इस गीत के साथ अपनी दोस्त सरिता को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।

साथ। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत बहार नॉन स्टॉप फिल्म संगीत। यह आकाशवाणी दिल्ली का एयर लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। स्टूडियो की घड़ी में रात के 3 बजने को है। अब समाचार होंगे। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। श्री जयशंकर ने बहरीन में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। श्री जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक खाड़ी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान वे कुवैत और ओमान भी जाएंगे। विदेश मंत्री श्री जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए चारों खाड़ी देशों के अपने समकक्षों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रही हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सीरिया पहुंच गए हैं। साल 2024 में बशर अल असद को सत्ता से हटाए जाने के बाद इस युद्धग्रस्त देश का दौरा करने वाले वो

0: सबसे बड़े पश्चिमी नेता हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति का ये दौरा मध्य पूर्व में शांति के माहौल के बीच हो रहा है। सीरिया के दौरे के बाद मैक्रो नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तुर्की के अंकारा जाएंगे। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीट राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। इन सीट के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। जम्मू कश्मीर से अरेको चेरी और सेंट्रोज बेर की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात यूएई को निर्यात की गई है। इससे किसानों के लिए नए अवसर खुले हैं, कृषि निर्यात को बढ़ावा मिला है और भारतीय उत्पादों की असाधारण गुणवत्ता विश्व स्तर पर प्रदर्शित हुई है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने जम्मू कश्मीर से यूएई को प्रीमियम अरेको चेरी और सेंट्रोज बेर की पहली खेप की सुविधा प्रदान की। ये केंद्र शासित प्रदेश के बागवानी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सीमा सड़क संगठन से जुड़े 4 आपराधिक मामलों के संबंध में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 26 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। इस दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए। मामले की जांच जारी है। एजेंसी के अनुसार इन मामलों में लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर और इंजीनियर रैंक के कुल 10 अधिकारियों के साथ कुछ निजी व्यक्तियों को नामजद किया गया है। ये मामला लद्दाख में प्रोजेक्ट विजय और प्रोजेक्ट योजक के तहत अस्थायी श्रमिकों की तैनाती और फर्जी श्रमिकों के नाम पर किए गए भुगतान में अनियमितताओं से जुड़ा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया है। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से सिएटल में भारतीय समय अनुसार आज सुबह 5:30 बजे से होगा। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। This is Akashvani, the news read by Himakshi Pawar. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Jakarta on the first leg of his high-stakes three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post yesterday, Mr. Modi said, India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee yesterday, Mr. Modi said, the thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India.
1: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
2: यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल हैज सेड दैट इंडियाज लेदर

0: और अब प्रस्तुत है गोकल चिन्ह सत्यनारायण के स्वर में नारायण तीर्थ की एक रचना।
1: श्री निलयं सखी

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम अर्चना। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। आइए सुनते हैं नाद ब्रह्म कार्यक्रम के अंतर्गत KS गोपाल कृष्णन द्वारा बजाए बांसुरी पर राग अभेरी।

आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर अभी आप सुन रहे थे केस गोपाल कृष्णन द्वारा बजाए बांसुरी पर राग अभेरी। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। आज मंगलवार है,

बैसाख संवत 1948 के आषाढ़ मास की 16वीं तिथि तदनुसार 7 जुलाई 2026 सुबह के 4:53 और 44 सेकंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आइए आपको आगे प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। पांच बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। इसके अंतर्गत आज आप जानेंगे तितली अभ्यास क्रिया और दीर्घ श्वास प्रेक्षा के बारे में। 5:20 पर आप आनंद ले सकते हैं देशभक्ति गीत का। आज 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम

0: बज कर 10 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम वंदना, जबकि 6:40 मिनट पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम चिंतन। बजकर 45 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रामचरितमानस, जबकि 6:55 मिनट का वक्त होगा संस्कृत में समाचार का। 7 बजे आप सुन सकते हैं हिंदी में समाचार, जबकि 7:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। सात बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संगीतिका, जबकि 7:30 का वक्त है कार्यक्रम गीतों भाई का। 8 बजे हिंदी में समाचार, जबकि 8:15 पर अंग्रेजी में समाचार होंगे। और अब 5:00 को है, आइए सुनते हैं समाचार।
1: सब थाई हुए सहाय, दसवे पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई हुए सहाय, दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ

ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਬੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹ

0: 生是难，中间呀真的不能，就高就个呀疼，咱们可在干不落地吗？
1: Oh!

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ

0: घर लीजे श्लोक महला पहला गौ ब्राह्मण को कर लाभ हो गोबर तरन ना जाई तो टिका तेज कुमाली धान मिशा खाई अंतर पूजा परहेक तेबा संजम तुरता पाई छोटी ले पखंडा नाम लया जाहे तरंदा महला पहला
1: मांस खाने करी निवाज छुरी व गायन तिन गल ताग तिन कर ब्रह्मण पूरे नाद उन्ना पियावे ओई साध कूड़ी दास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहा भरपूर मत्थे टिका पीड़ धोती का खाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पैर होवे प्रमाण मिले स्थान ले पूजे प्राण अपाख्या का कुत्ता बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देख

0: चौका कड्डी कार उपर आए बैठे कूड़ियार मत पिटै वे मत पिटै अन हजादा पिटै तल पिटै फीर करीन मन जुठै चुली परेन कहो नानक सच त्याई है सच होवे ता सच पाया पौड़ी चिते अंदर सब को देख नदरी हेठ चलाएंदा आप देवड़े आईया आपी ही करम कराएंदा वड़ वड़ा बने दनी सिरे सिर धंदे लाएंदा नद पट्टी जे करे सुल्ताना का उतराएंदा पिख न पाएंदा पिख न पाएंदा पिख न पाएंदा
1: पौड़ी चिते अंदर सब को देख नदरी हेठ चलाएंदा आपे देवड़े आपे ही कर्म कराएंदा वड़ो वड़ा वदमेदनी सिरे सिर धंधे लाएंदा लदर उपठी जे करे सुल्ताना घाव कराएंदा दर मंगन भिखना पाएंदा दर मंगन भिखना पा